ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर पांच मिनट पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे लेकर आएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर बॉलीवुड अपडेट्स और कुछ गानों के साथ लेकर आएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,

0: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका

फोरम को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी जो पहुंचती है दिल से दिल तक, और दिल से दिल तक के सफर पर आपके साथ आपका हम सफर दोस्त सत्य प्रोग्राम सुप्रभात लेकर हाजिर है। और भाई, ये सुबह जो है ना, ये हर दिन चली आती है, हर रोज चली आती है आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए। और देखिए, आज भी चली आई। और कहते हैं ना कि अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं, दिन बदलना चाहते हैं, तो सूरज से मुलाकात का वक्त बदलिए, क्योंकि हमारी सारी खुशियां, सारी संतुष्टि दिन की शुरुआत, दिन का अच्छा या दिन का अच्छा ना बीतना सूरज से मुलाकात पर काफी हद तक निर्भर करता है, क्योंकि यही सूरज हमें हमारी जिंदगी को नया बनाने का हौसला देता है। तो आइए मुस्कुराकर इस्तकबाल करते हैं इस प्यारी सी सुबह का, जो आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने आई है।

जी हाँ, ये सोचना बेहद ज़रूरी है कि जीते हैं और खुद से निकलना भी उतना ही ज़रूरी है। और हम हर सुबह, हर दिन, हर सुबह कुछ ना कुछ बहुत ज़रूरी पूरा करने का सोचते हैं कि आज तो पूरा कर ही देंगे, और पूरा ना होने पर अगली सुबह फिर से कोशिश में लग जाते हैं। आपको क्या लगता है, कुछ कोशिश करना छोड़ भी देते हैं, लेकिन कारण क्या है? इसके पीछे की वजह है सुधार की गहरी इच्छा, उस काम को पूरा करने का जुनून, और यही इच्छा, यही जुनून आपको कामयाब बनाता है। इसलिए उम्मीद रखिए, ख्वाब देखते रहिए, यह सुबह हर रोज आएगी आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए।

जी हाँ, यही जुनून, यही आशा, यही इच्छा, यही विल पार आपको कामयाब बनाती है। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। इस वक्त सत्य आपके साथ है प्रोग्राम सुप्रभात में। और अगर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं या हर बार कुछ कमी रह गई, तो उसके पीछे ये तीन वजहें जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, इनमें से कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कभी भी आप जिंदगी में आजमाइएगा, इन तीनों में से कोई ना कोई बात जरूर होती है। और ये तीन बातें हैं, अनियमितता यानी इरेगुलरिटी, आप रेगुलर नहीं है उस काम को करने में, या फिर असंतुलन, बैलेंस्ड नहीं है लाइफ में, और तीसरा है अव्यवस्था। चाहे हेल्थ हो, रिश्ते हो, करियर हो, पढ़ना लिखना हो या फिर कुछ और, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 4 दिन की चांदनी चाहते हैं या फिर परमानेंट सॉल्यूशन।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800 11 7800 पर

0: रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। सत्य आपके साथ है भाई। आपका दिमाग दौड़ रहा है, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, बस इतना काफी है जिंदगी को बदल देने के लिए, उसे नया बना देने के लिए। एक बरसों से एक सूखा पड़ा साधारण सा बीज भी कई दिनों के बाद जब चट्टान का सीना तोड़कर एक पौधे और फिर एक पेड़ के रूप में बदल सकता है, तो फिर आप तो आप हैं। अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को, अपना सामर्थ्य पहचानिए। आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन फिर से वही तीन बातें जो अभी आपसे मैंने शेयर की, अनियमितता, असंतुलन और अव्यवस्था, अगर ये तीनों आपकी जिंदगी में है तो शुरुआत तो हो सकती है आपके काम की, लेकिन जरूरी नहीं कि आप मंजिल तक पहुंचे, और मंजिल तक पहुंच भी गए तो जरूरी नहीं कि टिके रहें। इसलिए छोटे छोटे प्रयास कीजिए, छोटी सी कोशिश सफल बनाने के लिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी है। मधुमेह ना हो, डायबिटिक ना हो, आप इसके लिए चाय में चीनी कम करने जैसी छोटी सी कोशिश काफी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका गोल क्या है। बेशक आपका ये बदलाव का ये सफर आसान नहीं होने वाला, न जाने कितने बरसों की धूल, जंग और काई इसमें रुकावट है, लेकिन ये तीन बातें बहुत जरूरी हैं। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए। खूबसूरत इस मायने में दोस्त, क्योंकि जिंदगी को बदलने के लिए कुछ अल्फाज, कुछ शब्द, कुछ गीत बहुत काम के होते हैं।

0: जी हाँ, जाए वहीं ले जाए जहां, लेकिन लक्ष्य के बारे में अपनी स्पष्ट राय रखिए, क्योंकि यदि उद्देश्य नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, तो योजना भी नहीं होगी। आइए सुनते हैं अब स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समर्पण की अगली कड़ी।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय, जहां पर महाराज परीक्षित जानना चाहते हैं भगवान की सृष्टि लीला के बारे में। माया के साथ वो कैसे खेलते हैं, कैसे ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, कैसे वहां पर समस्त प्राणी आ जाते हैं और कैसे ही वो सब कार्य कर पाते हैं, क्या होता है। तो जब ये प्रश्न पूछे हैं परीक्षित जी ने, तो सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, क्योंकि भगवान की तो अनंत लीलाएं हैं। सृष्टि लीला तो उनमें से एक ही है। अनंत लीलाओं वाले भगवान की अनंतता भला माप ही कौन सकता है। तो भगवान की असीम गुणावलियों को मापा नहीं जा सकता है, तो भी सुखदेव गोस्वामी जी भगवान की महिमा का गान करने से रुक नहीं पाए। और ये सत्य बात भी है, भगवान से जो भक्त प्रेम करते हैं वो भगवान की महिमा का गान किए बगैर भला कैसे रह सकते हैं। तो हम सुनते चले आ रहे हैं सुखदेव जी किस तरह से श्री कृष्ण की महिमा का गायन कर रहे हैं। 15वें श्लोक में हमने आस्वादन किया था, जहां उन्होंने कहा था कि भगवान ऐसे हैं जिनके कीर्तन स्मरण और दर्शन तथा वंदन श्रवण और पूजन, अर्थात कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन, ये जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देते हैं और उन्हीं पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। तो पाप करना बहुत आसान है, पाप समाप्त हो जाएं जो हमने किए हैं वो हमारे प्रयासों से हो नहीं पाएगा, वो तो तभी होगा जब भगवान कृपा करेंगे, और कृपा तभी होगी जब उनके चरणों में हम शरणागति लेंगे, उनमें श्रद्धा होगी, उनके नामों का कीर्तन होगा, उनकी लीला का स्मरण होगा और उनके अर्चा विग्रह का दर्शन होगा, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार होगा, है ना, उनकी कथाओं का श्रवण होगा और उनके मंदिर में अर्चा विग्रहों का

जन होगा, तो इन सब से पाप रह नहीं पाते हैं, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी है भगवान की महिमा, भगवान को देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, बस नाम कीर्तन करने लगे, उनकी लीलाओं का स्मरण करने लगे, उनके चरणों में वंदना की, उनकी कथाओं का श्रवण किया, तो बस इसी से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, और 16वें श्लोक में कह रहे हैं आज, विचक्षणा या चरणोपसादनात् संग विदस्यो भयतो अंतरात्मनः मिन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कितना सुंदर श्लोक है, कह रहे हैं कि विवेकी व्यक्ति जिनके चरण कमलों की शरण लेकर के अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति को निकाल फेंकते हैं और बिना परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक बता रहा है कि भाई विवेकी वही है जो भगवान के चरण कमलों की शरण ले, और जो भगवान के चरण कमलों से विमुख है वो मूढ़ है, मूर्ख दिखता वो मनुष्य की तरह है लेकिन वो मनुष्य नहीं है, उसमें मनुष्यत्व की कमी है। क्योंकि ये जगत जो समाप्त हो जाएगा और जागतिक वस्तुएं जो हमेशा के लिए रह नहीं जाएंगी, उनमें अगर कोई ऐसा जीव आसक्त हो रहा है जो शाश्वत है, शाश्वत माइक और क्षणिक चीज में अगर आसक्त हो जाए तो इसको मूर्खता कहा जाता है शास्त्र के अनुसार। तो इसीलिए कहा कि देखिए, जब तक भगवान के चरण कमलों की शरणागति लेंगे नहीं तो दिखेगा ही कैसे, कि ये सब जो हमारे आसपास है, हमारा शरीर भी उसमें है, शरीर भी शामिल है, ये सब हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है, यानी ये सब परिणाम को प्राप्त हो जाएंगे, होते ही हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस प्रकार से ये शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापे को प्राप्त होता है फिर मर भी जाता है, ऐसे ही जगत की हर वस्तु को जानिए, हर संबंध को जानिए, क्योंकि ऐसा होना ही है। तो फिर इसमें आसक्त हो करके अपनी समस्त उम्र को गंवा फेंकना, गंवा देना और भगवान से प्रेम ना करना, उनके प्रति अपने हृदय में अनुराग का पोषण ना करना, और इस जगत के लोगों के लिए अनुरक्त हो जाना, आसक्त हो जाना। देखिए, एक बात समझना होगा कि जो भगवान से प्रेम करते हैं वो सबसे ही सुंदर भाव रखते हैं, किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि जहां हृदय में प्रेम का अनुष्ठान हो रहा है बारंबार, वहां नफरत नहीं आ सकती, द्वेष नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है, अगर कोई प्रयास करे तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम का अनुष्ठान हो रहा है, तो प्रेम ही होगा, प्रेम प्रेम को ही खींचता है। तो इसलिए अगर भगवान से कोई प्रेम कर बैठे तो फिर क्या वो इस लोक या परलोक में आसक्त रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम किससे हो रहा है? प्रेम इस लोक की किसी वस्तु से हो रहा है ऐसा तो नहीं है, प्रेम परलोक की किसी वस्तु से हो रहा है, अमृत से हो रहा है ऐसा भी नहीं है, किसी पद से हो रहा है ऐसा भी नहीं है। संबंध हम बनाना चाहते हैं भगवान से ही, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, है ना। तो चूंकि जिससे प्रेम हो रहा है उसको ही जानना चाहेंगे, उसी के प्रति आसक्ति पनपने लगेगी इस हृदय में, क्योंकि उसके शरणागति ली है, अब उसको जानने का प्रयास हो रहा है संतों के संग में, और उनको जानने के बाद उनको प्रेम करने का प्रयास हो रहा है। तो
तो जैसे ही कोई भगवान के चरण कमलों की शरणागति लेता है

ब्रह्मांड सभी तो समाप्त हो ही जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति विवेक जागृत कर ले तब वो भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है। सबके बस की बात नहीं है। अब विवेक कैसे जागृत होगा? देखिए, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये मिला ही इस विवेक को जागृत करने के लिए है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है और हमें उनके साये में रहना है, हमें उनका होकर के रहना है। और भगवान देखिए इतने कृपालु हैं, वो इस माइक जगत में आ जाते हैं हमारे लिए और इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। क्या करना है, उन लीलाओं का श्रवण ही तो करना है, उन लीलाओं का, उनके नामों का कीर्तन ही तो करना है, मात्र इतना ही। और उसी से हम भगवान के प्रति भावयुक्त हो जाते हैं, जो कि आसान कार्य नहीं है। अगर भगवान की सहायता ना हो, अगर सत्संग ना मिले, अगर भक्तों की सहायता ना हो, तो ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर अगर कोई कहे प्रभु मैं आपका हुआ, तो भगवान फिर उसकी चिंता अपने ऊपर ले लेते हैं और वो उसे ऐसा ही कर देते हैं, इतना सुंदर आनंद देते हैं। क्योंकि देखिए, भगवत आनंद के आगे इस जगत में कोई सुख है नहीं। कोई भी सुख किस चीज को सुखी करेगा? शायद इंद्रियों को और मन को थोड़े समय के लिए सुखी करेगा ही, है ना। लेकिन उस सुख को लेने के बाद फिर से दुख मिल जाएगा, क्योंकि दुख का आलय है ना ये जगत, दुख का घर है। तो सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा, फिर सुख मिलेगा, वो सुख दे रहा है, फिर वही दुख देगा, फिर वहां से सुख मिलेगा, तो फिर वहां से दुख मिलेगा, फिर अनेक अनेक भय रहेंगे, अनेक अनेक आशंकाएं रहेंगी। तो यहां चैन नहीं है। और फिर भगवदानंद, ये तो वही जानता है जिसने इसको अनुभव किया है। भगवत आनंद, भगवान की कृपा का आनंद, भगवान के रूप का आनंद, भगवान की मधुरिमा, उनके माधुर्य का आनंद, उनके प्रेम का आनंद, भगवत तत्व को जानने का ही इतना आनंद है। फिर अनुभव अगर कोई कर ले तो कितना आनंद है, भगवत नाम में कितना आनंद है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है सच्चिदानंद घन रस विग्रह, तो उनके हर बात ही रसमय है, हर बात ही में आनंद है। तो ऐसे आनंदमय भगवान के चरण कमलों की जो शरणागति लेता है, उसी के हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकल पाती है, है ना। ध्रुव जी का यही तो हुआ था। ध्रुव जी को उनकी माता जी ने समझाया था कि भाई भगवान के चरणों की शरणागति ले लो तो तुम्हें तुम्हारे पिता से भी बढ़िया लोक मिल जाएगा, सिंहासन मिल जाएगा, तुम राजा बन जाओगे, भगवान तुम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, अन्यथा भी कर सकते हैं। प्रारब्ध को भी बदलने की शक्ति उन्हीं के अंदर है, प्रारब्ध को काटने की शक्ति भी उन्हीं के अंदर है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो ध्रुव जी ने यही तो किया। गए तो थे भगवान का भजन करने एक आसक्ति को लेकर, एक कामना को लेकर, लेकिन जैसे ही भगवान के चरणों की शरणागति ली, उनके भजन में डूबे, तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि मैं तो जिस चीज के लिए गया था वो तो कुछ है ही नहीं भगवत आनंद के आगे। भगवान का नाम लेते लेते उनके मासूम हृदय में भगवत जागरण हो गया, भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होने लगे, भगवान का ध्यान करते करते वो ध्यान में ही भगवान को देखने लगे। तो भाई जब रूप उभर आया हृदय में, तो सारी आसक्तियां, सारी कामनाएं समाप्त हो गई, सारी चिंताएं भी समाप्त हो गई, क्योंकि भगवान प्रकट हो गए हैं हृदय में। क्योंकि भगवान तो हृदय में ही प्रकट होते हैं ना, चित्त में, चित्त ही है जहां भगवान प्रकट होते हैं, चित्त ही है भगवान का आसन,

0: तो ये चित्त साफ कैसे होगा? ये तो तभी होगा साफ जब भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, लीलाओं का स्मरण करेंगे, भगवान के चरणों में दंडवत करेंगे, वंदन करेंगे, उनकी कथाओं को सुनते सुनते, उनके नामों का कीर्तन करते करते धीरे धीरे धीरे धीरे चित्त मार्जित हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तब वहाँ अपनी सूरत भी दिखाई देगी और भगवान भी दिखने लगेंगे, भगवान की लीलाएं भी दृष्टिगोचर होने लगेंगी। सब कुछ होगा चित्त में ही, और चित्त में ही कामनाओं का, वासनाओं का कीचड़ भरा रहता है, तो उस कीचड़ से छुटकारा कैसे मिलेगा? साधन भक्ति करेंगे तभी तो मिलेगा। इसीलिए जो व्यक्ति विवेकी है, जो जान गया है कि भाई मैं असत शरीर में हूँ पर मैं तो सत सत्ता हूँ, यानी मैं हमेशा से था, हूँ और रहूँगा, भगवान का अंश हूँ, भगवान की चिद शक्ति का एक कण हूँ, मैं भी चिद हूँ और मैं भी भगवान के जैसे, जैसे भगवान आनंदमय हैं तो स्वरूपतः मैं भी आनंदमय हूँ। लेकिन इस आनंद का जागरण तभी होगा जिनके हम अंश हैं उनकी शरणागति लें, श्री कृष्ण की शरणागति लें। कोई कह सकता है अच्छा और भी तो हैं देवी देवता, क्या हम उनके अंश नहीं हैं? तो देखिए श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान ने खुद ही कह दिया, ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, श्री कृष्ण ने स्वयं ही तो कहा सारे जीव मेरे ही अंश हैं। जब ये बात कह दी तो ये बात प्रमाणित भी हो गई कि हम उन्हीं के अंश हैं। और आत्मा की प्रकृति क्या है, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया ही है, ना आत्मा को भिगाया जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना काटा जा सकता, ना मारा जा सकता, वो तो अमर है। तो स्वरूपतः हम अमर हैं, लेकिन इसका अनुभव तब होता है जब हम भगवान के चरण कमलों की शरण लेते हैं। भाई हमारा एक अस्तित्व है ना, हम उनके अंश हैं, तो हमें भी आनंद की तलाश है, हम भी आनंद चाहते हैं, पर यहां वहां मुंह मारते फिरते हैं, वहां आनंद है नहीं, दुख मिलते हैं, कभी किसी की निंदा करते हैं, कभी किसी की स्तुति करते हैं, कभी दुखों से दुखी होते हैं, कभी लगता है ओहो अब ये दुख और नहीं मिलेगा, सुख है, दुख के ना होने को सुख समझ लेते हैं, लेकिन सुख और आनंद तो भगवान में है, भगवत प्राप्ति में है, भगवत रस के अनुभव में है, बस यही नहीं जानते हैं, यही बड़े दुख की बात है। तो बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है हमारी, जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान के नाम का कीर्तन, स्मरण, वंदन, श्रवण हमारे अशेष पापों को नष्ट कर डालता है। और जो लोग बहुत विचक्षण होते हैं, विवेकी होते हैं, वो भगवान के चरणों की उपासना करते ही हैं, है ना, और उनको कभी भी कष्ट नहीं झेलने पड़ते। क्यों कष्ट झेलने नहीं पड़ते? क्योंकि वो जानते हैं कि इस जगत का तो स्वरूप ही है माइक, यानी दुख है इसमें, और जो सुख है वो भी अंततः दुख ही बन जाता है। तो विवेकी लोग तब जान पाते हैं, तब देख पाते हैं जब वो भगवान के श्री चरण कमलों की शरण लेते हैं, और तभी उनके हृदय से समस्त आसक्तियां अपने आप भाग जाती हैं, क्योंकि भाई

हृदय तो भगवान का ही सिंहासन है ना, ये चित्त। और जब हम भगवान के चरण कमलों की शरण लेते हैं, किसी संत के माध्यम से, किसी संत के अनुगत्य में, ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेंगे और उन्हें प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें किसी अनुभवी, शास्त्रों में निष्णात और जिसे परब्रह्म की, भगवान की अनुभूति हो, अनुभव हो, और जो स्वयं अनासक्त हो, लोक परलोक की आसक्ति से रहित हो, और भगवान में पूर्ण अनुराग जिसका हो, बस ऐसे संत के चरण कमलों की शरणागति लेते ही हमारे अंदर उनकी कृपा से भगवान के प्रति आसक्ति प्रकट हो जाती है। और जब ऐसा होता है, तभी हम अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति को निकाल सकते हैं, वरना ये अपने बस की बात नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, अगर आपको याद हो, दैवी येषां गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया मेताम तरन्ति ते। यानी जो ये सोचे कि हम माया से पार हो जाएंगे अपने बल पर, तो वो समझदार व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है मम माया दुरतया, पार नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा तपस्वी, ज्ञानी, योगी, सदाचारी, मनस्वी, मंत्रवेत्ता, कोई पार नहीं हो सकता। ये तो पार वही हो सकता है जो भगवान के चरणों की शरणागति ले, किसी संत के माध्यम से, कोई संत किसी भक्त को अपनाए और कोई संत उसे भगवत ज्ञान प्रदान करे, तब कहीं जा करके एक भक्त में भगवान की प्रतीति होने लगती है, अनुभव होता है, भगवत रस की प्राप्ति होती है। तो इस रस के प्रदाता तो संत ही है भाई। और संत है तो संतों का आश्रय लेकर ही भगवान के चरण कमलों की शरण ली जा सकती है। कहा भी है आचार्यों ने, आश्रय कोरिया बंदो श्री कृष्ण चरण, आश्रय कोरिया जे भजे कृष्ण तारे नाही तजे, आर सबे मरे अकारणे। तो भगवान का आश्रय लेना है, भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी है, तो उसका रास्ता संत के चरण से ही होकर जाता है ना। अगर कोई कहे नहीं, हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे, तो जब भगवान का भजन करेंगे, हरि नाम लेंगे और भगवान को पाना चाहेंगे, तो भगवान ही कृपा करके हमारे जीवन में ऐसे साधु संग को ले आएंगे, जिनकी करुणा हम पर वर्षित होगी और हम भजन में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि ऐसे जो संत होते हैं ना, वो भगवान की करुणा घन विग्रह होते हैं, यानी भगवान की करुणा ही घनीभूत हो करके ऐसे संत रूप में हमारे सामने आती है। भगवान ही आते हैं ऐसे संत के रूप में, ये मानना होगा, और अपना ज्ञान दे देते हैं। वो हमें शास्त्रों से अवगत कराते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेके हमें पता चलता है कि ये जगत कैसा है, कर्म क्या है, माया क्या है, ये देह क्या है, मैं क्या हूं, भगवत धाम ही क्या है, भगवान ही क्या है ना। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे धीरे इस हृदय से समस्त आसक्तियां निकल जाती हैं, क्योंकि देखिए आसक्तियां ही तो बंधन है, आसक्तियां बंधन है। हम इतनी बार जन्मे, इतनी बार मरे, फिर भी तो हम मुक्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की आसक्ति नहीं थी। तो हमारे अंदर क्या था? हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की आसक्ति की जगह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की आसक्ति थी। जो हमारे बच्चे थे, हमारे पति, हमारी पत्नी, विभिन्न जन्मों में हुए ये, तो उनको प्रसन्न करने की आसक्ति थी, उनके सुख के विधान की आसक्ति थी, कैसे उनको सुखी करें।

लेकिन हमने कभी अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं किया, कभी भक्तों की सेवा नहीं की, कभी भगवान का महत्व नहीं जाना। अब भगवान स्वयं तो आएंगे नहीं अपना महत्व बताने के लिए। अब श्रीमद् भागवतम जी हैं, मगर ऐसा भी होता था कि लोग श्रीमद् भागवतम जी पढ़कर कभी भी भगवान से प्रेम नहीं कर पाते थे, क्योंकि संत आश्रय लिए बगैर, उनके आश्रय में भागवत जी को जाने बगैर कैसे कोई भगवान से प्रेम कर बैठेगा। नहीं तो जो संतों का आश्रय लेकर भगवान की तरफ मुड़ते हैं तो वो समझ पाते हैं कि ये तो जगत प्रपंच है। तब वो भगवान के चरणों में रोते हुए कहते हैं कि हरि हे प्रपंच पड़िया अगति होइया ना देखी उपाय आर अगति रगति चरणे शरण तुम्हाए कुरिनुसार। हे प्यारे प्रभु, मैं तो इस प्रपंच में, इस माया में ना जाने कब से पड़ा हुआ हूं, कब से मैं तो देख रहा हूं कि मेरी कोई गति ही नहीं है। अभी मर जाएंगे तो जाने कौन से शरीर में जाना पड़े, जाने क्या हो। इतने पाप किए हैं जिनका हिसाब हम कर ही नहीं सकते हैं। कितने पाप मन से कर डाले हैं, विचारों में कर डाले हैं, कितने कर्म से कर डाले हैं। तो प्रभु बहुत पाप किए हैं, अगति है मेरी, यानी अपनी गति समझ नहीं आ रही है। अब एक ही उपाय समझ आ रहा है कि आप ही अगति के गति हैं। अगति यानी जिसका कुछ हो ही नहीं सकता है, तो प्रभु आप ही उसकी एकमात्र आस हैं। इसलिए आपके चरण की शरण लेकर के आप ही को सार करना चाहते हैं। और अगर आप कहें ठीक है, तुमने ऐसा क्या कर्म किया, क्या ज्ञान है तुम्हारे पास, कोई साधन भजन है, तो देखिए आचार्यों का साधन भजन ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। वो तो भजन के ही विग्रह होते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो भजन में ही लगे रहते हैं, भगवान को ही याद करते हैं, भगवान से संबंधित कार्य ही करते हैं। लेकिन फिर भी दीनता बहुत आ जाती है प्रेमिक भक्त में। इसलिए वो कहते हैं कर्म ज्ञान किछु नाही मोर, साधन भजन नाही तुम्हें कृपा मोय, अमित तो कंगाल अहेतु की कृपा चाहे। आहा, हे प्रभु कर्म ज्ञान कुछ नहीं है मेरे पास, ना साधन भजन कुछ भी तो नहीं। आप हैं कृपामय और मैं हूं आपकी कृपा का भिखारी। आपकी अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी चाहिए। कुछ देखकर आप मुझ पर कृपा मत कीजिए, क्योंकि देखने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या देखकर कृपा करेंगे, यूं ही कर दीजिए ना। वाक्य मनोवेग क्रोध जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेग मिलिया ए सब संसारे भसाए दीते छे परम उद्वेग अनेक जतने से सब दमने छाड़िया छी आशा आमी अनाधिर नाथ डाकी तव नाम एकुन भरोसा तुमी। सही बात है, कितने प्रकार के वेग में हम फंसे रहते हैं, मन के वेग में, वाणी के वेग में, क्रोध में, जीभ यहाँ वहाँ डोलती है ये वो खा लूँ, कितने वेग में रहते हैं। उदर का वेग, पेट का वेग, उपस्थ का वेग, जनेंद्रियों का वेग, मारे मारे फिर रहे हैं ना जाने कितने जन्मों से। तो यही सब तो हमें संसार में रहने पर विवश करते हैं, बारंबार संसार भोग कराते हैं, बड़ा ही उद्वेग देते हैं, परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं। तो बहुत प्रयास किया प्रभु कि स्वयं अपने बल पर इनका दमन कर लूं, लेकिन अब समझ आ गया कि मेरा बल कुछ नहीं है, ये तो बहुत विकराल हैं, मैं तो अणु जीव हूँ, मैं कैसे इनका दमन कर सकता हूँ। सारी आशा छूट गई प्रभु, यही बताया है कि आप अनाथ के नाथ हैं, इसीलिए आपका नाम पुकार रहे हैं, अब एकमात्र भरोसा बस आप ही हैं। तो इस तरह से जो भगवान के चरणों की शरणागति लेता है वो समस्त आसक्तियों को छोड़ देता है और उसे मिलता है ब्रह्म पद, यानी इस जन्म में ही वो जीवन मुक्त हो जाता है भगवत रस में डूबकर, और अगले जन्म में भगवान उसे अपने पार्षद का स्वरूप प्रदान करते हैं, अपने समीप ले जाते हैं, अपनी सेवा दे करके उसे कृतार्थ करते हैं, और वही उसे चाहिए भी। तो बहुत ही सुंदर श्लोकों पर चर्चा चल रही है हमारी, जिसे जारी रखेंगे हम, सुनते रहिएगा समर्पण। और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में

ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल सही बात कि जब आपकी वाणी तो आकाशवाणी पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है सैटरडे, और सैटरडे का मॉर्निंग का हिसाब किताब आप लोगों के साथ में। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर आकाशवाणी रेनबो पर, बंदा हाजिर आपके साथ रेडियो पर। इस तरफ आवाज जो आ रही है वो मेरी है, मनीष आजाद रेडियो वाला की। उस तरफ आप हमारे सभी दोस्त, हमारे सभी मित्र, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह की आपको राम राम, गुड मॉर्निंग, और जी मैं क्या प्यार से नमस्कार है जी। मतलब आज की तारीख अगर देखा जाए वैसे तो, अगर जीरो को हटा दो, 2-6 वाला हिसाब किताब है, पहले वैसे तो 20 तारीख हो गई है, लेकिन शनिवार का जो है बस दिन है, शनिवार का मजा लीजिए। सभी लोगों को बारिश का इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, लेकिन रोजाना मतलब कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस हो रही हैं, आज बारिश होने वाली है, तेज आंधी चलेगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। लोगों ने अपने कपड़े पहले से बाहर से उतार के रख लिए, लेकिन फिर नहीं हो रही बारिश। बारिश वाला मौसम आए तो उसके बाद सर्दी आएंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये गर्मियां तब चली जाएंगी। लेकिन जो इतने सपने से होते हैं ना, मनीष भाई वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ गए, लेकिन जब वापस आए तो लेकर आपके लिए एक ऐसा धमाकेदार वाला शो जिसका इंतजार आपको भी हमें भी सैटरडे, और इसके साथ साथ यानी कि वीकेंड है तो क्या कुछ है खास। लेकिन उससे पहले मैं क्या जी, आपके पैर रुकने नहीं देंगे।

डांस की बीट हमेशा आपको एनर्जेटिक करती है ना, तो उस फिर आपको ऐसे लगता है कि भाई अब कुछ भी हो जाए बस डांस करके मानना ही मानना है। ये डांस वाली जो चीज़ें हैं ना साहब, जब आपको खुश रखती हैं, तो इसलिए कहते हैं कि इंसान को खुश रहने के लिए और दूसरों को खुश रखने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं साहब। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय ऊपर चढ़ता है, आपको लगता है कि नहीं भाई साहब, लोगों को मन में उसको लूटना, इसको खसोटना, उसको ऐसे करना इसका, अरे साहब जी भगवान जी का धन्यवाद इस आपको जो ये मनुष्य का जीवन जिया, लेकिन साथ में धीरे धीरे सच में आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं। लोगों को सहारा दीजिए, लोगों को सहयोग कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, फिर देखिए जिंदगी के अंदर कुछ भी करने से अच्छा लगता है। वो कहते हैं छोटे छोटे काम करने से अच्छा लगता है, छोटी सी चीज़ें, बालकनी में अगर आपने अगर चिड़ियों को पक्षियों को कुछ दाना डालने के लिए आपने छोटा सा बर्तन रखा है, उसके अंदर अगर पानी भी डाल देंगे ना, तब भी आपको लगता है कि हाँ कुछ तो आज अच्छा किया है। तो अच्छा ये कि आज का जो सफ़र है वो खास रहेगा, इसके लिए ये भी काम बहुत अच्छा रहेगा। तो क्यों 20 जून का इतिहास है साहब, वो क्या कहेगा इतिहास, इस पर भी नज़र डालेंगे। आज के दिवस के बारे में भी आपको बताएंगे कि आज कौन सा खास दिवस जो है मनाया जाता है। ऐसी वो क्या चीज़ है जो मतलब आपको मिलेगी फ्री में, जिसको लेने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे छुटकारा मिल जाएगा, करेंगे इस पर भी बात। याद करेंगे खास खास व्यक्तियों को, और आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे किनके साथ में है ये भी आपसे बात करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर, आपका दोस्त रेडियो पर मनीष आजाद रेडियो वाला आपके साथ में। तो बस सुनते रहिए और अच्छा अच्छा से महसूस कीजिए, बस सबसे अच्छी बात यही है।

ये आरडीपी भाई साहब जो है, जब लालीवा से दो बार पूछ चुकी विल यू मैरी मी, वहां ने दो बार मना कर दी, नो। अरे फिर बाद में जब लाली से वहां ने पूछी विल यू मैरी मी, और लाली ने भी कह दिया बेर के आई डोंट थिंक सो, अब कर ले। हाँ अरे बार बार पूछ रही है वहां तो ऐसे तो समझ में ना आ रही। चलो जी, लेकिन समझ में मैंने क्या बोला था आपसे कि आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्या कि ऐसी वो क्या चीज है जो आपको मुफ्त में मिल सकती है। मुफ्त में मिलने के बाद आपको लगेगा कि अरे बड़े काम की चीज है साहब ये तो, और उसको लेने के बाद आप बिल्कुल सही रहेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि मनीष भाई ऐसी क्या चीज है, भाई साहब ये चीज तो आपके पास है, सच में बता रहा हूं आपको, ये जो योग है जो है

ये ऐसी एक चीज है जो अगर आप रोजाना करना शुरू कर देंगे तो आपके चेहरे पर चमक हमेशा बने रहेगी साहब, बैठने की, खड़े होने की, लेटने की, पीठ में दर्द हो रहा, गर्दन में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, ये सब जितनी भी चीजें हैं ना जो आपको समस्याएं हो रही होंगी, इन सबसे भाई साहब आपको बिल्कुल भी राहत मिल जाएगी। सबसे पहली बात जो कहते हैं, मतलब ये मैं पर्सनल मैं भी फील करता हूं क्योंकि मैं भी करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बिल्कुल सही संतुलन में रहेगा। लेकिन हां देखिए, ये तो मैं जरूर कहूंगा एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, करने से जरूर हो जाएगा। मैं आपको गारंटी से 100% कह सकता हूं, आप 100 दिन लगातार ये करके देखिए, आपको अपने अंदर मतलब इतने सारे चेंजेस दिखेंगे कि आप खुद सोचने लग जाएंगे कि यार ये तो बड़े काम की चीज है। मुफ्त है बिल्कुल, कहीं मत जाइए, सुबह जल्दी से उठ जाइए। और चलो ये भी छोड़ो, आप अगर आपको लगता है कि सुबह आप नहीं उठ सकते हैं जल्दी से, जितने बजे भी आप उठते हैं तभी आप कर लीजिए। और बोलिए, ये तो हो सकता है घर में ही कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स, वो आपको बहुत ज्यादा फायदे देंगे, वही आप कर लेंगे ना, आप 10 बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए, बाकी मैं कहता हूं बहुत सारी चीजों से आपको ठीक हो जाएगा। लेटे में आप ताड़ासन कर लीजिए, बिल्कुल लंबा सा खींच दीजिए, आप मकर आसन कर सकते हैं, आप आपको उसमें ठीक। कितने सारी ऐसी चीजें हैं आपके शरीर के अंदर लचीलापन, संतुलन, योग की जितनी मुद्राएं हैं ना, आपके शरीर को इतना सुंदर बना देंगी। सच में आप सामने वाला व्यक्ति ना आपसे खुद कह बट भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। आप धीरे धीरे मुस्कुराएंगे, नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं, बोलिए ना मैं योग करता हूं, आप भी कीजिए। जब आप बताएंगे तो वो भी आपकी तरफ वो खींचेगा, उसको भी लगेगा हाँ भाई अच्छी बात है, ऐसे योग करना चाहिए। अरे भाई साहब आपके शरीर की जितनी मांसपेशियां हैं सारी की सारी ठीक हो जानी है। ऐसे सांस जब लोगे ना तो बिल्कुल वायु अंदर जब जानी है और वो बिल्कुल आपके जो फेफड़े ना उनको भी लगेगा अरे यार कुछ अच्छा सा हो रहा, अच्छा सा हो रहा है। तो ये सब काम कीजिए साहब, तनाव से, चिंता से, आपके सर में दर्द है, नींद नहीं आती है, आपको शरीर में इतना दर्द है, वो सब ठीक हो जाना है, लेकिन करने से होगा साहब। मैं फिर आपसे कहूंगा एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा और करने से होगा। तो इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट है, छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट ही है, करो अच्छा हो जाएगा। आप योग कीजिए और फिर कल तो देखिए योग दिवस भी है, पूरे भारत में आप लगभग देखेंगे 576 ऐसे जगह पर कल योग किया जाएगा। मतलब वो कल का दिवस तो है ही, लेकिन मैं तो कहता हूं ये रोज होना चाहिए, आपके लिए बहुत फायदे की चीज है साहब। और एक बात, ये भाई साहब दिमाग में से वाली बात निकाल दीजिए, अरे भाई योग तो बाद में करने वाली चीज है ये, अरे आज जुट जाओगे ना आगे तक जिंदगी भर तक के लिए बिल्कुल ठीक रहोगे, मोटा पेट हो रहा है भाई साहब कभी नहीं हो पा रहा है, होगा कैसे करोगे नहीं तो। एक बात और याद आ गई, आप करना शुरू करोगे आपको देख देख के दूसरे शुरू करेंगे, तो इसका मतलब आप बन जाएंगे लोगों के लिए इंस्पिरेशन, करोगे ना।

ये भाई साहब दिल भी किसी को देने की चीज है, इसको तो बहुत संभाल के रखना पड़ता है। इसको खुश रखेंगे ना दिल को, तो भाई साहब वो आपको बिल्कुल भी खुश रखेगा और आपका वो काम बखूबी करता रहेगा। आप जैसा कहोगे वो आपकी मानेगा, लेकिन अगर आपने दिल ही किसी को दे दिया तो फिर कैसे बात बनेगी। फिलहाल हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि 20 जून का इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ क्या कुछ ऐसा है जो आपको जानना बेहद बेहद जरूरी है। तो 20 जून की तारीख साहब क्या कहती है? 20 जून की तारीख हम 1837 की बात करते हैं, जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया 1837 में बनी थी। सैमुअल मोर्स की बात करते हैं, उन्होंने 20 जून 1840 में टेलीग्राफ का पेटेंट कराया था। 1863 की बात करते हैं, 20 जून पश्चिमी वर्जीनिया जो एक शहर था वो अमेरिका का 35वां राज्य बना। 1877 की बात करते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कनाडा के ओंटारियो में दुनिया का पहला वाणिज्यिक टेलीफोन सेवा जो शुरुआत की थी। आप कभी मुंबई में जाएंगे तो मुंबई के अंदर आप देखेंगे कई सारे जो स्टेशंस हैं, आप एयरपोर्ट्स की बात करेंगे तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स लिखा है। तो भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन 1887 20 जून को मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनल्स, यानी कि उसका नाम पहले वो था, उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स लोगों के लिए खोल दिया गया। 1916 की बात करते हैं, जब पुणे के अंदर SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जून को की गई। 1985 की, जब अमेरिका के उच्चतम नागरिक सजावट द मेडल ऑफ फ्रीडम को मदर टेरेसा जी को, उनको 20 जून 1985 को दिया गया। आपने देखा होगा कि वो जब भी कोई सम्मेलन होते हैं तो जिनेवा के अंदर वो

सम्मेलन हुआ था जब 1996 की हम बात कर रहे हैं, 20 जून 1996 भारत सरकार ने जो ये सम्मेलन हुआ जिनेवा में CTBT पर, उन्होंने वहां पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। '98 की बात करते हैं 20 जून की, जब विश्वनाथ आनंद ने व्लादिमीर कैमनिन को हराकर 5वीं फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। 1991 की हम बात करते हैं, जब बर्लिन को फिर से जर्मनी की राजधानी बनने के लिए संसद में 1991 को उन्होंने मंजूरी दे दी थी। 1991 कि जो आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर देखा जाए। देखिए, आप आज हम सबके बात करते हैं कि इतना वायु प्रदूषण है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि साहब 1999 की बात करते हैं, जब सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले दुनिया के 5 नगर कौन कौन से, मैक्सिको सिटी, पेचिंग, शंघाई, तेहरान और कलकत्ता भी इसके अंदर शामिल था। इतिहास के पन्नों से यही तो ये मत सोचिए कि आपके पास यहां पर ही ज्यादा, आप जहां रहते हैं बहुत प्रदूषण है साहब, ऐसे ऐसे भी देश रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह भी हैं, उनका भी नाम कहीं ना कहीं आता है। तो आप अपने आप को फील वाला गुड गुड कराते रहिए, अच्छा अच्छा सब कुछ ठीक होता रहेगा। उसके बाद आपको बताएंगे कि आज आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे किन के साथ सेलिब्रेट कर रहे।

0: आई ऑल्सो फील फील गुड जब मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप भी डांस कर रहे हो।
1: देखिए हमारे पास एक मैसेज आया है, वलाली कह रही है कि देखो कुछ हो या ना हो, जो इंसान जैसे भी लेजी होगा, लेकिन जिस तरह से आप गाने चला रहे हो इस तरह से तो थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हिल भी लिए तो भी ठीक हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो वही डांस आप कर ही लीजिए, थोड़ा बहुत डांस कर लेंगे तो ठीक अपने आप हो जाना है, और फिर उसके बाद आप अपने आप को जो कहेंगे एनर्जेटिक, वाजिवा मैं एनर्जी से भर गया, अब आप एनर्जी से और भी ज़्यादा भर जाएंगे अगर आप आज ये जान जाएंगे कि आज आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे किन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहला नाम तो अगर आप देखेंगे तो आप भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति जी हैं, यानी कि देश की प्रथम महिला, आज हम बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की, राष्ट्रपति जी आप देखेंगे तो आज आप इनके साथ अपना हैप्पी वाला बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ में आज आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं राहुल खन्ना जी, समझ गए, विनोद खन्ना साहब के सुपुत्र। आपको याद होगा सुषमा सेठ जी का नाम है ना, दादी का रोल करती हैं, माँ का रोल करती हैं, एक अभी लगभग मतलब 80 से ज़्यादा फिल्में हैं, कम से कम 20 के आसपास उनके सीरियल्स हैं, इनके साथ भी अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नीतू चंद्रा, इनके साथ भी आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा रहा फिर, हमने आपको बता दिया तो आज आप किन किन के साथ में अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप भी, दूसरी बात 20 तारीख है आज, कुछ ना कुछ आपको जरूर गिफ्ट मिलेगा, तो आपके लिए आज की तारीख जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कोई उपहार आप किसी को देने जाएंगे तो आपको याद रहेगा, आपने नया घर खरीदा, रजिस्ट्री हुई, कुछ भी है तो तारीख आपको ऐसे याद रखनी चाहिए, इतिहास के पन्नों में कुछ ना कुछ जरूर लिखा होता है। अब आज का दिवस हम कौन सा मना रहे हैं ये हम आपको बताएंगे गीत के बाद में, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर, प्रोग्राम चल जाए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर आपके साथ में। रेडियो पे इंगे को मैं हूं, उंगे को तुम हो। 9868107070 अगर आपके मन में भी कुछ कुछ गुटरगो हो रही है तो यहां पे लिख दो, वो खत्म हो जाएगी। मैसेज भेजो, मैं पढ़ूंगा नहीं, खत्म हो रही।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे

0: जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: हाँ जी, वेलकम वाले बैग को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब आपको ये बता दें कि साहब आज का जो दिवस है वो कौन सा खास दिवस है? आज आज है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस। 20 जून को मना जाता है। 2000 से दिसंबर 2000 से संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका शरणार्थी दिवस यानी कि 20 जून को प्रति वर्ष मनाने के लिए इसको बोला गया था। अब आप सोच के देखिए साहब, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, कहा जाता है कि जो उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें आप देखेंगे तो बहुत संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मतलब उनको मजबूर होना पड़ा। इन्हीं चीजों के लिए, उन लोगों को भी सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया गया। कहा जाता है कि जब आप कोई ऐसी कोई दुर्दशा अगर किसी की हो जाती है तो इनका ध्यान आकर्षित और उन शरणार्थियों की समस्या को हल करने के लिए इस दिवस की जो शुरुआत की गई, और कहा गया कि उनको भी उसी तरह से मान और सम्मान दिया जाए जिस तरह से आप अपने देश के अंदर अपने लोगों को देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी इस तरह से जीने का हक है। तो इसलिए कहते हैं कि मानवीय अधिकारों से कोई भी वंचित ना रहे, इसी करके आप ये दिवस को मनाते हैं। तो इस दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई भी है, और ईश्वर ना करे कि किसी के साथ ऐसी कोई समस्या हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि हर लम्हा एक मोहज़ाहिर है, आया था जो आया है फिर है, तबके तबके से बेदखल अब के कस्बे में हाजिर है। आज तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे आज है, ये दिवस के बारे में हमने आपको बता दिया। अब साथ साथ में बाकी की जानकारी के लिए आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। कौन 8 बजे के आएंगे? कौन सत्य?
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। Now you can do it like this, take it to the left, or you can do it like that, shake it to the right. All my ladies and my mans and all my ladies.
0: जब तक ये थोड़ा सा अंग्रेजी में कुछ कह रहे हैं, तब तक आपको बता दूं कि 9868107070 वैसे मैं अंग्रेजी कब सीखूंगा?

अब लंबी सी सांस ले लो बस, ये जो कभी कभी बोलते हैं कि अगर आप इस तरह की, वैसे तो अगर आप ठंडी वाली आहें ले लेंगे वैसे तो देख देख के आपको आहें भरने की आदत है, लेकिन अगर आप अच्छी वाली आहें भर लेंगे तो आपको तीन तीन फायदे हो जाएंगे, तीन तीन फायदे। कहते हैं कि सांस लेने के भी तरीके अगर आप ठीक से करेंगे तो आपको सुकून भरी जिंदगी में आसानी मिल जाएगी। कहते हैं ना बॉक्स ब्रीथिंग, आप आराम से लंबी लंबी सी सांसें लीजिए और उसके बाद देखिए आपका तन और मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। दूसरा फाइव फिंगर ब्रीदिंग जो होती है, आप देखेंगे इससे सांसों की जो प्रक्रिया है उसको हाथों की हल्की हल्की, हाथों के साथ साथ आप जैसे ऊपर जाती है आपकी सांस ऐसे ही बिल्कुल नीचे, बस इसको भी आप ध्यान रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा लंबी वाली आ भरना, जितना आप जब ऊपर भर के ले जाएंगे 5 सेकंड रोक लेंगे, पता लग जाएगा भाई ज़्यादा देर नहीं रोकना, पता चला वो ऊपर की ऊपर ही रह जाए, नीचे की नीचे हो जाए, फिर कहेंगे मरीज भाई आपने तो ऐसे ही बताया था। जी इसीलिए आप ध्यान रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, क्योंकि मेरा अब जाने का समय, आएंगे हम 9 बजे, तब तक सत्य आपके साथ में होंगे लेकर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक काम की जानकारी। पैसा पैसा

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी सुनने वालों का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। दिल से दिल तक के सफर पर एक बार फिर आपके साथ है आपका हम सफर दोस्त सत्य।

और माँ जगह जगह ही रहने चाहिए, और जगह जगह रहेंगे तो जरूर पूरे होंगे। फिलहाल मौसम का हाल आपसे साझा करता हूं। आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान लगभग 31.1 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, और मौसम विभाग के अनुसार शाम को आंधी और बारिश की भी संभावना है, हल्की आंधी और बारिश भी हो सकती है। और इसके अलावा जो मौसम है, राजधानी में एक हफ्ते तक तेज तपिश के आसार नहीं है। जी हाँ, अगले एक सप्ताह तक मौसम खुशनुमा बना रह सकता है और उसकी पूरी पूरी संभावना है। तापमान 40 डिग्री से अधिक होने की संभावना बहुत ही कम है। बादल छाए रहेंगे, आंशिक रूप से हल्की बारिश होने की संभावना है, और जो हवा है प्रति घंटे की रफ्तार उसकी 40 से 60 किलोमीटर हो सकती है। तो भाई ख्याल रखिए, मौसम का मजा लेना है तो आपको अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल एक और खूबसूरत ट्रैक आप सभी के दिलों तक पहुंचता हुआ दिल से दिल तक के सफर पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में इस वक्त सत्य आपके साथ है और प्रोग्राम जो है वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि नवंबर से भाई आगे की खबर आपको अभी से दे रहा हूं, मैं जो तय हुआ है वो आपको बता रहा हूं। नवंबर से आप बिना पीयूसीसी के ईंधन नहीं भरा सकेंगे। अगर आपके पास जो है जो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है वो नहीं है तो आप फ्यूल नहीं भरवा सकते अपने वाहन में। जी हाँ, और बहुत से और भी जो है निर्णय हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं और पेट्रोल पंप्स पर केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होने वाले पर ही आपको ईंधन मिलेगा। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली और दिल्ली से बाहर जो पंजीकृत हैं गैर BS6 वाणिज्यिक वाहन उनके प्रवेश पर रोक रहेगी। CNG, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। इसके अलावा निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए, ये बहुत खास है ध्यान से सुनिएगा, निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा ताकि कम से कम निजी वाहनों का प्रयोग किया जाए। सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50% कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी और शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से अपनी सेवाएं दे सकेंगे। तो काफ़ी कुछ जो है वो होने वाला है। आप जिस पॉल्यूशन से, जिस प्रदूषण से जूझते रहते हैं उसे कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए भी निर्देश हैं। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्माण और ध्वस्तीकरण पर्यावरणीय मानकों और धूल नियंत्रण उपायों के अनुरूप होना चाहिए, ये कहा गया है। और इस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच। और आग जलाने पर खास सख्ती रहेगी, खुले में कचरा जलाने पर या कोई अन्य सामग्री जलाने पर। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसी तरह से गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में सत्य आपके साथ है और साथ में है एक और प्यारा सा ट्रैक। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: Did you know, over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
1: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
0: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
1: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
0: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
2: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
3: पता का चाय गजब का स्वाद.
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात.
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स. इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम. इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर.

0: जी हाँ, जो भी हो सो हो, आकाशवाणी रेनबो पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सत्य आपके साथ है दिल से दिल तक के इस सफर पर, और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं जो कि बहुत खास जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, ब्लड डोनेशन कैंप जो है उसका आयोजन होना है आज यानी शनिवार 20 जून सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इन एसोसिएशन विद रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया और फ्री मेसन्स लॉज सेंट जॉन द एवेंजलिस्ट। ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के खास सदस्य, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर गोगा रेखी हमारे साथ हैं इस वक्त। आइए जानते हैं इस आयोजन के बारे में कि क्या खास है और कहां पर ये आयोजन होना है। मिस्टर गोगा रेखी, नमस्कार सर, सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: जी,
0: आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। और जहां तक कुछ जानकारी मैंने अपने श्रोताओं को दी है कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाना है आज फ्री मेसन्स हॉल जनपथ नई दिल्ली में, अब इसके बारे में और विशेष जानकारी जो है हम आपसे चाहते हैं सर।
1: आपको और आपके सुनने वालों को सर हमारा सादर नमस्कार
0: जी।
1: ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी, जैसे आपने बताई दिया है, हम लोग हर साल एक ब्लड डोनेशन कैंप खास करके इस मौसम में ऑर्गेनाइज करते हैं
0: जी,
1: जब यू नो पीपल कम आउट, बहुत कम निकलते हैं बाहर बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट

0: और जितने ब्लड बैंक्स हैं उनमें सब में इनवेरिएबली ब्लड की बहुत शॉर्टेज हो जाती है. तो ये इस करके और स्पेशल हो जाता है कि जितने लोग भी इस टाइम निकल सके एंड ब्लड डोनेट करें उसकी बहुत जरूरत रहती है.
1: जी,
0: हमारी सोसाइटी जो ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, ये अपना फ्री मेडिसिन हॉल एक हमारा है जनपद पे मैकडॉनल्ड्स के सामने.
1: ओके,
0: वक्त आपने बता ही दिया है
1: जी, एंड एक बार फिर से आप बता दें सर,
0: सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक.
1: जी,
0: और हमारा आह्वान ये है कि जो लोग भी उस दरमियान 18 और 60 साल की उम्र के बीच के नॉर्थ प्लेस या जनपद के आसपास हैं, वहां घूमने आ रहे हैं, वहां रह रहे हैं, वहां सर्विस कर रहे हैं, फिर इस मौके पर जरूरी आकर अपना सहयोग प्रदान करें. बिकॉज ब्लड एक ऐसी चीज है जो मुफ्त में दान होती है
1: जी,
0: और इतनी बड़ी चीज कर बैठती है कि किसी की जान भी बचा लेती है.
1: तो और हमारे लोग, हाँ जी, हमारे श्रोताओं का एक प्रयास और भी कई लोगों को जो है जागरूक करेगा इस विषय पर.
0: तो हम बेसिकली एक हम बार बार यही चीज सबको बोलते भी है कि ब्लड देने में वैसे कई लोगों को ही ना हिचकिचाहट होती है कि हाँ हमारा ब्लड दिया जा रहा है.
1: जी जी,
0: लेकिन यूनिट ऑफ ब्लड गिवन वो एक ऐसी चीज है जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता. ओनली एक दान है जो फ्री में होता है.
1: जी,
0: आप गए, आपने ब्लड दिया, 15-20 मिनट आपको वहां पे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जो रिफ्रेशमेंट वगैरह जरूरत होती है वो दी जाती है, एंड यू गो बैक होम अपनी दिनचर्या पर आराम से करने लगते हैं.
1: तो इसमें किसी
0: और इतना छोटी चीज में और बोलूंगा, जो यूनिट ब्लड आप देते हैं ना, ये अपने आप विदाउट कोई एक्स्ट्रा खाने पीने के, कोई एक्स्ट्रा रूटीन एक्सरसाइज के, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उसको रिप्लेनिश कर देती है.
1: जी,
0: तो मतलब कुछ खर्चा, कोई तकलीफ, कोई उसमें और प्रॉब्लम ही नहीं होती.
1: बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ये भ्रांति होती है जैसा कि आपने कहा कि ब्लड दिया तो क्या कमजोरी आ जाएगी या कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. और क्या खास ध्यान रखना है हमारे श्रोताओं को जो इस वक्त सुन रहे हैं और जो इच्छुक हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचने के, उन्हें किसी बात का
0: ध्यान उनके रखने के साथ साथ हमारे जब ये रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ हम मिलकर ये प्रयास करते हैं, सर उनका बीपी नॉर्मली नॉर्मल होना चाहिए, उनका हेमोग्लोबिन विद इन एक लिमिट होना चाहिए, और उन्होंने पहले कोई ड्रग्स लेने वाले आदि ना हो, कोई उनको कोई खास बड़ी बीमारी ना हो, एक नॉर्मल कोल्ड वगैरह जैसे ठंड जुकाम तो चलता है,
1: एक सामान्य
0: उनको, यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए. और सीधा आए उधर पे अपना, और मजे की बात है कि उनके पूरे चेक होने के बाद ही ब्लड लिया जाता है.
1: तो एक सामान्य स्वस्थ नागरिक,
0: ब्लड, हाँ जी हाँ
1: जी, इसमें फ्री मैमोग्राफी टेस्ट में देख पा रहे हैं.
0: ये एक मैमोग्राफी टेस्ट इज बेसिकली लेडीज के लिए होता है.
1: जी जी जी,
0: ये कैंसर का टेस्ट होता है. और ये आप इसके बारे में मैं ज्यादा अपनी तरफ से नहीं बता सकता, एटलीस्ट ब्रेस्ट कैंसर की इससे टेस्टिंग आपकी हो जाती है, जो एडवाइस की जाती है कि 50-55 साल के बाद हर लेडी को करानी चाहिए. 100 में से 90 कुछ नहीं होता, 95 एवरीथिंग इज फाइन.
1: जी,
0: लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जड़ से पहले ही पकड़ के उसका इलाज किया जा सकता.
1: तो इस टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है?
0: हाँ जी, वो है उपलब्ध है.
1: जी,
0: और एक बेसिकली चीज ये है कि पीपल शुड कम, क्योंकि कनॉट प्लेस में फुटफॉल आने वालों के ही ज्यादा है. जो कोई शॉपिंग के लिए आ रहा है, कोई नौकरी के लिए आ रहा है, कुछ कर रहा है, अगर वो आए तो हमारे लोगों को बहुत, और एक एक यूनिट ब्लड किसी की जान बचा सकती है सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर जो आप ब्लड देंगे, खुदा ना खास्ता, पहले तो भगवान सबके घर में सबको सुरक्षित और आराम से रखें, आपको एक कार्ड दिया जाता है, खुदा ना खास्ता कहीं आपको ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो रेड क्रॉस आपको उस कार्ड के एवज में फ्री में आपको ब्लड भी दे देता है, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता है.
1: बहुत खूब,
0: जो ब्लड की यूनिट आप देंगे आपको उसके अगेंस्ट एक कार्ड, और आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए वो एक सुविधा भी आपको दी जाती है. कल आई एम अगेंस्ट सेइंग, खुदा करे किसी को कभी कोई तकलीफ ना हो.
1: जी जी जी,
0: लेकिन वक्त पता नहीं तकलीफ हो गई, एंड यू नीड द ब्लड, सो यू कैन इमीडिएटली गो टू द नियरेस्ट रेड क्रॉस सोसाइटी, और वो आपको उस कार्ड के एवज में साल भर के लिए वैलिड होता है, आपको ब्लड की यूनिट मिल जाती है.
1: जी, तो आपके इस आह्वान का हिस्सा हम भी हैं, और हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं वे भी हैं, और हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारे सभी श्रोता जो है, जो भी इच्छुक हों, ब्लड डोनेशन कैंप में, इस रक्तदान शिविर में जरूर पहुंचे आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फ्री मेसन्स हॉल जनपद न्यू दिल्ली
0: ऑपोजिट मैकडॉनल्ड्स थोड़ा सा गेट नंबर 2 ऑफ जनपद मेट्रो स्टेशन
1: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया गोगा रेखी जी आपने बहुत खास जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और कुछ बातें जो भ्रांति हैं वो भी दूर की और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए हम भी आपके साथ हैं
0: सर आपकी आपके आपके इसको ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया कि आपने हमारे को वक्त दिया एंड एटलीस्ट कोई लोग भी सुन के आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा बोनस होता है
1: बहुत बहुत धन्यवाद अवश्य
0: शुक्रिया
1: जी तो ये थे हमारे साथ मिस्टर गोगा रेखी जो कि सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और उन्होंने ये आह्वान किया

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

जी हाँ, अगर तुम साथ हो और अगर हम साथ हैं तो इसी तरह से आदान प्रदान होता रहेगा जानकारी का और जो दिल का हाल है उसका। फिलहाल आपको एक खास जानकारी दे दूं, ट्रेन में बिना टिकट अब दोगुना जुर्माना होगा। जी हाँ, रेल मंत्रालय ने बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि, अब न्यूनतम जुर्माना तो आपको पता होगा अगर आपने कभी बिना टिकट रेल यात्रा की है, न्यूनतम जुर्माना 250 जो अब बढ़कर 500 रुपये हो गया है। जी हाँ, और ये नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। अगर अब कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करता है तो उससे पूरा किराया और 500 रुपये का शुल्क भी वसूला जाएगा। तो भाई यात्रा कीजिए, यात्रा सुखद हो, आपके हिसाब से हो, इसलिए सोच समझ कर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी ये जानकारी पास कर दीजिएगा। बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर हमारे साथ।

जी हाँ, अदाएं ऐसी होनी चाहिए कि हर किसी को याद रहे। आपको बता दें कि कल जो है नीट परीक्षा है फिर से, और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA नीट UG पुनर्परीक्षा का सुचारू सुरक्षित और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने की तैयारियों में लगी है, और उसके तहत आज यानी शनिवार को देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, और ये जानकारी जो है हमें मिली है। और इसके अलावा अगले कुछ घंटों में कौन से प्रोग्राम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी रेनबो पर, इसकी जानकारी भी आपको दे देता हूं। अब से कुछ ही देर के बाद एक बार फिर आपके साथ होंगे मनीष आजाद। प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर हर मूड हर टेस्ट के गाने आप सुनेंगे इस प्रोग्राम में। 10:05 पर हरप्रीत कौर होंगी आपके साथ वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आर लेकर, और 11:05 पर 11 बजे हिंदी में समाचारों के बाद 11:05 पर आप सुनेंगे प्रियंका वर्मा के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स। तो भाई ये थी कुछ जानकारी अगले आने वाले कुछ घंटों में जो आप आकाशवाणी पर प्रोग्राम सुन सकेंगे उनकी। फिलहाल जो है एक और गीत आपका इंतजार कर रहा है जो पहुंचेगा दिल तक, दिल के भीतर तक।

0: और क्या, बस वक्त जो है इस कार्यक्रम का समाप्त होने को है, बस कुछ मिनट दो मिनट शेष हैं। और आपको बता दूं, इस बार मॉनसून जो है ना दिल्ली एनसीआर में थोड़ा देरी से आएगा। वैसे सामान्य तिथि जो है वो 27 जून है, लेकिन इस बार मानसून के आने में देरी हो सकती है, इसलिए इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार का अपना मज़ा है, लेकिन मौसम तब तक सुहाना बना रहेगा। फिलहाल सत्य को दीजिए इजाज़त, अगली मुलाकात तक के लिए अपना प्यार अपना स्नेह मुझ पर यूं ही बनाए रखिएगा। मनीष लेकर आ रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने। फिलहाल टेक केयर, अलविदा, फिर होगी मुलाकात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: अब होने वाली है मस्ती, क्योंकि अब दिल के तराने गाने नए पुराने, ये वो वाला साहब हिसाब किताब है, यानी कि जहां पर म्यूजिक जो है ना वो बैक टू बैक अपने आप चलने लग जाता है और आपके जो पैर हैं वो अपने आप दौड़ने लग जाते हैं, फिर आप डांस करने लग जाते हैं, फिर आप कहते हैं मजा सा आ रहा है, मजा सा आ रहा है। तो मजा अभी और तेज में आएगा क्योंकि अब दिल के तराने गाने नए पुराने का सेगमेंट शुरू। तो ये 9 बजे से लेके 10 बजे तक बिल्कुल बैक टू बैक मौसम ऐसा रहेगा कि जब आप स्टूडियो के अंदर आके देख लो एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे, और फिर उसमें लगाएंगे तड़का रेट्रो वाला।
1: दिला दे घर,
0: दिलाएंगे,
1: दिला दे घर, बना दे घर।
0: चलो भाई चलो भाई चले, चलो भाई चलो भाई, चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

कैसे लग रहे हैं गाने हमारे भैया, हम तो पूछ ही सके हैं भाई कि कैसे चल रहे हैं गाने। और गानों के साथ साथ में जब आपको ये लग जाए कि भाई अगर गाने आपको कहते हैं ना कि आपके मैसेजेस तो बता देते हैं, भाई साहब ये रेट्रो वाला गाना तो बहुत अच्छा चला है। देखिए शो का जो हमारा सेगमेंट है दिल के तराने, गाने नए पुराने, इसके अंदर जो नए भी हैं पुराने भी हैं, जब सारे के सारे गाने आपको सुनने को मिलते हैं अच्छे वाले, रेट्रो का माल कर देता है। जानकारी इस समय ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, कह रहे हैं कि भाई साहब धूप तो खिली रहेगी लेकिन आंधी आ सकती है, दो दिन से हम भी सुन रहे हैं, ठीक है आएगी तो अच्छी बात है, थोड़ा सा मौसम ठंडा सा हो जाएगा, थोड़ी सी भाई साहब बारिश भी अगर करवा देंगे तो ठीक रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 39°39', कम वाले की बात करें 31°C है। बेहद ज़रूरी हो कहीं, बहुत लगता है कि नहीं मनीष भाई जाना बहुत ज़रूरी है, तब तो आप निकलिए, नहीं जाना तो मेरे हिसाब से घर में रहिए, एक चाय पी ली होगी, एक और पी सकते हैं, वैसे ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, एक बार अगर पराठे फराठे साथ में चलें तो फिर ठीक रहेगा। भाभी जी को बोल दीजिए, नहीं तो आप उनको आराम करने को बोल दीजिए, खुद ही बना दीजिए, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी हो, धूप भाई साहब बहुत तेज़ है, इसलिए जब सर पर धूप वो पड़ती है तो फिर आपको लग जाता है हिसाब के, ठीक है। अब आपको बता दिया, बाकी आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। सुनते रहिए दिल के तराने, गाने नए पुराने, ये सेगमेंट आपके लिए।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

शनिवार का दिन है, कहाँ जाने की सोच रहा हूँ मैं तो जी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप कहते हो कि नहीं मनीष भाई काम बहुत ज़रूरी है, अच्छा जाइए जाइए, लेकिन हम आपको बता दें अगर आप जाइए जाइए वाला हिसाब किताब है तो गाड़ी थोड़ा सा धीरे चलाइए, आप थोड़ा सा ब्रेक पर पैर जमाइए, उसके बाद फिर कहीं आप जाइए, क्योंकि जब आप जाते हैं तो घर से तो आप निकलते हैं बिल्कुल टाइम से, क्योंकि आप अपनी घड़ी के हिसाब से समय को बिल्कुल नाप कर चलते हैं, 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाऊँगा, 15 मिनट वहाँ से वहाँ लगेंगे, 5 मिनट यहाँ से यहाँ लगेंगे, हो गया काम, लेकिन आप इन समय के अनुसार चलने की बजाय अगर आप इसमें 5 मिनट और जोड़ देंगे कि घर से मेरे को अगर 9:30 निकलना है तो 9:25 पे क्यों ना निकलूं, क्यों ऐसा तो आप नहीं करते ना, आप जबकि 5 मिनट और लेट निकलते, अरे मैं गाड़ी थोड़ा सा तेज चला दूं, ऐसा हो जाएगा भाई साहब, ये जो ट्रैफिक है ना भाई साहब, मैं आपको बता दूं ये ट्रैफिक आपका नहीं है, सब लोगों की सोच ऐसी हो जाती है, तो रोड पर गाड़ियां ज्यादा हो जाती हैं जिस वजह से जाम लग जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे कहीं एक रोड आता है जो एडजॉइनिंग वाला होता है, हल्की हल्की ब्रेक आप लगाते हैं दूसरा भी लगाता है, इस वजह से जाम लग जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे कोई गाड़ियां होती हैं जहां पर उसके पेट में दर्द हो जाता है तो जाम लग जाता है। अब जैसे इस समय अगर आप देखेंगे, अगर इस समय कोई गाजियाबाद या मेरठ की तरफ जाना चाहता है मोहन नगर होते हुए, तो साहिबाबाद से लेकर मोहन नगर तक ट्रैफिक जो है थोड़ा सा स्लो है, अगर आप वहां से

यूटर्न लेते हैं मोहन नगर से गाजियाबाद जाने के लिए, तो आप जैसे ही वहाँ से यूटर्न की तरफ लेंगे, हल्का सा ट्रैफिक है, थोड़ा सा वहाँ पे आप संभल संभल कर चलेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, इस समय अगर आप राजौरी गार्डन की तरफ अगर जाना चाहते हैं मायापुरी फ्लाईओवर से, तो यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ वाला ट्रैफिक इस समय चल रहा है। विकास मार्ग पर अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक जो है टूवर्ड्स आईटीओ की तरफ बिल्कुल ठीक है, और रही बात अक्षरधाम जाने की तरफ, तो वो तो मक्खन मारकर रोड इस समय सटासट चल रहा है। इस समय भाई साहब ट्रैफिक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि अगर आप हल्का हल्का सा फिल्म सिटी की तरफ से अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा विलंब, यानी कि गाड़ी की स्पीड अगर आपकी 40 की होगी तो वो थोड़ी सी 25 तक आ जाएगी, बस इतना ही ट्रैफिक है। अगर आपको भी लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं ट्रैफिक का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं 9868107070 हमारा ये नंबर है। बाकी दिल के तराने गाने नए पुराने सुनते रहिए।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हे, डिड यू नो Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
2: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
2: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
3: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
8: पता का चाय गजब का स्वाद।
9: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
10: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
9: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
10: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
9: और विनर्स को क्या मिलेगा?
10: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
9: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
11: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
12: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
13: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
14: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
15: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
16: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
15: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
16: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
15: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
17: थोड़ा थोड़ा सा समय रह गया भाई साहब, मैं आपको सही बता दूं, लेकिन आपके मैसेजेस जो हैं उनके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं मैं। हितेंद्र दास आसाम से हमें हमारे साथ जुड़े हुए, धन्यवाद। जोया हमारे को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बता रही है, सर वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच हमारे सुनने के लिए आप। और जी गाने अच्छे लग रहे हैं बहुत, अपने मधुर गीतों के साथ साथ शो भी बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। डोली ने लिखा है, कंचन सोनिया विहार से हमें हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब है जी, आपको भी आदाब। अंसारी परिवार हमारे साथ जुड़ा है, बहुत शुक्रिया आपका। नीलम जी हमारे साथ दिल्ली बरवाला से जुड़ी हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत खूब आपके गाने अच्छे लगे। विशाल मल्होत्रा सिरसा ने लिखा है हमें हरियाणा से, और इसके साथ साथ मनीष भाई आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, अजय ने लिखा है झारखंड से, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें मैसेज भेजने के लिए। अब मेघा हमारे साथ जुड़ी है मैसेज के साथ, थैंक यू सो मच। अब जाने का समय हो चुका है साहब, ये बताने के लिए कि आप अपना ध्यान रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि आपकी ज़रूरत भाई साहब परिवार को तो है ही, समाज को भी बहुत है, क्योंकि आप धीरे धीरे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ये जब आप काम करते तो अच्छा लगता है ना। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि स्टूडियो में हरप्रीत आने वाली हैं लेकर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का प्लेट कूल, इसके बाद प्रियंका वर्मा आपके साथ होंगी, प्रोग्राम होगा बॉलीवुड ट्रेल्स का, बॉलीवुड ट्रेल्स के बाद में आप देखेंगे प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, प्रियंका आपके साथ दोबारा होंगी, दीपिका भटनागर लेकर आएंगी प्रोग्राम आपका आशियाना, रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम होगा, निशा आपके साथ में होंगी, निशा के बाद में आप देखेंगे प्रोग्राम कौन सा आएगा भाई, प्रोग्राम आएगा आपके लिए राजेश कुमार आएंगे लेकर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, इसके बाद देवर्षि रावत होंगे आपके साथ वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम सैटरडे सेजलेस, इसके बाद में विकास राय आपके साथ होंगे रेनबो सेलब लेकर, और आपके बाद विकास के साथ साथ रंगे महफिल का प्रोग्राम होगा भाई साहब। तो प्रोग्राम लगातार सभी सुनते रहिए, आपको हम जानकारी देते हैं, जानकारी के साथ साथ आपके लिए हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी लेकर आते हैं, ध्यान रखिए भाई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इचकल करंजी के कल्पंगना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें पर्यवेक्षकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटीए ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांश शाह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: What an amazing retro track that was. Now it's time for me to take a short break. I'll be right back. You stay tuned to Akashwani Rainbow. This is Matchless Music Hour.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: after that power pack number, it's time for me to take a short break. I'll be right back. You stay tuned to Akashwani Rainbow.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8

0: बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी एफएम रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा में मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री इचलकरंजी में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विश्वभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। लाइट कैमरा एक्शन सिर्फ एक फ्रेज नहीं है बल्कि हार्ट बीट है बॉलीवुड की। जहां पर बनती है वो मूवीज जो करती हैं आपको एंटरटेन, जो आपके इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड कराती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं, मोटिवेट करती है और दिल के अंदर एक पेट्रियोटिक जज्बा जगाती हैं, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा। सो गाइस लेट्स डाइव इनटू द वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, जिसके लेटेस्ट अपडेट्स के साथ सर्व होंगे हैपनिंग गाने। इसलिए लॉगिन करें आप हमारे रेडियो ऐप या फिर चले आए रेडियो के क्लोज, क्योंकि हम देंगे आपको बॉलीवुड डोज आकाशवाणी रेनबो पर, जहां प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्विस्ट, जहां मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड मॉर्निंग।

वेल दोस्तों, अभी आपने हर हर गंगे एक सोलफुल डिवोशनल ट्रैक सुना जो माँ गंगा की पवित्रता और शक्ति को सेलिब्रेट करता है। शंकर एहसान लॉय की कंपोजिशन ने इस गाने को एक ट्रेडिशनल येट मॉडर्न टच दिया है। जी हाँ, ये गाना अरिजीत सिंह की वॉइस में कमाल लगता है, दिल को छू जाता है। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। जी हाँ, प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेस में, तो चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। ग्रेस वसालिटी और कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन उनकी कला का कारवां रहा है। 5 डिकेड से भी ज़्यादा का सेलिब्रेशन फिल्म्स, थिएटर, टेलीविजन में रहा है इनका इंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन। द डॉन ऑफ स्टेज एंड सिनेमा सुषमा सेठ की हम बात कर रहे हैं, हु इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे गाइस। 20 जून 1936 को दिल्ली में जन्मी सुषमा जी एक ऐसी प्रोग्रेसिव परिवार से आई थी जहां बेटियों के सपनों को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी जितने बेटों के सपनों को। जी हाँ, जॉइंट फैमिली में पली बड़ी सुषमा जी का इंटरेस्ट बचपन से ही थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ था। दिल्ली से ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद उन्हें न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिली। आज दोस्तों ये आम बात लग सकती है, लेकिन उस जमाने में किसी लड़की का अकेले अमेरिका पढ़ने जाना आम बात तो बिल्कुल नहीं थी। खैर, अमेरिका में सुषमा जी ने ड्रामा को अपने एकेडमिक्स का हिस्सा बनाया। वहां उन्होंने ना सिर्फ कई प्लेज में पार्टिसिपेट किया बल्कि थिएटर की बारीकियों को भी बड़ी गहराई से समझा। एक प्ले कैसे लिखा जाता है, उसका मंचन कैसे होता है और एक परफॉर्मर अपनी कला को कैसे निखारता है। ये इंटरनेशनल एक्सपोजर उनके लिए सिर्फ एक डिग्री हासिल करने का सफर नहीं था बल्कि एक ऐसी लर्निंग थी जिसमें उनकी सोच, कला और प्रोफेशनलिज्म को एक नए आयाम दिए। ड्रामा में पढ़ाई करके जब अपने देश भारत पहुंची तो उन्हें अपने एक्सपीरियंस और नए पर्सपेक्टिव के साथ इंडियन थिएटर को एक नई दिशा देने लगी। साल 1960 दिल्ली के कल्चरल लैंडस्केप में थिएटर के एक नए दौर का दस्तक दे रहा था। इसी दौर में सुषमा जी ने कुछ एस्टैब्लिश थिएटर आर्टिस्ट के साथ मिलकर एक थिएटर ग्रुप की स्थापना की। रंगमंच की रोशनी, तालियों की गूंज और कला के प्रति उनके डेडिकेशन धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगा। लेकिन जिंदगी की स्क्रिप्ट में सिर्फ थिएटर कहाँ लिखा था, जी हाँ कुछ और भी लिखा था दोस्तों। इसी सफर के दौरान उनका विवाह हुआ। घर की दुनिया और स्टेज की दुनिया दोनों को ही सुषमा जी ने बड़ी खूबसूरती से निभाया। अब बात करते हैं फिल्म

के फिल्मी सफर की। कहते हैं टैलेंट अपना रास्ता खुद बना लेता। सुषमा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। एक थिएटर परफॉर्मेंस के दौरान लेजेंडरी फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने की नजर उन पर पड़ी। सुषमा जी की रियलिस्टिक एक्टिंग, नेचुरल एक्सप्रेशन और इमोशनल डेप्थ ने बेनेगल साहब को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने अपनी फिल्म जुनून के लिए उनको ऑफर दे दिया। इसी फिल्म से 1978 में सुषमा जी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। उनकी ग्रेसफुल प्रेजेंस और रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस ने फिल्म मेकर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो उन्हें अपनी फिल्म्स में कास्ट करना चाहते थे। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर साहब भी सुषमा जी की एक्टिंग से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म प्रेम रोग में तो कास्ट किया ही, साथ में जब तक वो फिल्म बनाते रहे माँ के किरदार के लिए अक्सर सुषमा जी ही उनकी पहली चॉइस बनी रही। धीरे धीरे एक ऐसा दौर भी आया दोस्तों, जब बॉलीवुड में माँ और दादे के किरदारों की बात होती तो सबसे पहले सुषमा जी के डायरेक्टर्स जो है उनका नाम ही लेते, फेवरेट चॉइस बन चुकी थी। अपने लंबे और शानदार फिल्मी सफर में सुषमा जी ने कई यादगार फिल्मों को अपनी मौजूदगी से खास बनाया। कलयुग, सिलसिला, जी हाँ बहुत सारी फिल्में हैं। कलयुग, सिलसिला, राम तेरी गंगा मैली, फासले, नगीना, जाबाज, प्यार किया है, प्यार करेंगे, खुद गर्ज, अपने अपने और तेरी, यही कहानी, वारिस, घराना, माँ, दीवाना, बोल राधा बोल, तरार, ताल, धड़कन, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, शानदार, तमाशा जैसी बहुत सी फिल्में उनकी फिल्मोग्राफी का हिस्सा है। हिंदी के अलावा सुषमा जी ने 1980 की पंजाबी फिल्में भी वो नजर आई थी। थिएटर और फिल्म के अलावा टेलीविजन में कई यादगार रोल निभाए हैं दोस्तों। रोल छोटा हो या बढ़ा, सुषमा जी ने अपनी नेचुरल एक्टिंग और ग्रेसफुल प्रेजेंस से ऑन स्क्रीन अपने किरदार निभाए, और शायद यही वजह है कि उनका नाम हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार स्क्रीन मदर्स में शुमार किया जाता है। विशिंग द ग्रेसफुल एंड लेजेंडरी सुषमा जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इवन एट 90, योर वाइब्रेंट स्पिरिट, बाउंडलेस एनर्जी एंड ड्यूरिंग पैशन कंटिन्यू टू इंस्पायर अदर्स। वेल, अभी दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म जिसमें वो नजर आई थी, जी हाँ, और उन्हीं की फिल्म में का एक गाना है, और ये गाना जो है उसमें अगर आप देखेंगे पिक्चराइजेशन तो आपको नज़र वो आएंगी। तो चलिए देखते हैं, जी हाँ, ओके

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
3: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
2: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
3: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
2: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज

0: नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
0: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com।
3: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

जी हाँ, वेलकम बैक. आ गई हूँ मैं प्रियंका वर्मा आपके साथ. जी हाँ, प्रोग्राम बॉलीवुड थ्रिल्स में. दोस्तों, कल यानी 19 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई शाहिद कपूर रश्मिका कृति स्टारर कॉकटेल 2, जिसके साथ एक ऐसी फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया जिसने ऑडियंस को किया प्लेजेंटली सरप्राइज. सिर्फ 2 मिनट्स 18 सेकेंड्स के इस टीजर ने सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा लवर्स के बीच बस क्रिएट कर दिया है. दोस्तों, श्रद्धा कपूर स्टार ई था फिल्म का टीजर का वेरी फर्स्ट ग्लिम्स ये एहसास करवा देती है कि ये सिर्फ एक बायोपिक नहीं बल्कि कला, संघर्ष और जज्बे और सपनों की एक को दिल को छू ले जाने वाली दास्तां है. महाराष्ट्र की लेजेंडरी तमाशा क्वीन विठाभाई नारायणकर गवारकर के जीवन से इंस्पायर्ड ये फिल्म विठाभाई जी को ट्रिब्यूट है, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट के दम पर एक फोक आर्टिस्ट के रूप में एंड्यूरिंग लेगेसी क्रिएट की. तो खास बात है कि श्रद्धा कपूर इस फिल्म में उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कमाल का. उनका लुक, एक्सप्रेशन, स्क्रीन प्रेजेंस, हर फ्रेम में इमोशन और सिनेमैटिक ब्रिलियंस का एहसास करवाती हैं. डायरेक्टेड बाय लक्ष्मण उतेरकर ऑफ छावा फेम, द फिल्म आल्सो स्टार रणदीप हुड और मोहम्मद जीशा. 28 अगस्त को इसी साल ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम. फिलहाल नीति मोहन की आवाज में ये बहुत ही सोलफुल ट्रैक है आकाशवाणी रेनबो पर. तू है तो दिल धड़कता है.

0: नीति मोहन की सोलफुल वॉइस फिलहाल आपके लिए है बॉलीवुड सितार से जुड़ा सवाल 9868107070 पे आपको बताना है कि आज किस वेटरन एक्ट्रेस का हैप्पी बर्थडे है। आज वो 90 ईयर्स की हुई हैं और उनका एक लंबा सफ़र रहा है, 5 decades से ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है थिएटर, फिल्म्स और टेलीविजन में। तो आपको हमें बताना उनके बारे में, आज हमने प्रोग्राम में बातें भी की हैं। 9868107070।
1: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
2: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
2: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
3: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
4: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
5: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
4: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
7: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
6: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
7: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
8: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
10: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
9: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
11: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: वेल दोस्तों, बात करेंगे कैसी फिल्म की जो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि भारत की गौरव, शौर्य और स्वाभिमान को ट्रिब्यूट देने वाले एक ग्रैंड सिनेमैटिक स्पेक्टिकल है। और इस महान यात्रा को सिर्फ स्क्रीन पर जीवन करने की जिम्मेदारी संभाली है कांतारा फेम ऋषभ सेठी ने, जो पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा के किरदार को निभाते नजर आएंगे। दोस्तों, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर ऋषभ सेठी हिस्टोरिकल एपिक द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज इज नाउ अ 2-part थिएटरिकल सागा। फिल्म का स्केल इतना भव्य है दोस्तों कि इसका बजट 500 करोड़ से भी एक्सीड पहुंच गया है। ग्रैंड स्केल, ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स, हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग के साथ बन रही ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से मानी जा रही है। हर फ्रेम इतिहास की भव्यता और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, वीरता और स्वराज्य के सपने को पूरी गहराई के साथ पर्दे पर उतारी जा सके, इसकी तैयारी की जा रही है। इस ग्रैंड सागा का पहला इंस्टॉलमेंट फिलहाल 2028 में थिएटरिकल रिलीज का प्लान किया जा रहा है, जबकि सेकंड चैप्टर को 2029 में रिलीज होने की उम्मीद है। संदीप डायरेक्शन सिंह के डायरेक्शन में बन रही ये ग्रैंड एम्बिशियस मल्टी पार्ट पैन इंडिया सिनेमैटिक एपिक है, जिसके लिए हम सब देते हैं आपको इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं। और फिलहाल दोस्तों, इस समय आप सुनेंगे BBC स्टंट को, सो स्टे ट्यून्ड।
12: From the BBC World Service, in association with ABC and Akashvani, this is Stumped.
13: Hello and welcome to Stumped, your intercontinental hit of news, features and debate from the quirky world of cricket. I'm Nick Eshragani, in for Alison Mitchell, and I'm in Leicester in the English Midlands. Everyone in England is in Football World Cup mode right now, but it's also great to see that the Women's T20 World Cup, which is being played here, is making a splash, especially with England off to a good start, although they will have to be without Natsiva Brunt. She's going to be injured for the next 2 matches at least.
14: Hello, Jim Maxwell for the ABC in Sydney. We talk about

0: वेल दोस्तों, वेलकम बैक। और मैं बहुत टाइम से बॉलीवुड सरताज के लिए ट्राई कर रही थी, फाइनली वो कॉल लग चुका है। देखते हैं हमारे साथ कौन है इस समय। हेलो।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए दोस्त। आप
1: ऑन? मेरा नाम शैलेंद्र वर्मा है जी, मैं दिल्ली रहता हूँ।
0: शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर। क्या करते हैं?
1: मैं जी मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ।
0: तो बहुत हुनर का काम है।
1: सारा दिन आपका रेडियो सुनता हूँ, इसीलिए उसमें मैसेज करता हूँ।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ से थोड़ा सा शोर आ रहा है, क्या आप उस जगह आ सकते हैं जहाँ?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ जी। तो आप बने आज हमारे बॉलीवुड सरताज सुषमा सेठ।
1: बड़ी खुशी हो रही है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा रेडियो पे नाम आया आज।
0: अच्छा, तो आप पहली बार बॉलीवुड सरताज बने? पहले बन चुके हैं?
1: नहीं जी, पहली बार।
0: पहली बार? कितने साल से आकाशवाणी सुन रहे हैं आप?
1: लगभग 30 साल हो गए हमको।
0: 30 साल में पहली बार? चलिए क्या बात है। ओके, आप ऐसे एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, तो हुनर का काम है। तो कैसा ये काम, आपने क्या शुरू से बचपन से सीखा है या कब सीखा?
1: पिताजी करते थे जी, फिर हमने भी सीख लिया।
0: अच्छा, तो इस काम में कितना मजा आता है आपको?
1: मजा है क्या, बैठ के बस रेडियो सुनते रहो, काम करते रहो।
0: रेडियो में क्या अच्छा लगता है?
1: मैं ज्यादातर रेनबो ही सुनता हूँ।
0: ओके, रेनबो ही सुनते हैं, क्या बात है। रेनबो में क्या खास लगता है?
1: ये बॉलीवुड सरदार तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ आपका ये वाला प्रोग्राम तो।
0: अच्छा, ओके, क्या अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में?
1: इस प्रोग्राम में जानकारी है और आपको बहुत कुछ आगे के लिए फ्यूचर प्लान आते हैं, बच्चों के लिए, सबके लिए, बुजुर्गों के लिए, और रेडियो डॉक्टर भी अच्छा लगता है मुझे बहुत।
0: ओके, मतलब आपको बहुत तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, आप सभी के लिए ही होते हैं आकाशवाणी पे, हर तरह के फॉर्मेट्स होते हैं,
1: बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: हाँ जी,
1: रेडियो से।
0: अच्छा, एक बात बताइए, आपको आज आपने सुषमा सेठ बिल्कुल सही जवाब दिया है।
1: हाँ जी,
0: इनके बारे में क्या जानते हैं?
1: इनकी बहुत फिल्में देखी है जी, मैं हम लोग भी देखा है इनका, टीवी पे भी देखा है इनको।
0: हाँ जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स भी बताते हैं इनके बारे में। जी,
1: बहुत, और इनका एक तरह से दादी वाला ही लुक है।
0: वो लगती भी दादी, उनमें वो अपनापन है, वो एहसास है ना।
1: हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई एक्टर नहीं है, हम हमारे घर का ही मेंबर है।
0: देखो यही तो खूबसूरती होती है, कोई अपनी एक्टिंग को इस तरह से सिल्वर स्क्रीन पर जीता है कि लगता है कि ये बस हमारा ही, हमारे बीच का ही है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: है ना। तो आप क्या करते हैं एम्ब्रॉयडरी की अलावा, और क्या कर सकते हैं, और क्या करते हैं?
1: बस यही है मेरा, बस यही शौक, रेडियो सुनता हूँ और
0: गाने गाते हैं।
1: गाने गाता नहीं हूँ।
0: गाना आए या ना आए, गाना चाहिए।
1: गाना कुछ नहीं गाता,
0: कुछ नहीं, कविता गाना कुछ भी
1: नहीं, गाना वो मेरे को नहीं आता बिल्कुल।
0: चलो कोई बात नहीं, वैसे कहते हैं क्योंकि आप म्यूजिक सुनते हैं ना, अभी आपसे बात करते करते एक बात ध्यान में आई है, जहन में आया कि एम्ब्रॉयडरी और म्यूजिक के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा रिश्ता होता है, पता है कैसे?
1: वो क्या है, हाँ सही कह रहे हैं आप।
0: आप बताइए कैसे?
1: क्योंकि वो एक आपको एक लगन रहती है, आप गाना सुन रहे हैं, आप काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और इसमें एक और भी होता है कि जैसे म्यूजिक में सुर और ताल, म्यूजिक जो है वो सुर और ताल से बनता है ना, वैसे ही एम्ब्रॉयडरी में सुई और धागे की जो सिलाई होती है उसका एक रिदम फॉलो होता है, मुझे ऐसा लगता है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ऐसे आपसे बात करते करते ये एहसास हुआ कि म्यूजिक में

0: जज्बात के शुरू जज्बात को शुरू में पिरोते हैं, एम्ब्रॉयडरी में एहसासों को रंगों और मतलब एक कला होती है दोनों ही, है ना भाई?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं कहूँगी जो आप ये जो स्किल है आप आने वाली जनरेशन के पास भी है आपके यहाँ पर?
1: नहीं,
0: अरे ये तो स्किल है, ये तो हमारे कहते हैं ना कि हमारे जो कल्चर में है, ये तो इसको तो जिंदा रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: नमस्ते।
0: चलिए ओके, टेक केयर। चलिए अब हम उसी फिल्म का गाना सुनते हैं जिसमें नजर आई थी सुषमा सेठ जी, उनका गाना सुने?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलिए ठीक है, मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि वो गाना लावी क्यों हो जाए। अगर हो जाता तो ठीक है, वरना फिर दूसरा गाना प्ले कर देंगे।
1: जैसा आपको ठीक लगे।
0: अलग आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अपना ध्यान
1: रखिए। नमस्ते।
0: नमस्ते। वेल दोस्तों, मैं कोशिश तो कर रही हूँ लगाने की कि जिसमें हमारी सुषमा सेठ जो है एक्ट्रेस हैं, वेटरन एक्ट्रेस, वो नज़र आई थी, वो गाना लग जाए। अगर नहीं लग पाता तो कोई बात नहीं, जी हाँ, हम लगा देते हैं बॉर्डर फिल्म का गाना।

दोस्तों, ये गाना ना सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि कहते नहीं है, मतलब ये हम सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल, इस गाने को महसूस भी कर रहे हैं। और ये गाना हमें ये भी याद दिलाता है कि देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो मिट्टी है जिसमें हमारे सैनिक अपनी कहानी लिख जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं कहूँगी बॉलीवुड सरताज, मैंने काफ़ी कॉल्स किए, प्रवीण जी, प्रवीण कुमार खारगोन मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी सही जवाब दिया। शैलेंद्र वर्मा जी दिल्ली से, बिल्कुल लास्ट में इनका कॉल लगा, पहले नहीं लग पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था, लेकिन फाइनली कॉल इनसे हमारा कनेक्ट हो गया। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है ओके

सलीम मलिक मेरठ का यूपी से, ये भी इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। इरशाद शर्फी, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया राजस्थान से। और इसी के साथ हमने रवि जोशी मेरठ जी को भी कॉल किया था, लेकिन इनका कॉल भी इन्होंने पिक नहीं किया। तो उन्होंने लिखा, वी आई एम सो सॉरी कुडंट अटेंड द कॉल एज आई वॉज अटेंडिंग द ओके, ये कुछ इनकी हाँ कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, तो उसको वो अटेंड कर रहे थे। कान से मोहम्मद फुरकान जी, और इन्होंने कहा है कि आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही लाजवाब है, थैंक यू सो मच। सलीम मलिक मेरठ यूपी से बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं। और इसी के साथ पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, ओके 11:05 से कार्यक्रम प्रसारण नहीं हो रहा है न्यूज़ ऑन एयर ऐप पे, ओके। और इसी के साथ राम राम जी, हेलो एंड नमस्ते इंडिया, जैसे सुर का है सास से रिश्ता, अरे वाह, जैसे सुर का है सास से रिश्ता, आगरा का है ताज से रिश्ता, हमारा है आपसे रिश्ता। इसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक बार फिर से प्रियंका वर्मा आपके साथ। दुखों से भरी दुनिया में कोई दिल से मुस्कुराना हो तो प्रियंका से मिले, किसी को कोई तकलीफ हो तो प्रियंका को सुने, कभी कोई सीख अगर आपको रास्ते में ना आए नजर तो प्रियंका से मिले, क्योंकि ये खान है सुखों की, सबके दिलों में बिना वजह दुखों की दवा, ये हमदर्द है। एक बार इन्हें जरूर सुने, इन्हें माने, इन्हें जाने, यकीन माने पछताएंगे नहीं। जय भारत, रोहित खेरा दिल्ली। ओ माय गॉड, इतना इतना आपने मुझे मान दिया है, थैंक यू सो मच रोहित जी। सीरियसली आप इस समय का मुझे देख पाते तो मेरी तो आंखों में आंसू है कि इतना अच्छा आपने लिखा है मेरे लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप भी खुश रहिए और इसी तरह आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है हितेंद्र दास आसाम से, लिखते वेरी नाइस प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे यानी प्रियंका को दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधा

ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Indeed, one love is all we need. Love from parent, love from peers, a love from siblings, a love from friends, whosoever. That one love is the most significant factor in our lives to stay positive, to stay resilient, and to overcome any challenge coming to us head on. With this, it's time for me to take a short break. I'll be right back. You stay tuned to Akashwani Rainbow at 102.6 megahertz.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल।

0: टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
7: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
6: क्या ये जांच उपलब्ध है?
8: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
9: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
8: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ।
9: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
10: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: It's time for yet another short break. I'll be right back. You stay tuned to Akashwani Rainbow.
1: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
2: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop, and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft, and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
2: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology, and Indian determination.
3: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: Welcome back, friends. It's almost time for me to conclude this edition of Play It Cool. And before I do that, let me take the last message. And I have got this message, and this one is by Miss Swati from Patna, Bihar. She says that talking about SLDs, I think family support is very important to handle these kind of challenges. And there are different apps which are developed by Ministry of Education, Government of India. And of course, the primary objective is the early screening and identification of learning disabilities at the school level. So that's a great effort. Thank you so much for this wonderful message. Due to time constraint, I won't be able to play the track that you are requesting for. But in the end, I just want to say that when we talk of disabilities, awareness is the first accommodation. Before all other accommodations, intervention strategies, awareness has to be there. When we understand SLD, we build classrooms, workplaces, and of course, communities where every mind can thrive, because every child deserves education, every child deserves accessibility, and every child deserves to be seen, heard, understood, and loved for what he or she is. On this note, I'm going to take leave of you, but I'm not leaving you just like that. I'm leaving you with a wonderful track by Bon Jovi, and this one is I Will Be There For You. Enjoy the track and keep on enjoying music on Akashwani Rainbow. This is me, Harpreet Kaur, signing off. Take care. May God bless all of you.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। जैसे गानों का है आवाज से रिश्ता, सुरों का है सांस से रिश्ता। जो गाने रहते हैं आपकी जुबान पर, नक्श छूट जाते हैं आपके दिलो जहाँ पर, वही गानों के बारे में पूछेंगे आपसे और बहुत सी बातें भी करेंगे आपसे, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर 9868107070। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जहाँ भेज सकते हैं वो गाने जो वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब। जी हाँ, वो गाने जिसकी धुनें बहुत पसंद है, जिससे जुड़ी कोई याद है, कोई बात है, या बस प्रियंका मुझे उससे वाइब कनेक्ट हो जाती है, बस वो आज वो प्ले कर दो। रीज़न बताएंगे ना कि गाना मुझे क्यों पसंद है, तो बस मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 2000 ईयर के बाद के गाने हो, थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बहुत पुराने ना हो, ये प्रोग्राम का प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो बाकी मैं देख रही हूँ कि न्यू जो मैसेजेस हैं वो फ्लैश हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो 9868107070 जल्दी से भेजिए। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड आफ्टरनून।

तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए आदर्श है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा।

खुद की खोज में निकल। जी हाँ, ये एक ऐसा पोएटिक कॉम्पोजिशन है जो सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि सीधा दिल तक पहुँचता है ना। इसके थॉट प्रोवोकिंग लिरिक्स सेल्फ डिस्कवरी, करेज, रिजिलियंस का पावरफुल सेलिब्रेशन है, और अमिताभ बच्चन की जो गहरी कमांडिंग वॉइस है वो तो इसमें और गहराई ला देती है। जी हाँ, इमोशनल डेप्थ ले जाते हैं, मानते हैं ना बात। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। और जैसे कि मैंने कहा है 9868107070 पर जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए और बताइए वो गाने जो वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, सूरज हुआ मध्यम, चाहन चलने लगा, कभी खुशी कभी गम। जी बिल्कुल, ये गाना मैंने जो है ये क्यों कर लिया है। और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर का भी मैसेज आया है, और इन्होंने भी 3-4 गानों के मेरे रिक्वेस्ट भेजी है। साथ ही में होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म राम लखन का तेरा नाम लिया तुझे याद किया। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं मेरा वाला सॉन्ग, गुड आफ्टरनून, आज के कार्यक्रम में किसी भी गीत में नाम शामिल कर लीजिए। और न्यूज और ऐप है बॉलीवुड ट्रेल से कार्यक्रम प्रसारण नहीं मिल रहा, कार्यक्रम मिस कर रहा हूँ। जी हाँ, ये मुझे मैसेजेस आए हैं कि आज प्रोग्राम जो है वो न्यूज़ ऑन ऐप के थ्रू आप नहीं सुन पाए हैं, इसका हमें खेद है। और इसी के साथ चलिए अभी हम लगाते हैं, और इसी के साथ हमें जर्मनी से मैसेज आया है ईला और सौरभ का, उन्होंने भी गाना की रिक्वेस्ट की है। फिलहाल हम सुनते हैं सूरज हुआ मध्यम, चांद चलने लगा, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़। फिलहाल मैं प्रियंका वर्मा अपनी आवाज़ को विराम देती हूँ।

0: powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
6: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
7: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी.
6: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
7: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली. और सबसे जरूरी, OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर.
8: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.
9: वेली मैसेज आया, गुड आफ्टरनून, मेरा वाला सॉन्ग. ओके, इन्होंने हमें 2-3 choices भेजी थी. और आनंद विहार से, किशन वंचनी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी से, इन्होंने कहा था कि रब ने बना दी जोड़ी से होले होले.

बिल्कुल, हौले हौले प्यार हो जाता है। वाला हमें तो आपसे प्यार हो गया है। 9868107070 मेरे वाला बस सॉन्ग सुन रहे हैं, और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा ये कंप्लेंट आ रही है कि वो न्यूज़ ऑन ऐप के माध्यम से हमें सुन नहीं पा रहे हैं दोस्त, इसका हमें खेद है। और ये मैसेज ज़रूर हमारे यू नो जो सही जो कहते हैं ना कि टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ तक पहुँच गया होगा आई एम श्योर, और इसको जल्दी ठीक करने की कोशिश की जाएगी। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ, और इसी के साथ आपने हमें मैसेज भेजा है दोस्तों। एक मैसेज जो है रोहित खेरा जी, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने हमें मैसेज लिखा है। सोचिए कितनी मेहनत करी है एक मैसेज को लिखने के लिए, और उनके जो जज्बात हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। और इन्होंने लिखा है कि राम राम जी, पकवान स्वादिष्ट बनते हैं सही मात्रा में मसाले और भाव डालकर। पकवान स्वादिष्ट बनते हैं सही मात्रा में मसाले और भाव डालकर। इंसान इंसान बनता है कर्म धर्म सच्चाई ईमानदारी से। अगर चाहते हैं आप भी ऐसे ही किसी इंसान से मिलना, तो कलयुग से होकर भी सत्युग के गुणों से भरा है, तो पहले उसको सुने समझे, फिर उनसे मिलने की राय बनाए और खुद को पावन बनाए। ऐसे ही नेक दिन इंसान इस समय लाइव संदेश पढ़ रहे हैं, जिनका शुभ नाम मेरी छोटी बहन प्रियंका वर्मा है। जब हमारी बॉलीवुड मूवीज में बिना देखे प्यार हो सकता है, तो क्या बिना देखे भाई बहन नहीं बन सकते हम? पवित्र है ये रिश्ता, नेक दिल का ये रिश्ता, जिनसे बनाया है ये रिश्ता वो है हमारे लय फरिश्ता। यूं ही नहीं बन जाता है इतना पवित्र ये रिश्ता। बहन की आंख में आए आंसू और भाई खुश हो ये नहीं हुआ अभी तक, इसलिए सदा खड़े हैं आपकी हिफाजत के लिए। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। रोहित खेरा जी ये हमें लिखते हैं दिल्ली से। अब बताइए दोस्तों, इसमें हम क्या कहें, आप बताइए आपको ये मैसेज कैसा लगा? वेल दोस्तों, हम आते हैं, मैसेज पढ़ते हैं रेडियो के, रेडियो एक माध्यम है जिससे हम जुड़े हुए हैं आपसे, आकाशवाणी रेनबो, इसका तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। और रोहित जी आपसे बस यही कहूँगी मैं, इतनी मतलब ऑफकोर्स आप जब भी मैसेज करते इतने दिल से मैसेज करते, इतना अच्छा लिखते हैं, और आपके जो भाव हैं वो समझ में आते हैं। आपके स्नेह आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए दिल से आभार, और यही मैं दुआ करती हूँ ईश्वर से कि आपकी हर राह रोशन रहे, खुशियाँ सम्मान और सफलता सदा आपके संग रहे। मैंने खुद भी कुछ लिखने की कोशिश की पर मैं अभी लिख नहीं पाई कि रिश्तों की डोर दिल से बन जाए तो बात बन जाती है, रिश्तों की डोर दिल से बन जाए तो बात बन जाती है, बिना मिले ही अपनों की पहचान हो जाती है। आकाशवाणी रेनबो पर आप 9868107070 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ नमस्ते जी, मनोज कुमार यूपी हरदोई सवाजपुर से प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, हमने कई मैसेज भेजे, मैसेज को शामिल नहीं किया गया, आज फिर भेज दिया, शामिल ज़रूर कर लेना। सिलाई के साथ सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक काम करते हैं, प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं। दोस्त दीप राम जी, अर्जुन, विमल, सुमित, मनमोहन, श्याम और अंकित भाई, राम किशोर, ठेकेदार, कोई भी अपनी पसंद का गाना सुना दो हमें, वही अच्छा लगेगा। वेल आप ही की पसंद के गाने चल रहे हैं, और देखिए आप अपने काम के साथ हमें सुनते हैं, और सिलाई किराई का काम आप करते हैं, इसे कहते हैं ना कि म्यूजिक में सुर और ताल जरूरी होता है, ऐसे ही सिलाई में एक ऐसे सुई और धागे का रिधम होता है ना। देखिए कितना एक हम एक तरह से सारे काम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, देखें तो, है ना। और वेलकम टू द शो विद फ्लास, कैसी हैं आप? डियरेस्ट प्रियंका मैम, आई मिस यू सो मच मैम, मुझे वो गाना सुना है अरिजीत सिंह की वॉइस में, दिल संभल जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू या फिर जादू है नशा। ओके, आपने 2-3 रिक्वेस्ट भेजी, अंशी शर्मा हसनापुर मेरठ से हमें लिखती हैं, ओके दोस्त। और इसी के साथ कोलर रोड भोपाल से राम बाबू, मालवीय मनीषा मालवीय, आपने भी हमें एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट भेजी है, ओके। और इसी के साथ हमें रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं, मेरा वाला सॉन्ग में आपका स्वागत है, आज इस प्रोग्राम में जगजीत सिंह और चित्रा जी की गाई गज़ल ये करें या वो करें, सुनने की बहुत अच्छा है, ओके। ये कौन सी फिल्म का गाना है, मैं कोशिश करती हूँ इसे ढूंढने की, सुनवा दीजिए प्लीज़।

हो सके अगर कोई शिकायत नहीं, अगर आप ना सुनवा पाए, थैंक यू सो मच, पर अपनी लिखी कोई लेटेस्ट पोएम ज़रूर सुनवा दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जी, बिल्कुल कोशिश की जाएगी। और अच्छा लगा कि आप हमारे साथ इस तरह कनेक्ट रहते हैं। आदाब, आज हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, प्रोग्राम ऐप पर प्रोग्राम नहीं, मोबाइल ऐप पर प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ठीक करवाएं जी। जी बिल्कुल, कस्बा गनौर यूपी से फारूक अली खान हमें लिखते हैं। इसी के साथ जोया मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से भी हमें कंप्लेंट लिख रही हैं कि योर ऑनलाइन रेडियो लिंक इज़ डेड फॉर 2 आवर्स, नॉट वर्किंग एट ऑल, प्लीज़ फिक्स इट। ओके डियर, विल ट्राई आर बेस्ट। और इसी के साथ आज हम आपको ये हमें मैसेज आया है प्रदीप सलूजा जी, ये भी हमें कह रहे हैं कि हमें सुन नहीं पाए हैं हिंदी ऐप के थ्रू। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है आदर्श कुमार विलेज बहेरी बांद्रा, आप इतने यूपी से हमें लिख रहे हैं, आप इतने मैसेज, मुझे काउंटलेस मैसेज मुझे लग रहे हैं, मुझे पता भी नहीं कितने मैसेज भेजे हैं। अगर इस तरह से आप मैसेज भेजेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने लिखा क्या है। हैप्पी अपने योग दिवस की हमें हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं जी, बिल्कुल आपको भी एडवांस में शुभकामनाएं। और जी हाँ, इसी के साथ मेरा वाला सॉन्ग में परदेस मूवी का दिल है तुम्हारा कसम खा के, ये हमें ना सुन दे परदेस मूवी का, सुना दे परदेस मूवी का, पर ये दिल है तुम्हारा का कसम खा के ही कौन सा गाना है। अभी हमें एक मैसेज आया था, मुझे लगता है सुनीता जी का मैसेज था शालिमा बाग से, इन्होंने कहा था दिल दीवाना परदेस फिल्म का, तो बिल्कुल कुमार सानू की आवाज़, ये दिल दीवाना जी, दिल तो दीवाना होता ही है। वैसे दिल का ख्याल रखिए अपना और किसी और का, क्योंकि एक वही है जो 24 घंटे काम करता है, बिना रुके काम करता है। दिल की धड़कन को महसूस किया है, उसमें भी संगीत होता है।

आपको पता है दोस्त, गाना सिर्फ आवाज़ नहीं, एहसास होता है। हर बीट के साथ दिल का रिदम होता है। गाने सुनते ही सांसें थिरकने लगती हैं, सोच का शोर धीरे धीरे थमने लगता है।

पहले इसी के साथ ही मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून प्रियंका, कैसे हो? सूरज फुआ माध्यम, लवली सॉन्ग। पर सूरज आज बहुत, सूरज देव बहुत चमक रहे हैं। जी बिल्कुल, सच में कह रही हैं, बहुत तेज चमक रहे हैं। तो खुद की खोज में निकल, वेरी टचिंग एंड मोटिवेशनल पोएट्री, जो भी सुनो लगता है कि अगर कुछ कर गुजर जाएं कुछ टाइम बाद। ओके हाँ, इस गाने में कुछ तो बात है, आपको मोटिवेट करता है, कन्विक्शन है इस गाने में। एक कॉम्पोजिशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक पोएटिक कॉम्पोजिशन है। बहुत ही प्यारी कविता लिखी है प्रियंका आपने। ओके, रिश्तों में भाव और सच्चाई हो, चाहे रिश्ता रक्त का हो ना हो, मानो तो पराए भी अपने हैं। ये दिल की धड़कन में संगीत है। राम राम जी। कक्षा में मॉनिटर की बागडोर सदा से काबिल छात्रा को ही दी जाती है, इसलिए आप ही को चुना है प्रियंका जी, इतनी इज्जत देने के लिए, रिश्तों की डोर को अपना बनाने के लिए, दिल से बने संबंध को अपना बनाने के लिए, भावनाओं को समझने के लिए। भाई की और से तहे दिल से जय माता दी। रोहित खेरा दिल्ली से लिखते हैं, जय माता दी रोहित जी।

0: जी के साथ हमें अर्जुन राठौर, अंकित राठौर, विमल माथुर, दीपू सक्सेना कहते हैं एक शायरी सुना दो, रघुवीर नगर से लिखते हैं। और इसी के साथ हमें, चलिए मैं आपको अपनी एक जो है आप सभी को डेडिकेटेड है, जब हम मेट्रो में होते हैं ना तो कहते हैं ना कि अगला स्टेशन आने वाला है, तो सोचिए अगला स्टेशन खुशी का है, दरवाजे आपकी और खुलेंगे, इसी बात पर मैंने लिखा है। और थोड़ा थीम को समझिएगा क्योंकि आप सभी को ये डेडिकेटेड है। और चलिए मैं आपको सुनाती हूँ, आपको कैसा लगेगा बताइएगा। अगला स्टेशन खुशी का है, दरवाजे आपकी और खुलेंगे, जिंदगी की लय में अब उम्मीदों के सुर खुलेंगे, जरा मुस्कुराइए आप बंधु, पलों की सिलबटे भी समट जाएंगी, इस तरह कशिश से दिल की धड़कनें भी सांसों में खुल जाएंगी।
1: Hey, did you know, over the

0: विकास के, जन कल्याण के।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
7: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
8: पता का चाय, गजब का स्वाद।

ए.आर. रहमान और चिन्मय के मेस्मराइजिंग वोकल्स और गहरे जज्बात से भरे बोल मिलकर एक मैजिकल म्यूजिकल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच राजा अमर संजय रचना, आपने दरभंगा बिहार से रिक्वेस्ट किया इस ट्रैक को प्ले करने का, बहुत ही प्यारा ट्रैक है और आपने सुना इसे आकाशवाणी रेनबो पर। इसी के साथ फिर से मैं आपको बताऊँगी रोहित खेरा जी हमें क्या लिखते हैं। सोचिए प्रोग्राम के साथ वो कितना अच्छा लिख रहे हैं, वो सुन रहे हैं और वो लिख भी रहे हैं साथ साथ। राम राम जी, अगला स्टेशन खुशी का है, दोपहर के 1 बजने को है। प्रियंका जी भी आने को है, रेनबो का स्टेशन होगा। सभी यात्री अपने सुनने की शक्ति को बढ़ा ले, अब आपको देशभक्ति के साथ शुद्ध विचारों के साथ मधुर संगीत सुनने को मिलेगा। बहन भाई मिलकर एक दूसरे का हौसला अफजाई कर रहे हैं। रोहित खेरा दिल्ली से लिखते हैं, दिल्ली नौ से लिखते हैं। थैंक यू सो मच। जी हाँ बिल्कुल, अभी इसी बात पता है मैंने बिल्कुल देशभक्ति का ही ट्रैक क्यों किया, क्योंकि आप सब फरमाइश करते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है कि एक देशभक्ति का ट्रैक जरूर, और मेरा मन भी मानता है कि एक देशभक्ति का ट्रैक तो जरूर सुनना चाहिए। अभी बहुत ही प्यारा लिखा हमें, धूप में भी सुरीला, आंधियों में भी मधुर। धूप में भी सुरीला, आंधियों में भी मधुर, ये रेडियो है जो हर पल है मधुर। कभी क्रिकेट का शोर, कभी गानों की बहार, ये है एफएम है जो लाए खुशियों की बहार। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, बहुत बढ़िया लिखा। प्रियंका जी आपका पोएटिक प्रतिभा का जवाब नहीं, ये मुस्कुराहट भी एक ऐसी कशिश है कि सामने वाले को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। जी हाँ, रवि जोशी मेरठ से लिखते, वो कहते हैं ना चेहरे की जो मुस्कान देखे मुस्कान आई जाती है, इन्फेक्शियस होती है बिल्कुल, और कहते हैं कि मुस्कान जो होती है वो खुशी ले आती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक कर देती है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स नहीं आ रहे हैं, साथ ही कुछ दिन से नॉर्मली क्लैरिटी नहीं है। ओके, या मैं डॉली लिखती हूँ दिल्ली से, मेट्रो की खुशी के दरवाजे, बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ खुद को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और को खुश करने की कोशिश करना, बिल्कुल। मैं निरंकारी कॉलोनी से संजीव हैं, फैमिली मेम्बर्स जीविका, मुस्कान, सपना, आरती। देखिए मुस्कान की बात की, चेहरे की, यू नो, और मुस्कान का एक मैसेज भी आ गया। और इसी के साथ हमें मैसेज है, भगवती जी मेरी भी हाजिरी लगा दो। बिल्कुल, मैं जब भी सोचती हूँ आपका मैसेज पढ़ना है, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। आपने भी 3-4 रिक्वेस्ट की है हमसे, आज तो शायद मैं नहीं यू नो प्ले कर पाऊंगी, लेकिन फिर कभी। और अच्छा लगा कि आप बिल्कुल कनेक्ट रहती हैं प्रोग्राम के साथ, और इसी तरह हमारे आकाशवाणी रेनबो के साथ कनेक्ट रहिएगा। और इसी के साथ हमें मैसेज आए हैं, ओके प्लीज़ प्ले माई रिक्वेस्ट, आई रियली लव योर प्रोग्राम, पटना से हमें लिखा है प्रगति ने। और थैंक यू, बस अगर गाने प्ले नहीं होते ना किसी वजह से, टाइम देखो 1 घंटा होता है। अंशी, ओके हाँ अंशी, आपका भी गाना लगाना, लेकिन अगर नहीं होता ना

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप दीपिका के साथ है। प्रोग्राम आप यहाँ पर इस वक्त सुन रहे हैं आशियाना, जहाँ बातें हो रही हैं कि आखिर प्यार, जिस एहसास की बातें तो बहुत होती हैं, जिसे इजहार करने का तरीका सबका अपना अलग अलग हो सकता है, पर आखिर प्यार की सबसे खूबसूरत, सबसे इनोसेंट भाषा क्या है, सबसे प्योर लैंग्वेज क्या है प्यार की। बहुत सारी बातों का जिक्र यहाँ पर मैंने किया और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को जब हम महसूस करते हैं ना, तो हम अपने आप समझ जाते हैं कि हाँ, यही है वो प्यार जिसका जिक्र किस्से, कहानियों, शायरियों, किताबों और गानों में रहा है। प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, बल्कि निभाने से होता है, क्योंकि रिश्तों में छोटी छोटी बातों का बड़ा असर होता है। किसी के लिए वक्त निकालना हो, किसी के साइलेंस को समझना हो, कभी कभी सिर्फ एक लाइन कहना कि घर पहुंचकर मैसेज ज़रूर कर देना, या घर पहुंचकर बता देना, एक टेक्स्ट कर देना, ये भी प्यार के इजहार का, प्यार जताने का एक बहुत ही खूबसूरत सा तरीका होता है। या फिर सिर्फ एक ये मैसेज कर देना, खाना खाया, कल परेशान लग रही थी, ठीक है, या सोशल मीडिया पर इतना सैड स्टेटस क्यों डाला है, मूड खराब है क्या। ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत छोटी लग रही है ना, लेकिन असल में प्यार जताने का बहुत सच्चा और इनोसेंट तरीका है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ, प्रोग्राम है आशियाना। बातें हमने की कि आखिर क्या है इस खूबसूरत से एहसास प्यार की, सबसे खूबसूरत और प्यारी सी प्योर वाली लैंग्वेज। बहुत सारी बातों का जिक्र मैंने किया, जाते जाते एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी। जब आप रिश्तों में सुनने लगते हैं ना, सामने वाले की फीलिंग्स को इतनी अहमियत देने लगते हैं कि जवाब देने से ज़्यादा या रिएक्ट करने से ज़्यादा या अपनी बात कहने से पहले आप उसकी बात सुनने की कोशिश करते हैं, तो ये भी प्यार का एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है। तो बस इसी खूबसूरत से एहसास के साथ प्यार को जताते रहिए, रिश्तों में प्यार बढ़ाते रहिए। और फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में दीपिका को दीजिए इजाज़त, आपके साथ 4 बजे दोबारा मैं जुड़ूंगी। लेकिन यहाँ अभी इस प्रोग्राम के लिए आपको मुझे इजाज़त देनी होगी। 3 बजे से यहाँ पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जिसका आज का विषय है हेल्दी एजिंग के लिए योग। तो बस आपको फिलहाल दीपिका को इजाजत देनी है, लेकिन हाँ, रिश्तों में प्यार बढ़ाते रहिए, प्यार बांटते रहिए, प्यार के खूबसूरत एहसास के साथ जुड़े रहिए। आकाशवाणी एफएम रेनबो सुनते रहिए।

0: वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की कला है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, योग फॉर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है लेकिन स्वस्थ सक्रिय और ऊर्जावान बने रहना हमारे हाथ में है। योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी करता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं योगी गुलशन कुमार। आप एक योग आचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सो मच।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी सेहत की, आपकी फिटनेस की यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर अपने विशेषज्ञ से। सबसे पहले जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, आप हमें ये बताइए हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है?
3: वृद्धावस्था में स्वस्थ कैसे रहा जाए? और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है, तो उम्र का बढ़ना प्रकृति का एक नियम है। बढ़ती उम्र एक खूबसूरत पड़ाव है जिसे योग के माध्यम से ऊर्जावान बनाया जा सकता है। और योग का केवल मतलब ये नहीं होता कि शरीर को कठिन आसनों से मोड़ना तोड़ना, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। योग का जहां तक अर्थ है अपने शरीर के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना, अपने शरीर के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सक्रिय करना। प्राय देखा जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो शरीर में कुछ समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का जिसे हम हेल्दी एजिंग की बात कह रहे हैं, तो हेल्दी एजिंग को पाने के लिए योग एक माध्यम है और इस माध्यम से हम एक हेल्दी एजिंग की लाइफ को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं।
2: तो योग जैसे कि आपने कहा हेल्दी एजिंग के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, तो ये हमारे शरीर को और मन को कैसे स्वस्थ रखेगा, कैसे रख सकते हैं हम इसके जरिए?
3: योग के माध्यम से शरीर और मन दोनों क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं और योग दोनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है, क्योंकि ये कहावत काफी समय से प्रचलित रही है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। यदि एक शरीर अगर हमारा रोगी होता है तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है और यदि मन रोगी होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के

0: अलग अलग भागों पे पड़ता है। मन अगर रोगग्रस्त होता है, मन अगर विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता है, तो उसका हमारे शरीर के आंतरिक कार्य प्रणाली पे बहुत गहरा दबाव पड़ता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगता है और जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को शक्ति विहीन महसूस करता है। और जब हम योग से जुड़ते हैं तो योग करने से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहने लगते हैं।
1: तो वृद्धावस्था की, जैसे कि हमारा आज का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, तो वृद्धावस्था में हम स्वस्थ रहें तो उसके लिए हमें कौन कौन से योग करने चाहिए?
0: वृद्धावस्था में व्यक्ति स्वस्थ रहे उसके लिए सबसे पहले है कि हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं वो सारे जॉइंट्स हमारे फ्लेक्सिबल हों। हाथों में उंगलियों में प्राय देखा गया है लोगों को रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाती है, घुटनों में अर्थराइटिस हो जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है, कंधों में फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, और इसके अलावा कमर में दर्द रहने लगता है, गर्दन में दर्द रहने लगता है। तो वृद्धावस्था में इन सब रोगों को दूर करने के लिए योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब हम योग की कुछ आसनों का प्रयोग करते हैं, कुछ योग की सूक्ष्म क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो शरीर में जो एक बढ़ती उम्र के साथ चेंजेज आते हैं उन चेंजेज को बढ़ने से रोका जा सकता है और शरीर को फिर पूर्व अवस्था में, एक जो किसी समय में किसी उम्र में हमारी एक शरीर की एक स्वस्थ अवस्था बनी हुई रही थी, कभी वो स्वस्थ अवस्था फिर वापस लौटने लगती है।
1: वृद्धावस्था में स्वस्थ अवस्था रहे, इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। उम्र चाहे कोई भी हो, अगर हमने फिट रहने का, स्वस्थ रहने का लक्ष्य बना लिया तो हम उसे जरूर पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें आप ये बताइए कि वृद्धावस्था में, जैसे कि अगर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो इनके लिए क्या अलग अलग आसन है या कोई ऐसा आसन है जो दोनों कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं?
1: कुछ आसन महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख आसन है जैसे भुजंग आसन है, ये चाहे महिला है चाहे पुरुष है दोनों ही कर सकते हैं। भुजंग आसन की पद्धति इस प्रकार से है, बहुत आसान है करने का तरीका। इसमें पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के नीचे रखते हुए सांस भरते भरते गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाते हुए कमर को मोड़ देने की स्थिति का नाम भुजंगासन है। ये महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे युवा हो, सभी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पादहस्थ आसन है, ये खड़े होकर आसन किए जाते हैं और दोनों पैर मिला के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होते हैं और फिर दोनों हाथ ऊपर सांस भरते हुए ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे झुकते हुए दोनों हाथों को बिना घुटना मोड़े दोनों हाथ पैर के अंगूठे के साथ टच करेंगे और इसमें कुछ सेकंड रुकते हैं और कुछ सेकंड के बाद फिर दोनों हाथ ऊपर करते हुए वापस आ जाते हैं। ये बाध्यस्थ आसन है, इसको महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक कटी चक्र आसन है, ये आसन भी पैरों में 2 फीट के लगभग अंतर रखते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ रखते हैं कंधे की सीध में और फिर दोनों हाथों को लेफ्ट साइड कमर को ट्विस्ट करते हैं और कुछ सेकंड ट्विस्ट करके रुकना होता है और फिर दोबारा सेंटर में वापस आ जाते हैं। ये दाएं और बाएं दोनों तरफ से यदि किया जाए तो ये आसन भी महिला और पुरुष दोनों एक साथ कर सकते हैं।
0: तो क्या ये आसन सुबह खाली पेट करना होता है या पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं?
1: खाली पेट ही आसन किए जाते हैं और सुबह अगर ये आसन खाली पेट किए जाए तो अधिक लाभ मिल सकता है। और जिनके पास सुबह कोई ऑफिस वर्क है, कहीं पर उनको जल्दी जाना होता है, तो शाम के समय भी ये आसन किए जा सकते हैं। शर्त ये है कि दोपहर का खाना 4 घंटे पहले खाया हुआ हो।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, शिल्पा मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते। ये लिखते हैं कि मैंने MRI करवाया था, मुझे साइटी का बताया है, मुझे हिप से काफ्स तक पेन होता है, मैं कौन सा योगा एक्सरसाइज करूं? सतीश कुमार, एज है 65 वर्ष और वजन है इनका 95 किलो, रोहिणी सेक्टर 17 दिल्ली से।
1: सतीश कुमार जी, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप साइटिका से पीड़ित हैं, और आसान तरीका है साइटिका पेन से मुक्त होने का, सबसे आसान तरीका योग ही है। इसमें विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन अनेक लोगों पे हमने प्रयोग किए हैं और उन लोगों ने साइटिका की पीड़ा से छुटकारा पाया है। इसमें एक ही टांग में रीढ़ की हड्डी से यह दर्द शुरू होता है कुल्ले तक और कुल्ले से फिर थाइज में और फिर काफ से पैर तक ये पेन की लहर जाती है। इसके लिए एक आसान आसन, जैसे मैंने बताया कि विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन कर सकते हैं, जमीन पर लेट जाएं और दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल फैला के रखें, फिर दाहिना पैर आप बाएं हाथ के साथ मिलाने की कोशिश करें। जब दाहिना पैर उठा करके बाईं तरफ लाएंगे तो घुटना सीधा रहना चाहिए और यदि आपकी उसी टांग में दर्द है तो फिर ये शायद आप अपने आप ना कर पाए, तो इसके लिए फैमिली के किसी मेंबर्स की सपोर्ट लीजिए और वो आपके पैर को ऊपर उठाते हुए राइट वाले पैर को लेफ्ट फैले हुए हाथ के पास लगा के कुछ सेकंड रोकें और कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर पैर को वापस ले आना होता है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करते हैं। ये विधि अगर 3 से 5 बार सुबह शाम अगर की जाती है तो आप पाएंगे कि आपकी साइटिका पेन में

0: काफी आपको 8-10 दिन के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक विश्वास पैदा होता है। और फिर आप कुछ दिन अगर इसको कर लेते हैं, 15 दिन 20 दिन, तो 80-90% साइटिका पेन से छुटकारा मिल जाता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हिम्मत सिंह, हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम। आपको भी नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: जी, ईआरडी की प्रॉब्लम है जी, एसिडिटी ऊपर रिफ्लेक्स हो जाती है, उसके लिए कोई योगा जी?
0: एसिडिटी रिफ्लेक्स यदि आपको हो रही है तो जिन चीजों से एसिडिटी आपको खाने से बनती है, इस चीज का आपको पता चल गया होगा। अगर आप बहुत ज्यादा चाय का सेवन करते हैं, कॉफी का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी मात्रा को कम कीजिए। दूसरा, अपना आहार में बदलाव लाइए। दो प्रकार के आहार हम लेते हैं, एक होता है एसिडिक फूड और दूसरा होता है एल्कलाइन। तो 70% आप एल्कलाइन फूड लीजिए और 30% आप एसिडिक फूड लीजिएगा। एसिडिक फूड में आता है मैदे का बना हुआ सामान है, बेकरी है, बिस्किट्स है और नमकीन है, इस टाइप की चीजें आती हैं। और जितना भी क्षारीय आहार है उसमें गाजर है, खीरा है, टमाटर है, ये जितने भी रॉ वेजिटेबल्स हैं, इनको आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको ये एसिडिटी की जो शिकायत है उसमें काफी आराम मिलता है। योग की जहां तक बात की जाए तो योग में आप कुंजल क्रिया कीजिए। सुबह खाली पेट 3-5 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और आगे झुकते हुए 2 उंगलियां अपनी जीभ से थोड़ा सा टच करें, उससे पिया हुआ पानी सारा वोमिट बन करके बाहर आ जाएगा। जैसे पानी बाहर आएगा तो आपकी एसिडिटी भी उसमें घुलनशील होकर के बाहर निकल जाएगी। ऐसे प्रतिदिन कुछ दिन कर लीजिए तो डेफिनेटली आपको इससे काफी लाभ मिल जाएगा।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहे हैं।
1: अजी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: आज इसे बताया कि योग से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो मैडम मेरा ऐसा है ना, मेरा थोड़ा बीपी ज्यादा है, तो कोई अंग्रेजी दवाई है तो उससे मैं समझता हूँ कि साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, तो मुझे कौन सा योग करना पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि जो योग के साथ साथ दवाई भी खाना चाहिए, कैंसर की बीमारी दूर होती है, तो इस तरह से गलत धारणा भी लोगों के दिमाग में है, तो मुझे यही बताना है कि आप मुझे कौन सा योग करना है, बीपी ज्यादा है।
0: देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होना एक लाइफस्टाइल डिजीज के अंतर्गत आता है, तो यदि आपका जीवन की पद्धति कुछ आपको लगता है कि अगर कुछ गलत चल रही है तो उसको थोड़ा सा बदलाव लाइएगा। और अगर आप अपने आहार में बहुत ज्यादा सोडियम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप तीखे मिर्च मसाले वाली वेजिटेबल्स लेते हैं या बाजार का कुछ इस तरह की

आपको लगता है कि अगर कुछ गलत चल रही है तो उसको थोड़ा सा बदलाव लाइएगा। और अगर आप अपने आहार में बहुत ज्यादा सोडियम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप तीखे मिर्च मसाले वाली वेजिटेबल्स लेते हैं या बाजार का कुछ इस तरह की ऑनलाइन चीजें आप खाना पसंद करते हैं, तो उनको थोड़ा मिनिमाइज कीजिएगा। और जहां तक योग की बात आप कह रहे हैं कि इसमें देखा गया है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको चंद्रभेदन प्राणायाम की मदद ले सकते हैं। इसमें राइट नोस्टिल बंद करते हुए लेफ्ट नोस्टिल से सांस को भीतर लीजिए और राइट नोस्टिल से सांस को बाहर कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा संयम से कीजिए, जल्दी

व्यायाम कर सकते हैं, और आप अपने दोनों टीथ को आपस में मिलाइए और टीथ के माध्यम से वायु को मुख के द्वारा भीतर की ओर धीरे धीरे भरिए। पूरा भरने के बाद होठों को बंद कर लेते हैं, फिर दोनों नोस्टिस से सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये दो प्राणायाम कीजिए, साथ में रिलैक्सेशन करिएगा। जब भी आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो, तब आप

0: इस तरह से ये दो प्राणायाम कीजिए, साथ में रिलैक्सेशन करिएगा। जब भी आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो तब आप थोड़ा रिलैक्सेशन करें, नीचे लेट जाएं या अपने बेड पे भी लेट सकते हैं, और बेड पे लेटते हुए शरीर को जितना रिलैक्स कर सकते हो अपने आप को ढीला छोड़ते जाओ। और ढीला छोड़ने का क्रम जो है 5 से 10 मिनट तक लगता है, एकदम शरीर ढीला नहीं हो जाता। जैसे जैसे बॉडी आपकी रिलैक्स होती चली जाएगी, आपका जो शूटअप हुआ ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। और जब भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो तब आप राइट करवट लेके लेटे। राइट करवट लेके लेटने से आपकी चंद्र पे पड़ता है, जब पैरासिम्पैथेटिक नाड़ियां हमारी एक्टिव हो जाती हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, तनाव कम हो जाता है। और हम देखा है हमने कि 10 से 15 यूनिट ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो आप इनका प्रयोग करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि इनसे पहले भी एक श्रोता थे हमारे साथ लाइन पे, उन्होंने भी कहा था कि डाइजेशन का इश्यू है, तो वृद्धावस्था में अक्सर देखा जाता है कि कुछ खाते हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पाचन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, तो क्या कुछ ऐसे योग आसन है कि जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाए, जो हम डेली में कर ले, इजिली खा सके, इजिली डाइजेस्ट हो सके?
0: जो वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये देखा गया है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति का जो चलना फिरना है वो काफ़ी कम हो जाता है। 60 इयर्स की एज के बाद प्राय लोगों को देखा गया है, वो बैठे रहते हैं या वो अपने बेड पे लेटे रहते हैं, उन्हें आराम करना ज़्यादा आरामदायक और अच्छा लगने लगता है। बॉडी का डीएक्टिवेट होना ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया जो है मंद पड़ने शुरू हो जाती है। अगर आप थोड़ा बॉडी को वर्किंग में रखें, थोड़ा सा वॉक कीजिएगा और खाना जो है वो थोड़ा सा हल्का लीजिएगा, क्योंकि आप अब आपकी कैलोरी बर्न तो हो नहीं रही है। तो अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जैसे आप 10-15 साल पहले कर रहे थे, भोजन की क्वांटिटी यदि उतनी ही ले रहे हैं और वर्किंग में बॉडी है नहीं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जिसके कारण आपको एक मंदाग्नि रोग के शिकार इस उम्र में लोग हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें केवल इतना ही करना है कि जठरा अग्नि को थोड़ा सा दीपन किया जाए। जठरा अग्नि को बढ़ाने के लिए योग में अग्नि सार क्रिया की बात बताई गई है। वज्रासन में इसमें बैठ जाते हैं, यानी दोनों घुटने मोड़ करके एड़ियां हिप्स के नीचे रख के वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखते हैं, सांस पूरा भरें और फिर सांस को पूरा धीरे धीरे बाहर छोड़ के सांस को बाहर रोक देते हैं। तब पेट की धीरे धीरे पंपिंग करते हैं, पेट अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, ऐसा सांस के बाहर रोके रहने तक 10-12 बार ही हो पाता है। फिर एक नई सांस ले लें, पेट को हिलाना बंद कर दें। इस तरह से इस पद्धति को 4-5 बार किया जाए तो आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है, इस समस्या का जो संबंध है वो आपकी नींद से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपकी पाचन क्रिया हमेशा खराब रहेगी। तो रात की नींद गहरी होनी चाहिए, तब आपका पाचन क्रिया भी अच्छा होगा।
1: अक्सर हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था में कि हमने अपनी उम्र में बहुत काम कर लिया, अब हम आराम करेंगे, लेकिन काम से आराम करना, शरीर को आराम नहीं देना।
0: जी जी
1: जी, बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं योग फॉर हेल्दी एजिंग पर, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70 से 75 केजी के आसपास मेरा वजन है। ओ पॉजिटिव मेरा ग्रुप है, ब्लड ग्रुप
1: जी।
2: पित्त मेरी प्रवृत्ति है। मेरे को क्या है कि कमर में और गर्दन में प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट में और नेक में प्रॉब्लम है। अब मैं आगे की ओर बेंट होता हूँ तो मेरे को

0: प्रॉब्लम बढ़ रही है, पीछे की ओर बैंड होता हूँ तो मुझे उससे रिलीफ मिलता है। तो हिप्स में ना क्या है, स्टिफनेस तो नहीं है, सॉरी स्वेलिंग नहीं है, स्टिफनेस और पेन होता है। फिर धनुष होता है ना, धनुष का बिना शरीर हो गया है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? और सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती है, गर्मी में थोड़ा सा उतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस सर्दी दोनों में बढ़ जाती है। क्या मैं विदाउट सपोर्ट बैठू या आगे की ओर बैंड हो, इंडियन टॉयलेट में ऐसे बैठता हूँ, मुद्रा में बैठो, अवस्था में मुझे परेशानी हो रही है,
1: ठीक
0: है, मुझे क्या करना चाहिए?
1: आपने कमर और अपनी गर्दन में पीड़ा की बात कही है और आपने स्वयं ही बता दिया कि आगे झुकने से कमर में दर्द और गर्दन का दर्द बढ़ जाता है। ये सावधानी आपको बरतनी होगी। जब तक आप थोड़ा योग करके स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक आपको फ्रंट बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए। और योग की जहाँ तक बात आती है कि अगर कमर में दर्द है तो इसके लिए दो कारण हो सकते हैं। हमारी बैकबोन के अंदर एक डीजनरेटिव प्रोसेस होता है और दूसरा होता है कि हमारी जो कमर की मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन आ जाती है तो भी हमारी कमर में दर्द होता है। यही स्थिति गर्दन के साथ होती है। जब भी हमारी रीढ़ की हड्डी में डीजनरेटिव प्रोसेस होगा तो हमारे वर्टिब्रेस के अंदर कुछ रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से टच करती है तो उसकी वजह से नाड़ियों में एक झुनझुनी, एक दर्द की लहर पैदा होती है। तो आपको इसके लिए आसान सा दो आसन हम बता रहे हैं। एक आसन पहले भी मैं वर्णन कर चुका हूँ, भुजंग आसन करेंगे, पेट के बल लेटना है और पेट के बल लेट करके दोनों हाथ अपनी कंधों के नीचे रखते हुए हाथों के सपोर्ट से अपनी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठाएं और साथ साथ जितनी आसानी से कमर मुड़ जाए उतनी मोड़ें, क्योंकि ज्यादा मोड़ेंगे तो एकदम बहुत तेज दर्द कमर में आने की संभावना होती है। धीरे धीरे मोड़ें और फिर थोड़ा रुके 2-3 सेकंड, उसके बाद फिर माथे को नीचे ले आएंगे तो आपकी कमर में और गर्दन में उसी समय नीचे लाने पे तुरंत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे करने से हमें आराम मिल रहा है। दूसरा हम कर सकते हैं मकर आसन। इसमें पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और दोनों घुटने मोड़ लेने चाहिए और दोनों हाथों को मकर आसन करने के लिए कंधों की सीध में फैला दिया जाता है और दोनों मुड़े हुए घुटनों को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ें और अपनी गर्दन को राइट साइड मोड़ें। यहाँ पे 2-4 सेकंड जितना आप रुक सकते हैं आराम से रुकें, उसके बाद 2-4 सेकंड बाद फिर दोनों घुटनों को और गर्दन को बीच में ले आए। इसी तरह से दोनों घुटनों को राइट साइड मोड़ेंगे और गर्दन लेफ्ट साइड मोड़ेंगे। इस तरह से ये विधि मकर आसन की दोनों तरफ से 4-4 बार कीजिएगा और जिस दिन आप करेंगे उसी दिन पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आप खुद बेटर फील करना शुरू कर दोगे।
2: जी एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरी वाइफ को हर्पीस की बीमारी है, आई से नीचे की तरफ नोज पर पेन होता है, मेरी वाइफ कौन सा योग करें कि फायदा हो? राज रानी, एज है इनकी 67 ईयर्स और रोहिणी दिल्ली से।
1: देखिए हर्पीज एक प्रकार के जीवाणु के कारण होती है और इसमें बड़ा इरिटेशन होती है, जो भी इस रोग के शिकार होते हैं तो काफी इरिटेशन फील होती है, तो कुछ ठंडक चाहिए। तो ठंडक चाहिए तो इसके लिए किया जा सकता है शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। अपनी जीभ को थोड़ा सा पाइप नुमा बना के फोल्ड करें और जीभ के माध्यम से शीतल शीतल वायु को भीतर की ओर भरें और फिर होंठ बंद करके अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें और थोड़ी रोकने के बाद दोनों नोस्ट्रिल से वायु को छोड़ दें। ये कम से कम 5-10 मिनट तक प्रतिदिन करें तो जो इरिटेशन आपके फेस के आसपास आईज के नीचे हो रही है हर्पीज के कारण, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। और इसके साथ जो भी आपको ट्रीटमेंट्स जो भी आप ले रहे हैं वो इसको कंटिन्यू में रखें अभी।
2: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। इन टूडेज स्ट्रेसफुल वर्ल्ड आई एम मेंटली एंड फिजिकली

0: डिस्टर्ब्ड, विच योग आसन आई कैन डू टू बी फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव। वैसे तो इनकी उम्र 26 साल की और हम वृद्धावस्था पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने मैसेज भेजा है तो हम ले लेंगे आज के शो में। तो ये लिखते हैं कि मैं फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो कौन सा योगासन करूँ?
1: फिजिकली और मेंटली अनफिट होना इस बात की तरफ संकेत देता है कि आपके अंदर जो एक बायो एनर्जी है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि बायो एनर्जी हमें माइंड और बॉडी दोनों से कनेक्ट करती है। जब भी हमारी बायो एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों में अनफिट फील करेंगे। और आपको क्या करना है, आप कुछ दिन, केवल कुछ दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिएगा। राइट नोस्टिल बंद करें और लेफ्ट नोस्टिल से सांस अंदर भरना है और फिर राइट नोस्टिल से छोड़ देना है। फिर लेफ्ट नोस्टी बंद करें, राइट नोस्टी से भरें और लेफ्ट नोस्टी से छोड़ देना है। ये अल्टरनेट प्रोसेस के साथ ब्रीदिंग आप करिए और कम से कम 10 मिनट जरूर कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि पहले दिन ही, जिस दिन आप 10 मिनट करेंगे, आप अपने अंदर बड़ा ग्रेटेस्ट चेंज फील कर पाएंगे। तो आप इसे करिएगा और फिर इसके रिजल्ट देखिएगा।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर मैडम को भी नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
1: बोलिए रघुवीर जी।
2: जैसे ये मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, मैं मेरी उम्र है 58-59-60 करीबन। तो आर्मी में क्या होता है कि कोई भी पीटी लंबी रनिंग के बाद या कुछ वार्म अप के बाद ही होती है, तो उसमें बताते हैं कि लंबी सांस नाक से लो और मुंह से छोड़ो करके। तो अब सिविल में तो ये बोलते हैं कि नाक से लो, नाक से ही छोड़ो। एक क्वेश्चन ये था। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा श्रोता बंधु जो रघुवीर जी के लिए आपने बोला था कि जो हम जीभ को मोड़ते हैं तो उससे सांस लेते हैं, तो फिर मुंह बंद करके छोड़ना है या फिर जीभ से ही छोड़ना है? क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करता हूँ, जब मैं कोई भी काम मुंह करता हूँ तो मैं लगा रहता हूँ ऐसे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो योगा से फायदा होता है या फिजिकल से फायदा होता है? क्योंकि फिजिकल रनिंग भी हम लोग करते हैं, जैसे हमारे तो घर रोड साइड में तो दौड़ जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता। तो योगा से में फायदा होता ज्यादा कि या फिजिकल उसमें फायदा होता है, थोड़ा बताने की कोशिश करें।
1: देखिए, योग जो है वो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है। फिजिकली जितना भी आप रनिंग करते हैं उससे शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, जैसे मांसपेशियां हैं और आपका थोड़ा स्टेमिना अच्छा हो जाता है, इतना ही होता है। लेकिन यदि आप शारीरिक और मानसिक विकास और बौद्धिक विकास करना चाहते हैं तो इन सब का जो लाभ है वो केवल योग से ही मिलता है। योग हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालता है, हमारी सोच को सकारात्मक करता है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाती ये सब चीजें। आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं तो योग आपको तनाव से मुक्त करने का एक तरीका बताता है और आप कि सोच एकदम पॉजिटिव हो जाती है और आप सारा दिन रिलैक्स महसूस करने लगते हो।
0: रिलैक्स रहने के लिए तो हम योग करते हैं और योग करना भी जरूरी है। एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं। हेलो डॉक्टर, योग क्या दिन में किसी समय भी कर सकते हैं? स्टैंडिंग पोजीशन में अगर ना कर सकते हो, क्या सिटिंग पोजीशन में कुछ क्रियाएं कर सकते हैं? सरोज मल्होत्रा, साकेत, मेरठ से।
1: सरोज जी, योग का समय सुबह और शाम का ही ठीक समय माना गया है, लेकिन यदि आप ऑफिस वर्किंग हैं और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं तो आप अपनी चेयर पे बैठे हुए भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे ट्विस्टिंग कर सकते हैं, पैरों को जमीन पे टिका करके और आप अपनी कमर को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड ट्विस्ट करें, तो इसे चेयर योगा कहते हैं। तो चेयर पे बैठे बैठे आप अपनी गर्दन, काफी आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और गर्दन अकड़ गई है 6-7 घंटे काम करते, तो चेयर पे बैठे बैठे गर्दन को बैक स्ट्रेच कीजिए और गर्दन को साइड मूवमेंट दीजिए। इस तरह से 4-5 टाइम्स बैक स्ट्रेच करें, फ्रंट में लाएं और फिर इसी तरह गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़ें, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड मुड़ें।

0: ये 4-4 टाइम्स इसे करें तो आप ऑफिस में बैठ के भी योग कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली समय निर्धारित है वो सुबह और शाम का है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो फिर आप अपने ऑफिस में चेयर पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं।
1: शायद कई बार काम करते करते हम स्ट्रेचिंग करना भी भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब दर्द का एहसास होता है तब हमें लगता है कि हाँ कुछ अकड़ गया है, जकड़ गया है,
0: तो जब अकड़ जाता है तो उसको करने के बाद तुरंत रिलीफ भी मिलता
1: मिलता
0: है।
1: है। एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, नमस्कार, मन को एकाग्र करने का उपाय समझाइए, क्या उसके लिए कोई योग है? अनिल गुरुग्राम से।
0: अनिल जी की मन को एकाग्र करने की ही बात हमारे महर्षि पतंजलि जी ने की है। महर्षि पतंजलि हमारे योग के गुरु कहलाते हैं और उन्होंने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और योग करने से एकाग्रता आती है। आप योग करने के लिए एक ड्राइंग पेपर के ऊपर एक 1 रुपीस कॉइन्स का एक गोल चक्र बना लें और उसको किसी ब्लैक पेन से ऐसे फिल कर लीजिए, बिल्कुल काले रंग का एक गोल चक्र बन जाएगा। उसे आप दीवार के ऊपर कहीं पेस्ट कर लीजिए और पेस्ट करने के बाद अपनी नासिका से 4 फीट की दूरी पर बैठ करके उस गोल बिंदु को देखें और आप देखेंगे कि 2-3 मिनट देखने के बाद आपके चित्त में एक ठहराव आने लगता है और आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाती है। इसे योग की भाषा में त्राटक विधि कहते हैं और जैसे जैसे आप त्राटक विधि का प्रयोग करने लगेंगे आपके मन में एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपके मन में अननेसेसरी जो थॉट्स आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे।
1: तो क्या ऐसे में याददाश्त बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कि वृद्धावस्था में जाते हैं तो कई बार हम चीजें रख के भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो क्या कुछ याददाश्त बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे योगासन है जो बढ़ती उम्र के साथ कर लेने चाहिए?
0: बिल्कुल, प्राय ये देखा गया है कि एक उम्र के बाद भूलने की बीमारी आने लगती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, हम कोई सामान रख के भूल जाते हैं और कभी कभी किसी किसी का नाम भी व्यक्ति भूल जाता है। तो स्मृति के ऊपर योग का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है तो दिमाग की जो क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तो डीप ब्रीदिंग करनी होती है, इसमें एक स्मृति शक्ति विकासक योग की बात कही गई है। ये विधि खड़े होके की जाती है, दोनों पांव को मिला करके गर्दन सामने की तरफ रखते हैं और सिर के मिडिल हेड के ऊपर फोकस करते हुए फोर्सफुली आपको इनहेल एक्सहेल 15 से 20 बार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने से ब्रेन के अंदर एक फ्रेशनेस आती है और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो धूमिल हुई स्मृति है फिर से जागृत हो जाती है और फिर हम स्मृति में काफी सुधार महसूस करते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्ते मैडम, मेरा नाम ब्रह्म दत्त है, मंगोलपुरी दिल्ली से कॉल कर रहा हूँ।
1: अच्छा बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: पहले तो विशेषज्ञ जो आए हैं उनको सादर प्रणाम।
0: सादर प्रणाम ब्रह्म दत्त जी।
2: हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी हाईफाई मशीनें हैं आजकल अत्यधिक तकनीक से युक्त, हम लोग जिम जाते हैं जिम करने, तो क्या जिम और योगा संयुक्त रूप से कर सकते हैं? क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं?
0: दोनों चीजें संयुक्त रूप से कर सकते हैं। पहले जिम कर लीजिए और जिम पूरा जब हो जाए तो उसके बीच में 10 मिनट का थोड़ा गैपिंग रखिएगा, उसके बाद आप योग कर लीजिएगा, क्योंकि जिम जो है वो आपकी मसल्स पावर को बढ़ाता है और योग जो है वो आपके ओवरऑल जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है हमारा और हमारा एस्क्रिटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से हमारा पूरा जो नाड़ी तंत्र है उन पे गहरा प्रभाव योग के माध्यम से आता है और इनमें एनर्जी आती है योग करने से। दूसरा, एक तरफ आप जिम करते हैं तो मसल्स हार्ड

0: हो जाते हैं, टाइट करता है जिम, और योग उन मसल्स में एक नई स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। दोनों में बस थोड़ा सा ये अंतर है कि आपने जो जिम के माध्यम से मसल्स डेवलप किया है, वो योग के माध्यम से उस मसल्स को लंबे समय तक बनाए रखने में आपकी योग से काफी सहायता मिल जाती है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, हम सब अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, तो क्या चाय के बाद हम योग कर सकते हैं, और हमें अपनी मील्स में क्या क्या खाना चाहिए, प्लीज बताएं। पूनम फ्रॉम नांगलोई।
0: पूनम जी, आप दिन की शुरुआत चाय से मत कीजिएगा, आप दिन की शुरुआत हरे नारियल के पानी से करें। सुबह उठते ही एक हरे नारियल का पानी आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास हरा नारियल उपलब्ध नहीं है, तब आप नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं।

0: Also, Dr. Yoga teacher, my problem is my sleep getting disturbed due to urine. My age is 60 years. Prostate operation done may be due to BP tablet. Guide for continuous peaceful sleep. I am getting up early. संजय जोशी फ्रॉम पुणे.
1: संजय जोशी जी, आप प्रोस्टेट की इस प्रॉब्लम के कारण जो इनकंटिनेंस यूरिन की समस्या है, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक कीजिएगा। इसके लिए मैं एक आसान सी विधि आपको बता रहा हूँ। इसमें योग में आती है एक प्रक्रिया मूल बंध की। आप अपने गुदा के मांसपेशियों को अंदर स्क्वीज करें। गुदा की मांसपेशियों को स्क्वीज करते हुए कुछ देर रोके। ऐसे रोकने के कारण आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो प्रॉब्लम है, वो काफी सुधरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम में सुधार होगा, आपका जो फ्रीक्वेंटली यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सुधार हो जाएगा। नाइट में बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। ओवरऑल इसका जो पूरे हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। जैसे मैंने बताया, एक नेचुरल वे है कि आप मूलबंध लगाएं। गुदा को भींच के रखने की प्रक्रिया को मूलबंध कहते हैं। इसे रोकिए और फिर उसके बाद इसे ढीला कर दीजिए। कितनी बार करना चाहिए? कम से कम कंटिन्यूसली 5 मिनट तो जरूर कीजिए। एक आता है मल आसन। जैसे इंडियन हमारी टॉयलेट होती थी, तो दोनों पैरों के बाहर हम बैठते थे, उस स्थिति का नाम है मल आसन। उसमें बैठ जाइए 2-3 मिनट और फिर बस उसे छोड़ दीजिए। इस तरह से करिए। रात्रि के समय जो लिक्विड डाइट्स है वो कम लीजिए। दूध या अन्य पदार्थ रात के सोने से पहले लेना बंद कर दिया कीजिएगा, और उससे आपकी रात को यूरिनेशन नहीं होगा और कम हो जाएगा, और जिससे नींद आपकी क्वालिटी सुधरेगी। और नींद के लिए थोड़ा सा शवासन रात को जरूर कर लिया करें।
0: योग जरूरी है, चाहे हम सुबह उठ के करें और रात की अगर नींद की समस्या है तो रात को जरूर करें। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड। वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर सर जी, प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड रविंद्र पाठक जी का आंखों का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के कितने टाइम बाद योग शुरू किया जा सकता है? बहुत सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
1: आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो आप 20-25 दिन बाद हल्के हल्के योग करना शुरू कर दीजिएगा। 20-25 दिन बाद सर्जरी अगर आपकी हुई है, तो 20-25 दिन बाद योग करना शुरू कर दीजिएगा। और धीरे धीरे 1 हफ्ते तक जो आपका पुराना रूटीन योग कर रहा है, 1 हफ्ते तक उसी रूटीन में आके कर सकते हैं। और कोई सवाल इन्होंने पूछा?
0: नहीं, उन्होंने यही पूछा था कि कितने दिन बाद योग शुरू कर सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: कर सकते हैं, 20-25 दिन बाद शुरू कर सकते हैं।
0: और एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर योगाचार्य को सादर नमन। डॉक्टर साहब, योग बंद कमरे में या खुले पार्क में करना चाहिए? योग में खान पान का क्या महत्व है? बच्चे, जवान और बुजुर्गों को कैसी डाइट रखनी चाहिए? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
1: योग हमेशा खुले स्थान पे ही करना चाहिए। बंद कमरों में योग करने से उतना लाभ हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी पाई जाती है। जब हम खुले वातावरण में योग करते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर उसका प्रवाह अच्छा हो जाता है। कॉस्मिक एनर्जी के प्रवाह अच्छा हो जाने से हमारा जो सोच है वो सकारात्मक होने लगती है। और जहाँ तक आपने आहार की बात की है कि कैसा आहार होना चाहिए, अगर हमारा शरीर 10 से 22-25 साल की एज का है, तो हमें अपने शरीर के ग्रोथ के लिए अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन लेना है, जिसमें सभी तरह के तत्व शामिल हो, मिनरल्स भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। और अब अगर बात आ जाती है कि उम्र बढ़ गई है, तो उम्र बढ़ करके हमें अपने भोजन पे थोड़ा सा संयम बरतना है। योग में ये भी बताया गया है कि शरीर को चार भागों में बांट दिया जाए, दो भाग भोजन के और एक

0: एक भाग जल के लिए और एक भाग खाली रखना चाहिए सांस लेने और छोड़ने के लिए। तो इस तरह से आप भोजन का विभाजन अपने लिए कर सकते हैं।
1: वैसे हमारा जाने का समय हो गया, लेकिन जाते जाते शॉर्ट में एक मैसेज आया है, वो मैं लेना चाहूंगी। वो लिखती हैं, उनकी एज 46 ईयर्स है, रेनू भोपाल से। प्लीज सजेस्ट योगा फॉर प्री मेनोपॉज वुमेन के लिए।
0: प्री मेनोपॉज के अंतर्गत जब प्री मेनोपॉज के लक्षण आते हैं तब प्राय देखा जाता है कि महिलाओं में एक डिप्रेशन की स्थिति आने लगती है, हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो प्री मेनोपॉज की स्थिति में योग की कुछ विधियां जैसे कोन आसन है, पादहस्त आसन है, ताड़ासन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इतना कर लीजिए, इससे काफी फायदा होगा।
1: और जाते जाते एक लास्ट में हमारे जो श्रोता, उनके लिए मैसेज कि कोई आसन जो हर कोई कर सकता है वृद्धावस्था में अपने, जिससे कि वो स्वस्थ रहें।
0: ताड़ासन सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। ताड़ासन वृद्ध भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। कम से कम 8-10 बार ताड़ासन करें, पादहस्त आसन करें और कटी चक्र आसन करें, कोन आसन करें। यही सारे आसन हानि रहित हैं, सभी कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज की चर्चा से हमने जाना कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को अधिक संतुलित, ऊर्जावान और आनंदमय बनाने का मार्ग है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे योग विशेषज्ञ योगी गुलशन कुमार। आप हमारे कार्यक्रम में आए और योग के महत्व को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए और हर उम्र को उत्साह के साथ जिए। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित उनके पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। ओडिशा के राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के रायरंगपुर जिले के डांडबोस में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर ओडिशा के लिए 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास

0: परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी।
1: मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। उड़ीसा की बेटी आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंची है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है।
0: इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन जहाजों आईएनएस दोनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 31 ओवर में 5 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

धन और वस्तु का वैश्विक स्थानांतरण, वैश्विक शहरों का उदय तथा बढ़ती सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता शामिल है। हालांकि व्यापार और पूंजी की तुलना में श्रम की वैश्विक आवाजाही प्रतिबंधित बिना हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रवासन उन मुद्दों के मूल में है जो इनके लिए जरूरी है, जिसमें राष्ट्रीय पहचान, आर्थिक प्रतिस्पर्धता और सुरक्षा शामिल है। इसीलिए विरोधाभास ये है कि जबकि अधिकांश औद्योगिक देशों के श्रम बाजार की कमी को पूरा करने और जनसंख्या के रुझान को संबोधित करने के लिए अधिक प्रवासियों की आवश्यकता होती है, फिर भी अधिकांश राजनीतिक और लोक लुभावन दबावों के जवाब में प्रवासन को प्रतिबंधित कर रहे हैं। हालांकि व्यापार और पूंजी की तुलना में श्रम की वैश्विक आवाजाही प्रतिबंधित बनी हुई है। इस तरह अंतरराष्ट्रीय प्रवासन को वैश्वीकरण की कोयला खदान में एक कैनरी बर्ड माना जा सकता है, या तो ये तब फलेगा फूलेगा जब वैश्वीकरण की ताकतें राष्ट्रवाद पर काबू पा लेंगी, या इसकी कमी इस बात का संकेत हो सकता है कि वैश्वीकरण चरम पर पहुंच चुकी है और पीछे हट रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2015 में 244 मिलियन लोग एक वर्ष से अधिक समय तक अपने देश से बाहर रहे, और निश्चित रूप से वे लोग जो अपने देश के अंदर ही बाहर जाते हैं। इस कुल में लगभग 20 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं। एक तरफ अपने देश में मजबूर लोगों की ऐतिहासिक उच्च संख्या, दूसरी तरफ प्रवास की कुल संख्या का अभी भी अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा। प्रवास और उसके प्रभाव के बारे में अब जानेंगे मेरे दोस्तों आज के लंबे कार्यक्रम में चेतन के साथ। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। प्रवासन एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग रहने और काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नौकरी, आश्रय या किसी अन्य कारण से लोगों का अपने घर से दूसरे शहर, राज्य या देश में जाना प्रवास कहलाता है। भारत में पिछले कुछ वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास बढ़ा है। प्रवास के कारण आजकल कई लोग बेहतर जीवन जीने लगे हैं। रोजगार के अवसर सबसे आम कारण है जिसके कारण लोग पलायन करते हैं। इसके अलावा अवसरों की कमी, बेहतर शिक्षा, बांधों का निर्माण, वैश्वीकरण, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखा, फेमिन और ड्रॉट, और कभी कभी फसल की विफलता ने ग्रामीणों को शहर की ओर माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया। जो लोग काम या आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। ज्यादातर बार प्रवासी लोग कुशल या शिक्षित नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें आमतौर पर मजदूर यानी श्रमिक, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए प्रत्येक दिन के अंत में भुगतान किया जाता है। ऐसे मजदूरों को अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है और वे कई समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जैसे कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन, स्वच्छता, रहने के लिए उचित स्थान आदि नहीं है। शहरी जीवन के लिए प्रवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता है। बड़े शहरों के कई अवसर और आकर्षण बड़ी संख्या में लोगों को बड़े शहरों की ओर खींचते हैं। प्रवास का प्रवासियों के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव हो सकता है। बेरोजगारी कम होती है और लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं। प्रवासन लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। इसे लोगों के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है क्योंकि वे नई संस्कृति, रीति रिवाज और भाषाओं के बारे में सीखते हैं, जो लोगों के बीच भाईचारा को बेहतर बनाने में मदद करता है। कुशल श्रमिकों के प्रवास से क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में वृद्धि होती है। बच्चों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है और जन दर घट जाती है। दोस्तों

जो सकारात्मक प्रभाव, अब कुछ नकारात्मक प्रभाव को भी देखेंगे हम आज के लम्हे प्रोग्राम में। ग्रामीण क्षेत्रों से एक व्यक्ति की हानि, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन और विकास के स्तर पर प्रभाव, शहरी क्षेत्र में श्रमिकों के आने से नौकरी, मकान, स्कूल सुविधाएं आदि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। बड़ी जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। शहरी इलाकों में ग्रामीण के लिए जीवन रहना मुश्किल है, क्योंकि शहरी इलाकों में प्राकृतिक वातावरण और शुद्ध हवा नहीं है। इन्हें हर चीज के लिए भुगतान करना पड़ता है। प्रवासन से किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन होता है, इसीलिए भारत में जनसंख्या का वितरण असामान्य है। कई प्रवासी पूरी तरह से निरक्षर और अशिक्षित है, इसीलिए वे न केवल अधिकांश नौकरियों के लिए अयोग्य है, बल्कि उनमें बुनियादी ज्ञान और जीवन कौशल का भी अभाव है। गरीबी के कारण वे सामान्य और स्वस्थ जीवन जीने में असमर्थ है। गरीबी में पले बड़े बच्चे को उचित पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं होती। प्रवास के कारण शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बढ़ गई है, जिससे अस्वच्छता, प्रदूषण आदि जैसे अनेक समस्याएं बढ़ गई है। कभी कभी प्रवासियों का शोषण किया जाता है। प्रवासन एकल परिवार की वृद्धि का एक मुख्य कारण है, जहां बच्चे व्यापक पारिवारिक दायरे के बिना बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था माइग्रेशन के बारे में आज के लम्हे प्रोग्राम में। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने होस्ट, दोस्त और आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: हे, डिड यू नो, ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इंडियाज़ डिफेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम बूस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस विद कॉन्फिडेंस।
7: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
6: Exactly. And one name that's

0: Leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
1: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
0: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
8: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
9: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: इस वीकेंड एक अलग तरह की सफाई कीजिए। कपड़ों की अलमारी तो कभी भी साफ हो जाएगी, लेकिन जरा मन की अलमारी की तरफ भी तो नजर डालिए। वहां कुछ पुरानी गिले शिकवे, धूल की परत ओढ़े पड़े हों, कुछ अधूरे अफसोस हैंगर पर टंगे हों, कुछ बेवजह की चिंताएं तह लगा कर रखी हों, और कुछ दर्द ऐसे हों जिन्हें बरसों से कोने में छिपा रखा हो। इस शनिवार इतवार थोड़ा वक्त निकालिए, जो बातें अब काम की नहीं रही उन्हें प्यार से विदा कीजिए, जो यादें मुस्कान देती हैं उन्हें सहेज कर सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखिए, माफी के कुछ नए कपड़े टांगिए, उम्मीद की एक नई चादर बिछाइए और बस इस वीकेंड कुछ इस तरह से अपने मन की सफाई कीजिए। आकाशवाणी FM रेनबो पर दीपिका के साथ हैं आप, प्रोग्राम सुन रहे हैं अल्फा जैन, जहां हम कह रहे हैं लेट्स डिटॉक्स। और डिटॉक्स के लिए बहुत जरूरी है कि मन की अलमारी को किया जाए साफ इस वीकेंड।

0: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। प्रोग्राम है अल्फा जैन, जहाँ हम सैटरडे को कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। और आज बातें हो रही हैं अपने मन की अलमारी को साफ करने की, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने जिक्र किया, कई बार ऐसा होता है कि पूरे वीक बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इतना भाग रहे होते हैं कि वो बस चीज हुई, हमने देखा अच्छा ऐसा हुआ और हम आगे बढ़ गए। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे मन में इकट्ठा होती रहती हैं, हमारे मन में अपनी जगह बनाती रहती हैं, चाहे किसी का कुछ कह देना हो, चाहे फिर थक जाना हो। बहुत सारी बातें होती हैं। आप खुद ऐसा महसूस करते होंगे कि पूरे वीक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पर हम वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं कि उन चीज़ों के बारे में बैठकर सोचें, क्योंकि वक्त निकालने से पहले इतनी तेज़ी से वक्त भाग रहा है कि अगला दिन आ जा रहा है, फिर उस अगले दिन में अगले दिन की जिम्मेदारियां, अगले दिन आगे बढ़ने की मुश्किल, आगे बढ़ने का वो सफ़र, उस सफ़र के रास्ते पर कैसे हम आगे बढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते और हमें लगता है वो बात आई गई हो गई, पर नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मन में अपनी जगह बना कर बैठ जाती हैं और फिर हमें करती हैं परेशान। इसलिए इस वीकेंड करें साफ अपने मन की अलमारी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दीपिका के साथ हैं आप। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं अल्फा जैन, और जैसे आपकी आप जानते हैं और मैं भी आपसे बार बार कह रही हूं कि सैटरडे का दिन होता है क्योंकि अल्फा जैन के हर दिन यानी कि अलग अलग दिन हम अलग अलग बातें आपसे करते हैं और यहाँ सैटरडे के दिन हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। तो आज मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि लेट्स डिटॉक्स। और लेट्स डिटॉक्स में आज क्या कहा हमने? आज हमने कहा, आज हमने सोचा और आज हमने ये समझने की कोशिश की कि जब किसी वीकेंड पर रूम की अलमारी की जगह हम साफ करेंगे अपने मन की अलमारी तो कैसे जिंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम समझ नहीं पाते, कई बार वीकेंड पर हम घर के कोनों को चमकाने में लग जाते हैं, कभी अलमारी सहेजते हैं, कभी ड्रॉअर अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं, मगर एक अलमारी हमारे दिल के भीतर भी तो है जिसमें बहुत सारे अधूरे किस्से हैं। उस ज्यादा पीछे नहीं जाया जाए तो उस वीक की ही कुछ बातें हैं जो हम समझ नहीं पाए हैं, जिन्हें हमने संभाल कर रख लिया है। कई बार कुछ ऐसी यादें हैं जो बोझ बन चुकी हैं, बेवजह के कुछ डर हैं, उन्हें धीरे से बाहर निकालिए, धूप दिखाइए और फिर मुस्कुराकर उन्हें टाटा बाय बाय बोल दीजिए। और फिर क्या होगा ना, जब आप अपने मन की अलमारी को कर लेंगे साफ तो फिर उसमें हो जाएगी बहुत सारी जगह। अब उस जगह में आपको रखने हैं कुछ नए सपने, कुछ नई उम्मीदें, कुछ अधूरी सी हंसी और अपने लिए बहुत सारा प्यार, उससे भी ज्यादा प्यार जितना आप अपने अपनों को करते हैं, उससे भी ज्यादा प्यार आपको रखना है मन की उस अलमारी में अपने लिए। और यकीन मानिए, मन की ये अलमारी में जितनी जगह आप बना लेंगे जिंदगी आपको उतनी ही खूबसूरत लगेगी। तो इस वीकेंड मानिए मेरी बात, कीजिए मन की अलमारी को साफ। और फिलहाल आपको यहाँ देनी होगी इस प्रोग्राम में दीपिका को इजाजत। आज के लिए आपसे मुझे इजाजत लेनी होगी, जल्दी ही फिर होगी मुलाकात, क्योंकि आपसे तो हम मिलने आते ही हैं। जाते जाते एडवांस में जो भी डियरेस्ट डैड मेरे शो को सुन रहे हैं, सभी को अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। कल है फादर्स डे, लेकिन कल आपसे मुलाकात नहीं होगी मेरी, तो आज ही कर दिया मैंने ये काम। फिलहाल के लिए आपको देनी होगी दीपिका को इजाजत इस प्रोग्राम में। जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते, गाते गुनगुनाते, जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते, आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे। और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे, क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहां जाना है। 5 बजे से आपके साथ जुड़ेंगी निशा, प्रोग्राम लेकर आएंगी सिटी लाइट्स यानी कि शहर की हलचल से करवाएंगी आपको रूबरू। फिलहाल दीपिका ले रही है आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि जल्दी ही होगी दोबारा मुलाकात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। इससे पहले मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने ओडिशा की प्रगति की सराहना की। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय भागीदारी के रूप में उभर रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण को दोहराया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री इस समय पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक शामिल है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 43वें ओवर में 9 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, इसीलिए कह देती हूँ जल्दी से गुड इवनिंग सिटी लाइट्स में। आज मैं निशा हूँ आपके साथ में और आपकी शाम बड़ी ही शानदार बन जाएगी। एक तो देखो सैटरडे है आज और सैटरडे के दिन पर हमें अपने एक बड़े ही अच्छे से प्यारे से दोस्त से बातें करने मिल जाए तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, और देखिए ये सोच मेरे दिमाग में आई एंड आई चूज दिस कि एक पॉजिटिव थॉट को मुझे अपने दिमाग में रखना है, नहीं तो काफी लंबे समय तक मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि हम वो हैं जो हमारी सोच है एक्चुअली, और हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो बस हमारे दिमाग में आती है एंड ऑटोमेटिकली दे डिड वट एवर दे विश टू डू एंड इवन वर्स। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ, लेकिन एक लंबे समय तक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन कर लेने के बाद लाइफ में फाइनली अब मैं कह सकती हूं कि हम जो हैं वो हमारी सोच नहीं है जी, हम सिर्फ उनके क्रिएटर हैं, हम उनके अपनी थॉट्स के थिंकर्स हैं मुझे ऐसा लगता है। और हम अगर चाहें तो बड़े ही सोच समझकर अपनी सोच को अपने दिमाग में एंटर होने के समय पर ही जांच परख कर सकते हैं कि भाई हम लोग ये जो सोच अपने अंदर लेकर जा रहे हैं ये कहाँ तक हमें फ़ायदा पहुंचाने वाली है ना जी। तो आपने सोच लिया आज का? हाँ, आपने चूज कर लिया ग्रेट म्यूजिक को एंड अ ग्रेट स्टेशन को। दिस इज 102.6 FM रेनबो। गुड इवनिंग, मैं निशा, एंजॉय योर सैटरडे विद मी।

सैटरडे इवनिंग, आज 20 जून तारीख हो गई है। सिटी लाइट्स में मैं निशा हूं आपके साथ में, और बाहर के तापमान की अगर बात करूं तो बड़ी भाई एक्सेसिव हीट, यही एक शब्द है जो हमें हर जगह सुनाई दे रहा है, हर एक इंसान के मुंह से यही सुनने को मिल रहा है। मतलब गर्मी और पसीनों से सब लोग परेशान है। फिलहाल बाहर का तापमान 39 बना हुआ है, और भाई क्या करें। हाँ, ये आई अग्री कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, और इसी टेम्परेचर से, बढ़ते तापमान से बचने के लिए लोग दिल्ली की सर्दी की तलाश में कहीं पहाड़ों पर चले जाते हैं, और देखो वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है। मैं भी थोड़ी सी एक छुट्टी के बाद आई हूं, तो अच्छा वेदर एंजॉय किया, लेकिन अब यहां पर देखिए गर्मी झेल रही हूं ऐसा नहीं कहूंगी, बस गर्मी एंजॉय कर रही हूं, बिकॉज दिस इज माय सिटी एंड आई लव माय सिटी। ठीक है, बस गर्मी का एक जो वर्स्ट पार्ट मुझे लगता है ना, वो ये है कि ऑफकोर्स पसीने आते हैं, गर्मी लगती है, लेकिन प्यास बहुत लगती है। और जब मुझे प्यास लगती है ना, तब भी एकदम से दिल में यह एहसास होता है कि जो जितने भी प्यारे से पशु पक्षी हैं, जो हमें इतनी, इनका चर्पिंग साउंड जो हमें इतना सुंदर लगता है कानों में जब हमारे पड़ता है, तो इनके लिए भी पानी का अरेंजमेंट करना, एज अ मतलब इंसानियत तो हमें इतनी दिखानी चाहिए जी। तो बस दिल्ली के तापमान को मैं तो कहूंगी एंजॉय करते रहिए।

बाहर फिलहाल बादल छाए हुए दिख रहे हैं मुझे, कहीं पर धूप छलक कर आ रही है और कहीं पर बादलों की छांव बनी हुई है। आप देखो जी अपनी खिड़की से आसमान की तरफ, कैसा लग रहा है?

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

बहुत अच्छे से जांच परख कर तैयारी कर लेनी चाहिए, और अगर कहीं कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो भाई एक बार फिर से सिलेबस को थरली देख लेना चाहिए। खैर, आज 20 जून है और आज के दिन नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे मॉक ड्रिल्स की गई, ताकि ये जो इसका पूरा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो स्मूथ और सिक्योर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट किया जा सके। ये जो री एग्जामिनेशन है दिस विल बी कंडक्टेड June 21st, यानी कि कल ये होने वाला है, और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक ये चलेगा। और ये जो एग्जामिनेशन होगा हमारे देश भर की 551 सिटीज में होने वाला है, और 14 फॉरेन अब्रॉड सिटीज भी हैं जिसमें लाखों स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं। और ये तो आप बात मानते हैं ना कि भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके बीच एग्जाम हो रहा है, तो इसके लिए कोई ना कोई तैयारी तो होनी चाहिए ना। हाँ जी, ये जो दिल्ली सरकार है इन्होंने एक विशेष तैयारी कर ली है, जो दिल्ली में नीट परीक्षा के लिए 97 केंद्र बनाए गए हैं, और यहाँ पर आने वाले परीक्षार्थियों के साथ साथ में ना जो उनके पेरेंट्स आएंगे उनके लिए भी सुविधा का छोटा मोटा या कहें विशेष प्रबंध किया गया, यानी कि उनके लिए ORS, साफ पानी की व्यवस्था की गई है या फिर शिकंजी की व्यवस्था की गई है, ताकि इस हीट को वो बीट कर सके। और आपने देखा होगा ना, बच्चों के साथ में जब पेरेंट्स आते हैं अक्सर उनके लिए इंतजार करते हुए कहीं पेड़ की छांव तलाशते रहते हैं, कभी वो पार्क में बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करते हुए समय बिताते हैं, तो कभी आसपास के बाजारों में इधर उधर भटकने के लिए निकल जाते हैं। अब भी पेरेंट्स हैं और इतना सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बड़े ही दिल से करते हैं, तो जी सभी पेरेंट्स को, बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

और अगर मेरी तरह आप क्रिकेट लवर हैं तो आपका भी नाचने का मन कर रहा होगा। बताइए खास बात, चेन्नई के चेपक स्टेडियम में आज के दिन जो है तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जा रहा है भारत और अफगानिस्तान टीम के बीच। जो अफगानी कप्तान रहे हशमतुल्ला शाहिदी, इन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और अपने मैच का जो है आगाज कर दिया। बेशक बड़ी बुरी शुरुआत हुई और अब फिलहाल मैच जो है फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है 218 रन के साथ में। यहीं पर मटकर रह गई है अफगानिस्तान की टीम और अभी इंडिया को बैटिंग करनी है। 45 ओवर में ही 9 विकेट डाउन होने के बाद, मतलब जो हमारे इंडियन टीम के फास्ट बॉलर्स हैं ना, वो बहुत इंप्रेस करने में पब्लिक को कामयाब हो गए हैं। अब खैर हम लोग पॉजिटिव हैं कि भारत ये मैच जीतेगा और ये पूरी जो सीरीज है वो 3 मैचों की सीरीज है। अभी तो 2-0 से आगे हैं वो, लेकिन लग रहा है, मतलब प्रेडिक्शंस है, हो सकता है ये मैच जीत जाए और 3-0 से इसको मतलब कर दें, और लेकिन मैच जल्दी शुरू होगा फिर आगे इंडिया की बैटिंग देखने में मजा आएगा। फिलहाल आप 102.6 एफएम रेनबो पर सुनते रहे सिटी लाइट्स। ये है खूबसूरत गाना सोहम की आवाज में सिर्फ आपके लिए।

हमारे ऐसे कितने सारे लोगों से मिलने वाले हैं कल 21 तारीख है और इंटरनेशनल योग डे कल जब सेलिब्रेट किया जाएगा। मतलब इतने दिनों से इतनी सारी बड़ी बड़ी तैयारियां हर जगह पर, हर सोसाइटी में, RWA में, हर एक सिटी में, इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह पर बहुत सारे लोग मिलकर कल योगा करने वाले हैं। तो मैं तो बहुत सारे दोस्तों से अपने मिलने वाली हूँ और साथ मिलकर योगा करेंगे एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पर, हमारी प्यारी दिल्ली में, जब ये इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट किया जाएगा तो मजा आएगा। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बताती हूँ उस गाने के बाद कि कहाँ पहुंच सकते हैं आप अपनी उस परफेक्ट सेल्फी के लिए, योगा डे वाली सेल्फी।

इसी तरह दिन चढ़ते हुए या फिर ढलते हुए अगर कोई सबसे प्यारा बंधु या फिर सखा हो सकता है वो है हम खुद जी। हाँ जी, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए तो हमें खुद को ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं ना। और कल इंटरनेशनल योगा डे है, कल क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है आपका? कहीं ना कहीं अपने ग्रुप में, अपने साथियों के साथ, वो योगा वाले फ्रेंड्स के साथ मिलकर बहुत सारे लोग कल योगा करने वाले हैं। और यस, 100% हर किसी को ये करना चाहिए, बहुत मजा आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये जो पूरा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हिस्टोरिक रेड फोर्ट ग्राउंड्स में, न्यू दिल्ली में। यस, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स सोचिए इकट्ठा होंगे और एक साथ मिलकर उस योग के धागे से जुड़े होंगे, मिलकर बातें करेंगे और साथ ही साथ एकदम चुप करके, एकदम क्वाइट रह के ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और एक दूसरे को एक अपनी पर्सनल वेल बीइंग का मैसेज देंगे। इस पूरे इवेंट का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना अपनाना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर सकें। तो यहां पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सभी के पास अपॉर्चुनिटी होगी गाइडेड योगा प्रैक्टिस एक्सपीरियंस करने की। ऐसे सेशंस होंगे, मेडिटेशन सेशंस भी इसके दौरान होंगे। वेलनेस एक्टिविटी डिजाइन की गई है जहां पर लोग एक साथ मिलकर हंसेंगे और इंजॉय करेंगे। सो यस, दिस इज द मोस्ट वंडरफुल डे, महीनों से जिसके लिए तैयारियां हो रही हैं और सब इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुनते रहिए सिटी लाइट्स एफएम रेनबो पर।

0: उड़ने की अगर आप बात सुन ली है तो भाई उड़ाना नहीं है, अपनी गाड़ी को चलाना है। यस, थम थम कर चलाइए। और अगर कहीं आपकी इस उड़ान में ब्रेक लग रहा है तो मुझे बता दीजिए। कहीं पर भी दिल्ली एनसीआर में अगर ट्रैफिक में आप स्टक हो रहे हैं तो 9868107070 पर मुझे मैसेज करके दीजिए दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक अपडेट। और सुनते रहिए सिटी लाइट्स, छोटे से ब्रेक।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बामुलाहिज़ा इसी तरह से सलाम सैल्यूट करते हुए भाई मुझे तो आपकी तारीफें करनी ही पड़ेगी। योगा डे की किस तरह से तैयारी की, अच्छी बात है। नया मैट आ गया है, नई मतलब यूनिफॉर्म आ गई है। क्या मैं योगा डे पर मतलब एक खास ड्रेस पहनकर जो फोटो खिंचवाऊंगी योगा करते हुए। बड़ी तैयारियां सब लोगों ने की है, मैंने भी की है, सच बता रही हूँ। और उन्हीं तैयारियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर रोज हमारा रेगुलरली योगा करना। हाँ, एक्चुअली योगा डे के लिए रोज योगा करना ही सबसे बड़ी तैयारी है, मुझे ऐसा लगता है। और जब ये तैयारी पिछले कई महीनों से मैं कर रही थी तो एक आसन ऐसा निकला मतलब जिसने सच्ची में मेरे छक्के छुड़ा दिए, जो कहावत है मुझे याद आ गई। और पसीना निकल आता था शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन कंसिस्टेंटली जब मैं एफर्ट्स करती रही तो बड़ी आसानी से अब ये जो आसन है मुझसे हो जाता है। एंड दैट इज मतलब नेम ऑफ दैट आसन इज नौकासन। बहुत सारे लोग नाम सुन के घबरा जाते हैं कि अरे ये कैसे होगा, लेकिन आई मस्ट से कि जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो हर चीज मुश्किल से मुश्किल आसन भी आप बहुत आसानी से करने लग जाते हैं। और नौकासन में जिस तरह से अपने पेट के बल लेटना होता है और लेटे लेटी पोजीशन में ही सांस लेते हुए अपने हाथों को भी और उसके साथ साथ पैरों को भी एक साथ ऊपर उठाना होता है, और इस पोजीशन में जितनी भी देर तक होल्ड कर सके, जितने जब तक आपसे संभव हो उतना कीजिए, और उसके बाद सांस को छोड़ते हुए वापस हमें अपनी नॉर्मल लेटे हुए पोजीशन में आना होता है। तो ये है नौकासन, जो कि आपको बहुत सारे फायदे देता है। सिर्फ बेली फैट को कम नहीं करता है, हाँ जी, आपकी बैक को भी स्ट्रांग करता है। मतलब सोचिए कोई एक ऐसा आसन जो आपके स्टमक के लिए भी काम कर रहा है एंड एज वेल एज आपकी बैक के लिए भी काम कर रहा है। तो हमारे जो योगा डे में होने वाले सभी आसन है वो ऐसे जादू भरे आसन है, आई वुड से, जो कि आपको लंबे समय तक अगर कंसिस्टेंटली आप करते रहें तो बस ये जुम्बा मतलब आपके लिए बड़ी आम बात हो जाएगी।

इसी तरह ये वंडरफुल गाने सुनते हुए बने रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 7:05 से आप राजेश को सुनेंगे, बने रहिए। एंड आई एम निशा साइनिंग ऑफ।

अब भाई जुम्बा भी तभी सजता है जब आप सही समय बता रहे हो, तो मैंने जाते जाते 7:05 बोल दिया, लेकिन नहीं राजेश, आपको 6:05 से मिलेंगे। तो आप आकाशवाणी रेनबो पर बेशक इस तरह से स्लिप ऑफ टंग होता रहे, लेकिन फिर भी गाने और बातें आप 100% यहाँ एंजॉय करेंगे। एंजॉय।

0: करो ये बकवास, कोई नामी गाना शुरू करो।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। और दोस्तों ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस पर होता है आधारित। तो इस प्रोग्राम में आप सभी की भागीदारी है बहुत जरूरी क्योंकि आप सब हम सब जब मिलते हैं तो ये प्रोग्राम बनता है और भी खास। दोस्तों अक्सर हम किसी बड़े सपने को देखकर सोचते हैं कि इसे पूरा करना कितना मुश्किल होगा। मंजिल इतनी दूर दिखाई देती है कि हम पहला कदम उठाने से पहले ही डर जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि किसी भी काम को पूरा होने की पहली सीढ़ी उस काम का शुरू होना है। जब तक शुरुआत नहीं होती तब तक सबसे आसान काम भी अधूरा ही रहता है। तो हम भी शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम और हम आपसे प्रोग्राम की शुरुआत में ही ये पूछेंगे कि किसी भी काम के पूरा होने का जो पहला कदम उस काम का शुरू होना है तो आपका वो कौन सा काम था जिसे शुरू करने से पहले आप थोड़ा हिचक रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब आपने एक बार शुरू कर दिया तो फिर वो काम हो गया और आपको उस काम पर गर्व भी हुआ। तो ये सभी बातें आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 9868107070। इस नंबर पर आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं और हम पहुंचाते हैं आप तक ये गीत आपके स्वागत में है।

केके और शिल्पा राव की बहुत ही प्यारी आवाजों में आपने ये गीत सुना। और दोस्तों, इस गीत के साथ ही एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम MMM यानी कि मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं आपके साथ राजेश, और आपके बहुत सारे मैसेजेस का हमें है इंतजार। हमने आज आपसे सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी बात की जाए जो सीधी हमसे जुड़ी होती है। जरा सोचिए, दुनिया की हर बड़ी इमारत कभी सिर्फ एक नक्शा थी, हर लंबी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू हुई थी, और हर सफल इंसान ने भी अपने सफर का पहला दिन देखा था। शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन शुरुआत के बिना परफेक्शन तक पहुंचना भी कहां संभव होता है। इसीलिए इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, सब कुछ सही हो जाए तो शुरुआत करें, बल्कि शुरुआत कर दीजिए। और शुरुआत आप कर सकते हैं। देखिए, एक चीज तो हम साफ साफ देख रहे हैं, और वो ये है कि अगर आपने शुरुआत कर दी इस प्रोग्राम में मैसेज भेजने की, तो आपका मैसेज जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, आपका नाम शामिल होगा, और आपने अपनी जिंदगी में जो चीजें देखी हैं, जो प्रयास किए हैं, उनकी भी तो हम बात करेंगे ना। क्योंकि हमने से पूछा है कि आपका वो कौन सा काम था जिसे शुरू करने से पहले आप थोड़ा हिचक रहे थे, पर जब शुरू कर दिया तो वो काम बहुत ही आसानी के साथ, थोड़ी मुश्किल भी आई होगी तो भी, वो संपन्न हो गया। और उसके बाद जो आपके अंदर एक गर्व की अनुभूति आई, एक संतुष्टि की अनुभूति आई, उसको बयां कर सकते हैं आप हमारे साथ, और हमें अपनी बात बता सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? तो तरीका बिल्कुल आसान है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 9868107070। इस नंबर पर आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं, और हम आप तक पहुंचाते हैं एक और गीत। इस गीत के बाद वापस आते हैं।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, आपकी बातें हम बिल्कुल इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आप भी चाहें तो अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात आपके दिल में है। और हमने जो आपसे कहा है वो तो है ही, हमने आपसे ये कहा था कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी काम को पूरा होने का पहला कदम है उस काम का शुरू होना। तो आपका वो कौन सा काम था जिसे शुरू करने से पहले आप थोड़ा हिचक रहे थे, थोड़ा लग रहा था कि आपको कैसा होगा ये काम, लेकिन जब आपने शुरू कर दिया तो वो काम आसानी से हो गया। थोड़ा अगर आसानी से नहीं भी हुआ तो भी जब वो काम संपन्न हो गया तो आपको बहुत अच्छा लगा। वो आप हमें बताइए और हम बताएंगे पूरे भारत को, पूरी दिल्ली को। और अगर आप पूछेंगे कि कैसे बताएं तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे और हम आपकी बातों को और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हाट दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से, इनका मैसेज आया, MMM लिखकर इन्होंने हम तक पहुंचाया, यानी कि मैसेज मसाला मिक्स। और इसके बाद नुसरत परवीन और कुरैश का मैसेज आया जहांगीरपुरी दिल्ली से, इन्होंने लिखा है कि किसी भी काम को करने से पहले अगर आपके अंदर लगन है तो वो काम करना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि लगन से अगर हम कोई काम करते हैं तो थोड़ी मुश्किल भी होती है तो हमारी लगन के आगे वो पीछे हट जाती है और वो काम हम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। दानिश का मैसेज आया है, इन्होंने मैसेज किया है कहाँ से, खतौली से, इन्होंने भी मैसेज किया है और इन्होंने कहा है कि मेरा मैसेज पढ़ लो। तो दोस्त, मैसेज तो पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही है मैसेज मसाला मिक्स और इसमें हम आपके मैसेजेस को ज़रूर शामिल करते हैं। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ गीत कुछ बातें आप तक पहुँचाते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
7: हे, डिड यू नो, ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इंडियाज डिफेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम बूस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस विद कॉन्फिडेंस।
8: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop, and build world-class technologies right here at home.
7: Exactly.

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक, MMM यानी कि मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, अगर हम इस प्रोग्राम के दौरान आपकी जो बातें हम तक पहुंच रहे हो उनकी तरफ एक बार फिर से चलें, तो

अजय कुमार नामदेव हमारे साथी हैं दिल्ली से। कहते हैं कि आपको न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर नहीं सुन पा रहे हैं और रेनबो प्ले नहीं हो रहा है वहाँ, तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको देख ले। तो बिल्कुल दोस्त, हम कोशिश यही करेंगे कि अगर कुछ तकनीकी समस्या है तो उसका जल्द से जल्द समाधान हो और आप तक हम जैसे पहुँचते हैं लगातार उस तरह से पहुँचते रहें और अच्छा लगेगा हमें। इसके अलावा मैसेज आया है हमारे पास टॉली का, दिल्ली से लिखा है इन्होंने कि कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। आगे लिखा इन्होंने कि ऐसा हुआ है कुछ नया करने में हेजिटेशन हुई पर बाद में सब आसान होता चला गया, क्या हुआ है उसमें अभी सफलता नहीं मिली इसलिए नहीं बता रहे, पर लोगों का रिस्पांस इस बार अच्छा मिल रहा है। कई बार हम सफल नहीं हो पाते पहले प्रयास में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने प्रयास रोक दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास चलती हैं। ज़रा सोचिए कि दुनिया की हर, जब हम सफलता की कहानी देखते हैं तो कई चीज़ें हम महसूस करते हैं। कई बार हम असफलता के डर से रुक जाते हैं, हमें लगता है कि अगर काम बिगड़ गया तो क्या होगा, लेकिन असल सवाल ये है कि अगर शुरू ही नहीं किया तो क्या होगा। जो लोग कोशिश करते हैं वे अनुभव हासिल करते हैं, जो अनुभव हासिल करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वही तो अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तो हम अपनी मंजिल तक तभी पहुंचते हैं जब हम अपना पहला कदम बढ़ाते हैं उस मंजिल की तरफ। तो आप जिस तरह से हम तक पहुंच रहे हैं ना, शुरू शुरू में मुझे लग रहा था कि आज आप लोग थोड़ा कम मैसेज कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि आप लोग मैसेज थोड़ा सोच समझ कर कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है। सोचा समझा कदम जो है हमें और ज़्यादा मजबूती से आगे लेकर जाता है। भुवनेश का मैसेज है, इन्होंने अशोक विहार दिल्ली से लिखा है और इन्होंने पूछा है कि आप कैसे हैं, और ये आज के टॉपिक पर ये कहना चाहते हैं कि ये एक गवर्नमेंट जॉब में है और जब इन्होंने शुरू किया था तो बहुत नर्वस थे क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था इनका काम और इनकी जिम्मेदारियाँ, और इन्होंने कहा कि आगे नहीं पता था कि कैसे करूँगा, लेकिन मैंने उसको समय दिया और अब जो काम है वो आसान हो गया और मैं उसको एंजॉय भी करता हूँ। क्या बात है, यही तो होता है ना, हम हर काम को, जो भी काम देखें हम मुश्किल लगता है तो वो जब हम शुरू में देखते हैं तो वही मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार हम जब उस काम को करने की उस काम में घुस जाते हैं ना कि हाँ इसको तो समझ के ही छोड़ेंगे, इसको करके ही छोड़ेंगे, तो फिर वो काम धीरे धीरे हमारी जो परीक्षा शुरू में लेता है उसके बाद उसका परिणाम भी देता है, उसका फल भी देता है और हम कामयाब हो जाते हैं, आसानी से उस काम को कर पाते हैं। तो आप भी चाहें तो अपनी बातें इसी तरह की, अपनी ज़िंदगी में क्या खास ऐसा है जो आप शुरू में लग रहा था आपको कि करें कि ना करें, लेकिन जब आपने फैसला कर लिया और कर दिया तो फिर वो काम हो गया आसान, हमें बता सकते हैं 9868107070 पर, 9868107070।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, हमने कहा था आपसे कि किसी भी काम को पूरा करने का सबसे पहला कदम है उस काम का शुरू होना। तो हमने आपसे ये पूछा था कि आपको वो कौन सा काम था जिसे शुरू करने से पहले आप थोड़ा हिचक

थे, मन में थोड़ा संशय था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब शुरू कर दिया तो फिर वो काम हो गया। तो आप वो काम, वो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा था तो सोच रहा था कि हमारे जो शायर हैं, जो हर बात पर कुछ ना कुछ ऐसा हमें देते हैं जो हमें मोटिवेट करता है, उन्होंने क्या कहा है। तो दाग दहलवी साहब इस दुविधा को अपने शब्दों में कहते हैं कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये जो हिचकिचाहट है इसको दर्शाता है ये शेर। और निदा फाजली कहते हैं आगे बढ़ने को, कहते हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यानी कि ये जो भावना होती ना हमें लगातार आगे बढ़ने की, वो हमें लगातार बनाए रखना होता है। क्योंकि एक शेर वो भी तो था ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो आपकी बातें भी कुछ हमें इसी तरह से मिली हैं, बहुत सारी जो आप लगातार हम तक पहुँचाते हैं। मैसेज हमारे पास कई आए हैं, चलिए आपके मैसेज की तरफ एक बार फिर चलते हैं। जिला मुरादाबाद से, ये उत्तर प्रदेश के ग्राम दुल्हापुर से ये बोल रहे हैं, लिख रहे हैं मैसेज। कई लोग हैं जिनमें हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह जी। इन्होंने कहा है कि मैं एकदम अच्छा हूँ, रोज़ मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद भी आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका प्रोग्राम सुनने के लिए, अपनी बातें हम तक पहुँचाने के लिए। लेकिन अगर आप हमें ये भी बताते ना कि कौन सा ऐसा काम आपने किया था जो लग रहा था आपको करने से पहले कि करें कि ना करें, मन दुविधा में था, लेकिन जब आपने कर दिया तो फिर आपको लगा कि वाह क्या बात है, अपने ऊपर गर्व हुआ। वो हम कार्य आपका जानना चाहते हैं और किस तरह से आपने किया। ये सभी बातें आप हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और मैसेज किया है हमें पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, किसने किया है मैसेज किया है, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने, इन सभी लोगों ने मैसेज किया है और गाने की फरमाइश भी की है। तो दोस्त ये फरमाइशी प्रोग्राम तो आपको हम 1:05 पर सुनवाते हैं, इसमें तो नहीं। हाँ, लेकिन ज़रूर आपके इस मैसेज को हम अप्रिशिएट करते हैं। आप अपनी बातें लगातार हम तक पहुंचाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम भी पहुंचाते हैं आप तक एक और गीत, तब तक आप अपनी कुछ बातें हम तक पहुँचाएँ।

आकांक्षा का मैसेज आया है मुंबई से। इन्होंने कहा है कि शुरुआत तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हम कहाँ आगे बढ़ पाते हैं। तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे ना, क्योंकि कुछ हमारे शायरों ने कुछ खास बातें कही हैं, तो एक और याद आया मुझे निदा फाजली साहब का, कि उन्होंने कहा कि कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। यानी कि जब हम ये तीनों चीज़ें करते हैं, कोशिश भी उम्मीद भी, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं और अपना रास्ता चुन लेते हैं कि हाँ ये हमारा फील्ड है, इसमें हमें काम करना है, और उसके बाद जब हम लग जाते हैं पूरे मेहनत के साथ पूरी हिम्मत के साथ, तो फिर मुकद्दर जो है उसकी तलाश तो हम कर ही लेते हैं। तो ये बहुत सीधा सरल है सुनने में, लेकिन करने में थोड़ा मुश्किल है। पर कहते हैं ना कि अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी मनपसंद कोई ऐसी मंजिल हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, और उन मुश्किलों से हम जब निकलते हैं और उस मंजिल तक पहुँचते हैं तो फिर हमारा रास्ता जो हम काट कर आए हैं, जिस रास्ते पर हमने संघर्ष किया है, वो एक ऐसी अनमोल धरोहर बन जाती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। न सिर्फ हमारे साथ रहती है बल्कि उस सफ़र के जो हमारे और लोग हैं जिन्होंने उस सफ़र में छोटी छोटी कई बार हमारी मदद की होगी, कई बार हमारे हौसले को बढ़ाने में उन्होंने अपने कुछ ऐसे शब्द कहे होंगे जिनसे हमें प्रेरणा मिली होगी, ये सभी चीज़ें हमें आगे बढ़ाती हैं और हम उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत एक बड़ा स्थान देते हैं। मानते हैं हम कि हाँ हमारी हर कामयाबी में, सिर्फ वो हमारी कामयाबी कहाँ है, वो तो हमारे साथ जितने लोग चल रहे थे, किसी भी तरह से कोई जो हमारी मदद कर रहा था, वो सब कहीं ना कहीं उस कामयाबी का हिस्सा है। जब हम इस भाव के साथ चलते हैं तो फिर चीज़ें आसान होती है। और हम सभी लोगों की ज़िंदगी में जो हमारी चाहे छोटी सफलता हो या बड़ी सफलता हो, सबकी कहानियों में ये चीज़ें समान है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस आगे बढ़ने की ये जो पूरी प्रक्रिया होती है अपने साथ एक ऐसी कहानी बनाती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों मेरे साथ एक और राजेश और वो हैं राजेश भल्ला जी कंकर खेड़ा मेरठ से। ये हमें लिखते हैं कि सुप्रभात से दोपहर अब शाम को अच्छा लगा। तो दोस्त हमें भी अच्छा लगा। दिन के ये जितने भी घंटे हैं यानी कि 2400 घंटे में कभी भी हम आपसे मिलने आते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है और बातें जो आप लोग लगातार हम तक पहुंचाते हैं उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉली ने एक बार फिर से मैसेज किया है और उन्होंने अपनी बातों को थोड़ा सा और विस्तार दिया है। विस्तार ये दिया है, उन्होंने लिखा है कि शेरों ने भी मुझे मोटिवेशन दी, ऐसे शेर रेनबो पर सुनते रहने से अच्छा। और आगे लिखा है कि अगर कोई काम सही है मैं कर सकती हूँ फिर एक कोशिश ज़रूर करती हूँ और अगर हेजिटेशन हो तो हेजिटेशन को साइड कर देती हूँ। सफलता मिलेगी या नहीं ये तो देखा जाएगा। ये जो है अप्रोच है ना ये इम्पॉर्टेंट है। हमारी कोशिश बहुत ज़रूरी है और एक कोशिश ये भी होती है कि हम अपने आप को कैसे फिट रखें, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, कैसे

आने वाले जो हमारे जीवन के साल हैं उनको और कैसे बेहतर बनाएं, तो उसका एक अच्छा तरीका है, वो ये है कि हम योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अब देखिए, योग के साथ भी यही बात है कि शुरू तो करना ही पड़ेगा। जब आप शुरू करते हैं तभी उसके रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में नजर आते हैं। और योग योग के बारे में तो ये कहा जाता है कि योग के साथ अगर हम जोड़ते हैं कोई चीज़, तो योग मतलब जुड़ने का है, और जुड़ना है हमें खुद से। न सिर्फ हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी योग से मिलती है मजबूती, और उस मजबूती को लगातार बनाए रखने के लिए हमें लगातार योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। बहुत सारी जो आज की समस्याएं हैं, बहुत सारी जो आज की दिक्कतें ऐसी हैं जो लगातार हम दिन में, बहुत सारे लोगों का डेस्क जॉब होता है, लगातार वो बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, देखे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। इस बीच होता क्या है कि शुरू में तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें आती हैं, और उन दिक्कतों को जब हम देखते हैं तो लगता है कि ये दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए थी। और अगर हम समय पर उन दिक्कतों को देख लें तो फिर समय पर हम उसके लिए कदम भी तो उठाते हैं ना, कि कैसे हम योग के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखती हैं। तो इन महत्व की चीज़ों को आप भी कर सकते हैं। कल जबकि हम देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारियां लगभग सभी लोगों की पूरी हो गई हैं, और मैंने भी पूरी तैयारी की है। टी शर्ट वगैरह योग दिवस की जो है बिल्कुल रेडी है। इसके साथ साथ सिर्फ कल के लिए रही बल्कि और दिनों के लिए भी ये प्लान कर रखा है कि हाँ, कहते हैं कि एक दिन की शुरुआत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे आप शुरू करते हैं, जब दिन की शुरुआत आप जिस तरह से करते हैं उसके साथ साथ आगे की चीज़ें होती हैं। तो एक दिन जो है, ये 21 जून का जो दिन है, वो अपने आप में बहुत ही खास है, कई चीज़ों की वजह से महत्वपूर्ण है। और जब हम एक, चलिए अगर आप तक अभी तक ये नहीं हुआ है कि योग को हम लगातार नहीं कर पा रहे, तो कम से कम एक चीज़ कल से तो हम ये शुरू कर ही सकते हैं कि हाँ, एक दिन से ही सही, हम ये मान के चलते हैं कि ये वो दिन है जब हमें शुरू करना है, और इसके बाद इसको लगातार अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। क्योंकि हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि किसी भी काम के पूरा होने का जो है पहला कदम उस काम का शुरू होना है। तो अगर हम योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो योग जो है हमें समय समय पर जो हमारी दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, वो तो दूर करेगा ही, साथ ही हमको लगातार स्वस्थ सेहतमंद बनाने में भी योग की बड़ी भूमिका है। तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फिलहाल अगर हम देखें घड़ी की तरफ, तो घड़ी ये इशारा कर रही है कि अब जो है हमारे अगले प्रोग्राम का थोड़ी देर में वक्त है, लेकिन उससे पहले आप समाचार सुनेंगे, और समाचार के बाद जो है अगला प्रोग्राम लेकर आप तक पहुँचेंगे देवर्षि। लेकिन उससे पहले एक और जो मैसेज आया है, इनका नाम है, आपका नाम ढूंढ रहा हूँ दोस्त, आपका नाम नहीं मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपका नाम नहीं मिला, लेकिन हाँ आपने मैसेज किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन्होंने वही बात कही है कि अभी ये न्यूज़ ऑन एयर ऐप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम तक पहुंचे। तो दोस्त कोशिश करते रहिए, क्योंकि बहुत जगहों से कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि हाँ हमें सुनाई दे रहा है। तो आपके इन प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक और गीत आप सभी के लिए, ये वाला।

तो दोस्तों इस गीत के साथ ही राजेश को दीजिए अनुमति, अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:05 से आपके साथ होंगे देवर्षि रावत। प्रोग्राम होगा हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का सैटरडे सिजलर्स, और इसके बाद 8:00 एक बार फिर से मैं और आप होंगे एक साथ प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों आईएनएस दोनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित

किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Okie dokie, we're gonna take a quick break. Don't go anywhere, we'll be right back.
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com. कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे

0: बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: Did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
4: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
3: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
4: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
3: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अगर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: It's time for me to say tata and bye-bye. See you guys at 10 p.m. on a show called In the Groove. So till then, have fun and take care. Bye-bye.

आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती, और मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। दोस्तों, अगला कुछ समय जो है, अगले कुछ मिनट, अगले हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक शानदार गीतों का वो सिलसिला जिसके साथ होगी इस सैटरडे की ये शाम और भी खूबसूरत, और साथ में थोड़ी थोड़ी बातें तो होती रहेंगी। तो फिर आप चाहे सफर में हो, काम कर रहे हो, या बस संगीत का आनंद लेना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, आपके मूड को बनाएंगे और भी खुशनुमा, क्योंकि यहां आपके लिए हम प्ले करने वाले हैं एक से बढ़कर एक सॉन्ग। शुरुआत में आपके लिए गीत आपके स्वागत के लिए।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है म्यूजिक मस्ती। मैं हूं आपके साथ राजेश। और बिल्कुल दोस्तों, ये शाम है कुछ खास। इस शाम में है कुछ खास बात, क्योंकि सैटरडे की शाम जो है अपने आप में वैसे भी बहुत सारी चीजें लेकर आती है। बहुत सारी चीजें हम पूरे हफ्ते प्लान करते हैं कि ये करना है, वो करना है, और उन चीज़ों के बीच में जब शनिवार आता है तो अपने आप में लगता है कि हाँ चलो अब थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और सुकून हो भी क्यों ना, क्योंकि जब इतना हम काम करते हैं और काम के बाद थोड़ा आराम का वक्त मिलता है, और उसमें जब मिलता है हमें संगीत यानी कि म्यूज़िक, तो फिर एंटरटेनमेंट नहीं है हमारा सिर्फ म्यूज़िक, ये बल्कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने का सबसे खूबसूरत जरिया है। एक अच्छा गाना हमारे मूड को कुछ ही पलों में बदल सकता है और दिल को दे देता है सुकून। कभी म्यूज़िक हमें पुरानी यादों की गलियों में ले जाता है, तो कभी नए सपने देखने की हिम्मत देता है। इसीलिए कहा जाता है कि म्यूजिक दिल की वो लैंग्वेज है जिसे हर कोई समझ सकता है।
1: People.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी के FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक और प्रोग्राम का नाम है म्यूजिक मस्ती। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है राजेश। और दोस्तों, जब आप बात करते हैं म्यूजिक की, तो लाइफ में जब शब्दों की कमी पड़ जाए ना, तो म्यूजिक हमारी फीलिंग्स को बयां करता है। हर धुन, हर सुर और हर गीत अपनी एक अलग

कहानी लेकर आता है। वैसे कई गीत ऐसे होते हैं जिनको सुनकर हम थिरकते हैं, कई बार हो सकता है कि वो बिल्कुल नए लगे और कई बार थोड़े पुराने भी लग सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो हमारी यादें, हमारी बातें और हमारे कुछ खास जज्बात जुड़े होते हैं ना, वो हमेशा उसी तरह से रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम आपके लिए कुछ गीत लेकर आते हैं तो सोचते हैं कि वाह ये गीत भी बहुत अच्छा है, इसको कभी हम इसको अपने प्लेलिस्ट में शामिल करें, आप तक पहुँचाएं, लेकिन कुछ वजहों से वो गीत हमारी प्लेलिस्ट में नहीं आप तक पहुँच पाते। लेकिन आज वो समय आ गया है कि मैं एक गीत जो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि पुराना है, लेकिन इसकी धुन जो है, म्यूजिक इसका और इसकी में जो मस्ती है वो इस प्रोग्राम में इसे जुड़ने लायक बनाती है। ये है वो गाना।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

साथी हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक पूछ।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती में। हूं आपके साथ राजेश। और अभी आपने सुना फिल्म शादी से पहले का ये गीत अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह की आवाज में। और अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं ऐसे ही कुछ सदाबहार गीत जिनको सुनकर हम झूमने लगते हैं। और झूमने के बाद जो हमारा दिल है, कहते हैं कि जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक जो है हमारे तन और मन में बसा होता है, एकदम हम थिरकने से लगते हैं और हमारा मूड हो जाता है एकदम फ्रेश। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक म्यूजिक मस्ती में। इसी तरह की मस्ती, इसी तरह की धूम लगातार रहेगी जारी। लेकिन कहते हैं कि स्लो मोशन में थोड़ा ये भी बता दें कि आने वाले कुछ घंटों में FM रेनबो पर आप क्या क्या सुनने वाले, कौन कौन से प्रोग्राम सुनने वाले हैं, तो उनकी अगर बात करें हम, तो अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि थोड़ी देर नहीं, अभी है 14 मिनट है लगभग, 9 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम रेनबो सेलेब्स। और उसके बाद 10 बजे से हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा, उसका नाम है इन द ग्रूव, और देवर्षि रावत उस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगे। और 11:05 से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम रंगे महफिल, जिसमें हैं आज आपके साथ विकास राय। तो ये प्रोग्राम आप अगले कुछ घंटों में FM रेनबो पर सुनेंगे। लेकिन फिलहाल तो समय है एक और ऐसा गीत आप तक पहुंचाने पर, जिसका बैर आप और हम मिलकर थिरकें।

दोस्तों, फिल्म पुष्पा के इस गीत से जिसे अपनी आवाज में सजाया सुनिधि चौहान ने, हमने और आपने मिलकर सुना। और बहुत थिरके भी, इसी तरह की शक्ति होती है म्यूजिक में, हमें थिरकने पर मजबूर करता है। और जब हम डांस करते हैं, किसी गीत के साथ झूमते हैं, तो उससे हमारी सेहत भी अच्छी होती है। और कहते हैं कि डांस एक ऐसी विधा है जो हमारी सेहत को रखती है बहुत अच्छी। और इसके अलावा, डांस के अलावा एक और चीज़ है, वो है योग। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो योग को भी अपनी जिंदगी का हम हिस्सा बनाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने आसपास भी ये बात लोगों तक पहुंचाएं, ये बहुत जरूरी है। तो अब इस गीत के बाद एक और गीत आप तक, और इस आने वाले गीत के साथ ही राजेश को दीजिए आप अनुमति, और आपसे फिर मुलाकात होगी चलते चलते। ये गीत आपके लिए, नमस्कार। गीत है ये वाला आपके लिए, मिका सिंह और सचिन जिगर की आवाज में।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेनबो सेलेब्स। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं महिमा भारद्वाज और भेंटकर्ता अर्णब मुखर्जी।

0: स्वागत है आपका रेनबो सेलेब्स में 102.6 मेगाहर्ट्ज। संगीत उच्च कोटि का माना जाता है सारी विधाओं में, लेकिन संगीत के बिना या गानों के बिना हमारा सिनेमा भी अधूरा है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, मिस महिमा भारद्वाज। वेलकम महिमा जी।
1: जी थैंक यू।
0: महिमा जी की एंट्री फिल्मों में गीतकार के रूप में बहुत पहले हो चुकी है। आज हम बातचीत करेंगे महिमा जी से, उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, कैसे शुरुआत करी उन्होंने। महिमा जी ये बताइए कि आपके पिताजी राम भारद्वाज जी लेखक भी थे, पोएट थे और लिरिसिस्ट भी थे, आपको शुरू में लगता था कि आप गाने लिखेंगी? आप तो गाना सीखती भी थी थोड़े दिन।
1: जी मुझे गाने का शौक था, लेकिन शौक में और प्रोफेशनली गाना गाने में बहुत डिफरेंस था, और इस चीज का रियलाइजेशन मुझे थोड़ा लेट हुआ। लेकिन गाना लिख पाऊंगी या लिखूंगी वो शुरू से नहीं था, तो सब कुछ बड़ा नेचुरली मेरी लाइफ में हुआ। आई स्टार्टेड राइटिंग विद चिल्ड्रंस पोयम, बच्चों की कविताओं से मैंने लिखने की शुरुआत करी। और फिर 2017 में मेरी फिल्म का एक गाना आया था, लाली की शादी में लड्डू दीवाना, जिसका म्यूजिक दिया था विपिन पटवानी।
0: तो वाज योर फादर योर इंस्पिरेशन फर्स्ट?
1: यस यस 100%। पापा का तो जीन से ही मुझे आया है कि शायद वो मौजूद था, लेकिन मुझे उसके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मैं लिख सकती हूँ। लेकिन छोटी छोटी चीजें मैं शुरू से लिखा करती थी।
0: आपने थोड़े दिन पहले आशा भोसले जी के साथ एक गीत रिकॉर्ड किया था, वो आपका लिरिक्स थे उसमें, वो गीत था सैया बिना, उसका एक्सपीरियंस बताइए हमें।
1: जी आशा जी के साथ जो गाना किया सैया बिना, उनका ये आखिरी गाना था और इसे कम्पोज किया था नितिन शंकर जी ने। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और कहा कि आशा जी इस गाने को गाने वाली हैं। कॉम्पोजिशन के ऊपर अगेन ये गाना लिखा गया था एंड आशा जी ने बखूबी इसको इतना बढ़िया तरीके से ये यशराज स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। और जब आशा जी आई तो तबीयत उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा गाना, उनको बोला गया आप बैठ के गाइए, उन्होंने खड़े होके गाया और उसको इतने अच्छे तरीके से निभाया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया।
0: हमने भी सुना, बहुत अच्छा लगा सब लोगों को, बहुत वायरल भी हुआ था।
1: थैंक यू थैंक यू।
0: तो लीजिए उस गाने को एक बार सुन लेते हैं हम लोग।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा जी का गाना जो महिमा भारद्वाज ने लिखा था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो सेलेब्स। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, मिस महिमा भारद्वाज। महिमा जी का अगर आप सबने सुना होगा एक गाना इस समय बहुत वायरल हुआ हुआ है, लिपस्टिक, उसकी शुरुआत कैसे हुई?
1: जी, अदनान स्वामी जी के साथ मेरी मुलाकात शान ने कराई थी, उनके लिए एक गाना था जो लिखा था मैंने। और फिर अदनान जी के यहाँ से एक दिन कॉल आया एंड ही सेड आप आइए लिखिए। एंड उनके साथ एक बहुत ही कमाल की चीज है कि वो जितने बढ़िया कंपोजर हैं, जितने कमाल के सिंगर हैं, उससे भी लाजवाब वो इंसान है। उन्होंने मुझे वो पूरा स्पेस दिया लिखने के लिए कि आप पूरी फ्रीडम के साथ ही काम कीजिए। और ये गाना हमने लिखना शुरू किया और चीजें होती चली गई। ऐसा कुछ खास नहीं कि कुछ सोचा था क्या करना था। उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड मुझे बोला कि लिपस्टिक वर्ड ऑलवेज अट्रैक्ट मी, सो यू हैव टू वीव द सॉन्ग अराउंड दिस।
0: ओके,
1: सो ये फिर कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट किया कि लिपस्टिक लगा कि नजर उतार ले, कि ज्यादातर सब लोग काजल से नजर उतारते हैं।
0: कंसेप्चुलाइज पूरा सोच आपकी थी?
1: जी जी।
0: ओके, ये बताइए कि फिल्मी जगत में संगीतकार तो बहुत है, फीमेल भी हुई है लेकिन कम हुई है, गीतकार तो और भी कम हुए हैं, तो कितना मुश्किल संगीत जगत में खासतौर से बॉलीवुड में पैर जमाना लिरिसिस्ट के लिए?
1: हर फील्ड में पैर जमाना किसी के लिए भी, मेहनत तो पूरी करनी पड़ती है। इसीलिए लोग आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक की तरफ आ गए हैं। विधाओं में ये फर्क आ गया कि सब लोग पूरी तरह से बॉलीवुड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है।
0: तो कितना आसान या कितना मुश्किल है बॉलीवुड में एंट्री पाना किसी के लिए? आपने कहा कि
1: डिफिकल्ट तो 100% है। ये तो वो लगे रहिए आप, एंड टैलेंट के साथ साथ में किस्मत का होना भी बहुत जरूरी है, ऐसा आई बिलीव। कॉन्टेक्ट्स हैं, सारी चीजें एक्चुअली मिली जुली हैं। इसमें यू कांट गिव द गारंटी कि किसी का कई बार सालों लगे रहते हैं तो भी नहीं होता, किसी का गए तो एक साल में क्या एक ही पल में हो गया।
0: आपको कैसे मिला?
1: मुझे बस आप सोचिए कि मुझे वो चीजें, लोग ऐसे मिलते चले गए और अच्छे लोग टकरा गए।

0: और भगवान की मैं कहूंगी ये कृपा है कि ये होता चला गया।
1: जी ये बताइए कि महिला होने की वजह से आपको कोई स्पेशल कोई आपको दिक्कतें आई कोई बॉलीवुड में?
0: जी बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल भी नहीं। हर जगह बहुत सम्मान और बहुत स्नेह मुझे मिला है और इसके लिए मैं इवन जब मैं शान से मिली हूँ उनके साथ मैंने जो काम किया है आई वॉज सो हैप्पी। ही सो जेनरस और इतने इंस्पायरिंग रहे हैं ये लोग, बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं जिन्होंने लिखने की मुझे एक्चुअली प्रेरणा उन लोगों ने उनसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने पूरा कॉम्पोजिशन मुझे दिया है तो कॉम्पोजिशन के ऊपर लिखना फिर उसके बाद में पूरी फ्रीडम देना, मेरे विचारों से वो पूरी तरह सहमत हुए।
1: आप श्रोताओं को ये बता दीजिए कि क्या प्रोसेस रहता है लिखने का, पहले धुन दी जाती है फिर लिखती हैं आप या आपकी लिखी हुई गाने पे धुन बनती है?
0: जी ये तो ऐसा है अर्णब जी कि ये दोनों तरीके से है, शब्दों की भी धुन बनती है कि पहले शब्द, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन या कि डायरेक्टर की क्या मांग है। उसकी अगर सिचुएशन है वो कहता है मुझे पहले मुखड़ा चाहिए, पहले गाना पहले चाहिए, और कई जगह पे अब ये भी हो गया है कि पहले ट्यून लोग पास करा लेते हैं कंपोजर्स, तो इस तरीके से है कि दोनों तरीके से काम होता है।
1: अच्छा ये बताइए कि क्या प्रोसेस रहता है अगर लिरिसिस्ट बनना चाहे कोई, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे श्रोता होंगे जो बनना चाहेंगे आगे जाके लिरिसिस्ट, तो क्या क्या करना चाहिए उनको?
0: पढ़ना तो बहुत ही बेहद जरूरी है कि अच्छे लोगों के गीत या गजल्स सारे लोगों के वो लोग पढ़ें। पढ़ने से आप पूरा बहुत अच्छा आपके दिमाग में सब चीजें, आप डेली कुछ कुछ पढ़ेंगे उसके बाद ही चर्न आउट होगा। ऐसा नहीं है कि आप सडनली बैठे और आपने लिखना, पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। और इसका प्रोसीजर तो यही है कि विचार सबसे अच्छे हैं, थॉट्स, सारा विचारों का ही गेम है। नए नए विचारों को आप किसी तरह, हर बात हर किसी ने कह दी है मगर आपके कहने का तरीका एक नए तरीके से अगर आप अलग ढंग से कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा।
1: तो जाती तौर पर आप किससे मुतासिर हैं लेखकों में?
0: लेखकों में मुझे गुलजार साहब बेहद पसंद है और अभी तो काफी लोग अच्छा काम कर रहे हैं जैसे अमिताभ भट्टाचार्य हैं और कौसर मुनी इसमें वो बड़ा अच्छा लिख रहे हैं।
1: कोई पुराना कोई जिससे आप सुन के पहले सुनती हो?
0: जी शैलेंद्र जी का अच्छा। मुझे राइटिंग उनका भी बहुत अच्छा लगता है। साहिर साहब हैं।
1: साहिर साहब एक बार बताइए कि मीटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है लिरिसिस्ट
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो एक गीतकार के लिए म्यूजिक जानना कितना जरूरी है?
0: जी उससे इतनी हेल्प होती है क्योंकि म्यूजिक में तो छंद यहाँ पे बना देते हैं ना पूरे। अब अगर आपको थोड़ा सा मीटर का, इसलिए अगर गीतकार को गाने की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो उसको मीटर पकड़ना बड़ा उसके लिए आसान हो जाता है। सपोज कीजिए मुझे कॉम्पोजिशन मिली, उस कॉम्पोजिशन को मैंने बाय हार्ट कर लिया और वो लूप में मेरे दिमाग में बच रही है तो मैं उसके ऊपर मुझे बोलों को फिट करना उस समय आसान हो जाता है अगर मैं उस ट्यून को गा पाती हूँ, गाऊं या मैं उसे बजा सकूं। तो ये तो बहुत बड़ा सच है कि अगर म्यूजिक एक गीतकार को आता है तो उसके लिए गाने लिखना बहुत आसान हो जाता है।
1: मैं मुझे ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ बीता?
0: जी मेरा बचपन मेरठ में बीता है।
1: तो उस समय आप गाती थी स्कूल के फंक्शन में?
0: जी उस समय तो एक बचपना होता है कि म्यूजिक का बड़ा शौक था जिसे कहना चाहिए, तो वोकल म्यूजिक भी मेरे पास था लेकिन उस चीज को परस्यू करना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि जब मैंने अपने आप को आका तो मुझे लगा कि गायक बनने के लिए गुण नहीं है। ये बात मुझे
1: रियलाइजेशन
0: जी किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि मुझे ये बहुत सही समय पे कहते ना नजर खुल गई मेरी, मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या नहीं करना है।
1: तो आप सीखती थी किसी से वहाँ पर?
0: जी मेरठ में मैं सीखा करती थी, राजेश जौहरी जी थे। अच्छा। उनसे प्रेम प्रकाश जौहरी जी, उनसे सीखा करती थी।
1: ये बताइए घर में माहौल कैसा था सबका, आपके भाई जो है दोनों एक दोनों फिल्मों से जुड़े हुए हैं?
0: जी, जी जी
1: घर में माहौल कैसा बना रहता था?
0: घर में पूरा एकदम आर्टिस्टिक माहौल, इवन जब पापा कविताएं एक्चुअली कवि सम्मेलन में जाया करते थे घर में भी कभी गोष्ठियां हुआ करती थी, कवि आया करते थे, तो बड़ा एक आर्टिस्टिक सा एटमॉस्फेयर रहा है बचपन से।
1: अच्छा लेकिन उस समय आपने लिखा नहीं कुछ, आप गाती थी?
0: जी जी जी ओके। गाती भी उस समय नहीं थी लेकिन उस माहौल का जो असर था वो बहुत अच्छा रहा मुझ पे,
1: वो बहुत जरूरी होता है।
0: जी जी जी
1: आपका एक गीत बहुत मशहूर हुआ है रंगरसिया, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी रंगरसिया का तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा है कि इसके कंपोजर है शशि सुमन जी, उन्होंने मुझे एक दिन अप्रोच किया महिमा एक गाना लिखना है एंड ही सेंट मी द विजुअल ऑफ द सॉन्ग।
1: ओके
0: विजुअल मेरे पास पहले आ गया कि ये इस विजुअल के ऊपर तुमको एक ठुमरी नुमा गाना लिखना है, तो मैंने फिर एक मुखड़ा खाली उसका पहले लिखा, तो वो विजुअल को देख के लिखना, उसकी क्या बैक स्टोरी है उसके बारे में जानने से, फिर वैसे ही शब्दों का उपयोग, किस टाइप के शब्दों का मैं यूज

0: यूज करूं।
1: आपका कहना है कि अगर आर्ट फॉर्म कोई भी हो, सब एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, जैसे विजुअल फॉर्म है।
0: जी, क्योंकि जैसे अगर इस गाने का आप अंतरा देखेंगे, हौले हौले खोली मैंने, इसका विजुअल है कि किवाड़ खुलता है, वो लड़का एंटर करता है और लड़की अंदर है, तो उसपे लाइन है हौले हौले खोली मैंने जिया की किवड़िया। कोई भी चीज गीत में अगर इनडायरेक्ट रूप में कही जाए इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट, तो उसका प्रभाव मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर रहता है कि हमने बात भी कह दी और उस बात को हमने एक अलग तरीके से उसको कहा दूसरे वे में।
1: तो चलिए सुन लेते हैं।
0: जी जरूर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो सेलेब्स। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, मिस महिमा भारद्वाज। कहीं ना कहीं विजुलाइज भी करते हैं अपने गानों को
1: जब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं, मुझे कोई सिचुएशन भी नहीं है और मैं कोई गाना लिख रही हूँ तो मेरे दिमाग में उसका विजुअलाइजेशन, आई कैन विजुअलाइज कि ये ऐसे पिक्चराइज होना चाहिए।
0: महिमा जी, ये बताइए कि पहला आपका डेब्यू था के का गाना, उसके बारे में कुछ बताइए, आप कैसे मिला आपको और कैसा एक्सपीरियंस रहा वो?
1: जी, उसके जो कंपोजर है विपिन पटवा जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और एक रात उनका फोन आया कि एक सिचुएशन आई है रोमांटिक सॉन्ग की। तो उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई, गाना बोले आप लिखिए, मुखड़ा लिख के भेजिए। तो उन्होंने मुझे कॉम्पोजिशन दिया और गाना लिखा। फिर गाना अगले दिन, दो दिन के बाद उनका फोन आया कि गाना पास हो गया और इस तरीके से गाना उस फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गया। फिर जब गाने में मुझे पता चला कि ये गाना के गा रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे खुशी हुई इस बात की कि के जैसे इतने कमाल के सिंगर हैं और इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, रिकॉर्डिंग के टाइम पर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।

0: तो अभी हमने केके जी का गाना सुना जो महिमा जी ने लिखा था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो सेलेब्स। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप लिखती हैं? आपको क्या जहन में आपके क्या आता है, क्या लिखूं, क्या क्या छोड़ूं, क्या लिखूं?
1: जी मेरा तो सबसे ज्यादा जो है कि जो मुझे कंपोजर ने बताया है, क्या लैंग्वेज, किस टाइप की लैंग्वेज, बहुत ज्यादा शब्दों, किस टाइप के शब्दों का वो यूज चाहते हैं, वो मैं एक ध्यान रखती हूँ। उनकी डिमांड के हिसाब से ही है ध्यान, तो मीटर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। कई कई लोग बोलते हैं कि पहले हुक लाइन आप क्रैक कर लीजिए।
0: आप बताइए आपके लूप में कौन से गाने बचपन से आज तक जो जमा हुए हैं, आप उनको गुनगुनाती हैं कभी कभी, या उनसे आपको प्रेरणा मिलती है? लता जी के गाने या आशा जी के कोई भी गाना?
1: लता जी के तो 100% जैसे मेरा लग जा गले मुझे बहुत बेहद ही पसंदीदा गाना रहा है।
0: तो चलिए सुन लेते हैं।
1: जी जरूर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो सिलेब्स। ये बताइए कि आप अकेले, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो कितना आसान या कितना मुश्किल रहा आपका बॉलीवुड में कदम रखना, पैर जमाना? आपने कहा कि किसी के लिए भी आसान नहीं होता, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन आपके लिए पर्सनली कितना बड़ा चैलेंज रहा और कितना बड़ा स्ट्रगल था?
1: जी, स्ट्रगल तो सारी जिंदगी रहता है हर आर्टिस्ट के लिए। अगर आप कहना चाहें कि अब आपने ये मुकाम हासिल कर लिया और अब आप मेहनत करना छोड़ दें, अगर हम पूरी जिंदगी एज ए लर्नर रहें, किसी आर्टिस्ट के लिए वही उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि रुकना कहीं नहीं है। हर वक्त आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि आजकल क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको ढलना। ऐसा नहीं है कि आपकी वही लैंग्वेज आप शुरू कर दें या वैसा ही शुरू करें, हर तरीके के गाने लिखने के लिए, मगर जिसमें आपकी आत्मा गवाही दे। अगर मुझे वो चीज नहीं सही लगती तो मैं वो नहीं करूंगी।
0: तो आप ट्रेंड फॉलो करती है इंटरनेशनली या नेशनली?
1: इंटरनेशनली इंग्लिश सॉन्ग्स तो मैं फ्रेंकली बहुत ज्यादा नहीं सुनती हूँ, लेकिन बाकी मैं सुनती तो रहती हूँ। फोक मुझे काफी सुनती रहती हूँ, मुझे काफी पसंद
0: इंडियन
1: है।
0: फोक?
1: जी जी, इंडियन फोक काफी सुनती रहती हूँ। फोक से तो सभी कुछ फोक से निकला
0: है, बिल्कुल।
1: ये तो लोक संगीत तो हमारा काफी
0: राष्ट्रीय धरोहर है,
1: राष्ट्रीय धरोहर है।
0: इस समय आपको क्या लगता है, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का लोग सुनना चाहते हैं, खासतौर से यंग जनरेशन क्या सुनना चाहेगी? लिरिक्स पे ज्यादा जोर है या संगीत पे या बीट पे?
1: एक्चुअली तो बीट बेस्ड ज्यादा है आजकल। तो बीट एक जिस पे वो थोड़ा बहुत थिरक सकें, थोड़ा बहुत मूव कर सकें यंगस्टर। और देखिए, सब आजकल वो है कि मिली जुली है कहानी, कई बार शब्द इतने ज्यादा हैं, और जो बहुत ज्यादा वैरायटी, ऐसा नहीं कि आप एक उसमें बहुत ज्यादा कलाकारी उसमें दिखाएं ट्यून में, मगर वो एक लूप है, एक बीट है, वो कैच कर लेती है यंगस्टर को, तो वो ही अच्छा लगता है। और उसी के ऊपर, एक ही बीट के ऊपर कई बार पूरा गाना चलता रहता है।
0: एक बार बताइए, आपका एक गीत बहुत ही अच्छा है, सबको बहुत पसंद है, माँ पर। आप मुझे

0: मालूम है आप अपनी मदर से बहुत अटैच थी, तो वो किस तरह से शुरू हुआ?
1: जी माँ के ऊपर जो लिखा है उसमें तो अगर आप मुझे इजाजत दें
0: थोड़ा सुना दीजिए।
1: मुझे गाना, ये गाना तो आप सुनिए, लेकिन माँ के ऊपर मैंने एक कविता लिखी और उसके बाद मैंने ये
0: अरे
1: गाना
0: आप
1: लिखा।
0: कविता सुना दीजिए।
1: हाँ, ये मैंने तब लिखी कविता कि मैं घर पहुंची लेकिन मेरे जाने के पहले ही वो जा चुकी थी, और जब तक मैं घर पहुंची मैं उनसे मिल नहीं पाई, तो इस चीज का मुझे बहुत गिल्ट और वो
0: अफसोस।
1: रहा, उसी के ऊपर मैंने ये कविता लिखी है। जी अर्णव जी, ये माँ कविता मेरे दिल के बहुत बेहद बेहद ज्यादा करीब
0: जी हम
1: है।
0: सुनना चाहेंगे प्लीज।
1: जी, आज भी है अफसोस मुझे तुझसे मिल ना पाई मैं, जाना था जिस रोज तुझे देर से घर पे आई मैं, आज भी है अफसोस मुझे माँ आज भी है अफसोस मुझे, जाने कितनी देर तलक रहा मेरी देखी होगी, देखने को एक बार मुझे तू कितना तड़पी होगी, कैसे माँ आवाज तेरी उस दिन सुन ना पाई मैं, जाना था जिस रोज तुझे देर से घर पे आई मैं।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो सेलेब्स। आपकी
1: और
0: जर्नी बहुत मुश्किल रही है। मेरठ से बॉम्बे जब आई तो आपने अपने आप ही स्ट्रगल किया सब कुछ। तो बताइए कोई ऐसा यादगार लम्हा जिसको आप शेयर करना चाहें मेरे श्रोताओं के साथ।
1: मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल वो पल था जब आशा जी वाले गाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले जैसे ही मैं एंटर हुई, आशा जी ने मुझे देखा और कहा कि तुमने तो मेरे मन की बात लिख दी, और उन्होंने वो शब्दों को अंतरे के वो जो बोल हैं उनको बोला और एक लाइन में गा के सुनाया। मैं उनके पैरों में बैठ गई कि आज चाहे आगे जिंदगी में मुझे कुछ भी हासिल हो, लेकिन इससे प्यारा पल मेरे लिए, इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता, और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। उसके बाद स्टेज पर उन्होंने सबके बीच में मुझे ये बात कही कि ऐसा लगा कि आपने मेरी जिंदगी की कहानी इस गाने में लिख दी है। उनके मुंह से ये शब्द, मेरे जैसी नाचीज मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट अभी शुरुआत की है, हम तो क्या ही हैं, और उनके जैसी महान हस्ती ने अगर इतना सा भी एक्नॉलेजमेंट दे दिया हमारे आर्ट को, तो आई थिंक ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि।

0: ये बताइए आपका रूटीन कैसा रहता है अपनी कला को और उभारने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करती हैं? आप सारा दिन मतलब आप किस तरह से आप पढ़ती हैं सुनती हैं या और लिखती हैं क्या करती
1: जी
0: हैं?
1: मैं पढ़ती भी हूँ और गजल्स भी लिखने का मुझे है। अभी मैंने उर्दू सीखी है।
0: उर्दू सीखी आपने?
1: जी उर्दू सीखी है और मैं लिखती भी हूँ पढ़ती भी हूँ, तो ये एक रूटीन सा भी है। ऐसा नहीं कि एज ए होमवर्क मुझे रोज करना है।
0: आजकल यंगस्टर्स नए नए खोज में रहते हैं, नए नए गीत, नए नए प्रोफेशन के खोज में रहते हैं। आपको क्या लगता है कि यंग लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको अगर लिरिसिस्ट बनना है या संगीतकार बनना है या सिंगर बनना है, उनको क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए आज की दुनिया में जो इतना इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ अवेलेबल है एट द क्लिक ऑफ अ बटन? सो व्हाट डू यू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न एट दिस स्टेज ऑफ देयर लाइफ?
1: सबको सब कुछ करना है आजकल के जमाने में। हाँ। है प्रोग्रामर,
0: थोड़ी जल्दबाजी भी है।
1: जी जी, प्रोग्रामर है वही, कंपोजर भी है वही, आजकल तो एक ही आदमी कंपोज भी कर रहा है, वही प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं और वही लिख भी ले रहे हैं।
0: इसका कारण टेक्नोलॉजी है या क्या समझती हैं आप?
1: जी सभी कुछ है, टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो चुकी है। पेशेंस जो है, आई थिंक जो लैक ऑफ पेशेंस है, हम जैसे जो पुराने लोग हैं या आप करिए, मैं अभी भी उस चीज में बिलीव करती हूँ कि जो एक चीज करूँ वो अच्छे से करूँ या उस चीज को पूरा जानूँ। अब तो लिखावट में तुकबंदी भी चल रही है कि सिर्फ काफिए से काफिए मिल गए। मैं अभी भी उसमें बिलीव करती हूँ कि जो थॉट है ना उस पे बहुत फर्क पड़ता
0: तो
1: है।
0: अच्छा लिरिसिस्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा थॉट।
1: जी जी, अपने थॉट को पिरोना भी आना चाहिए। जितना शब्दों का भंडार अच्छा रहेगा ना हमारे पास, कहते ना वोकैबुलरी,
0: इट वर्क्स। कैसे बढ़ाएं बच्चे
1: वोकैबुलरी? जितना वो पढ़ेंगे, जितनी वो कविताएं पढ़ेंगे, गीत पढ़ेंगे, गजल पढ़ेंगे, बड़े बड़े लोगों के वो पढ़े, नीरज जी हैं उनके गाने आप देखिए, अभी भी कविताएं भी हैं और गीत भी उन्होंने जो लिखे हैं वो लॉजिकली भी ग्रामेटिकली पूरे करेक्ट हैं। आजकल थोड़ा ग्रामर पे भी काम थोड़ा कम है लोगों का, थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं। मतलब चाहे कॉम्पोजिशन भी हो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, लिखते समय तो इस चीज का ध्यान बहुत ही ज्यादा रखना चाहिए।
0: तो पढ़ना और लिखना दोनों जुड़ा हुआ है एक साथ?
1: जी जी जी जी, पढ़ना और लिखना दोनों ही, क्योंकि लिखते लिखते करते करते वो होता ना, करते करते सब सही होता चला जाता है। एक दिन की कहानी तो कोई भी नहीं है, करत की विद्या तो है ये तो मैं आपसे कहूंगी। जो मैं अब से 10 साल पहले या 8 साल पहले थी, अब लिखते लिखते जो उसमें एक आता है, आपका कॉम्पिटिशन खुद के साथ ही होना चाहिए और किसी के साथ नहीं। ये मैं एक मैसेज यंगस्टर को जरूर देना चाहूंगी।
0: ओके।
1: जी, कोई भी आपका कॉम्पिटिटर नहीं है सिवाय आपके, आप खुद ही आपके कॉम्पिटिटर है।
0: कोई और ऐसा गाना जो आप जाते जाते संदेश के तौर पर देना चाहें बच्चों को, यंगस्टर्स को आज के?
1: छोड़ आए हम वो गलियां, ये गाना मुझे बहुत,
0: माचिस का गाना,
1: माचिस का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: हमारे साथ उपस्थित है महिमा भारद्वाज जो बॉलीवुड में एक फेमस लिरिसिस्ट हैं। आपका शान के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग रहा है, उनके बारे में कुछ बताइए।
1: जी, शान के साथ मेरी मुलाकात तो नहीं हुई थी शुरू में, और उनके यहाँ से एक बच्चों के लिए गाना लिखा था, एक स्कूल का एंथम था वो लिखा था, एंड फिर उसके बाद उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हुई और फोन पे जैमिंग हम लोग करते थे इस तरीके से। मगर ही हैज बीन सो हम्बल इतने बड़े बॉलीवुड में। मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी मॉरली फाइनेंशियली कभी मुझे किसी चीज के लिए ना उनसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा।
0: तो कोई खास गाना शान साहब के लिए डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: शान जी का गाया हुआ एक चांद सिफारिश है,
0: तो आइए सुनते हैं।

0: अभी आपने सुना एक बहुत खूबसूरत गीत, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो सेलेब्स। महिमा जी, एक तरह से आपकी शुरुआत हुई थी एक बच्चों की कविता से जो कि आपने पढ़ी थी बहुत साल पहले।
1: जी, आकाशवाणी मुंबई जो विविध भारती है वहाँ पे मैंने पढ़ी थी और आपको जरूर सुनाना चाहूंगी वो कविता। ये बच्चों के ऊपर है। पानी के हम बुलबुले पॉपकॉर्न से कुरकुरे, पानी के हम बुलबुले पॉपकॉर्न से कुरकुरे, तीखी मिर्ची लग जाएगी रहना हमसे परे परे, आसमान पे टेंट लगा सूरज को फुटबॉल बना, आसमान पे टेंट लगा सूरज को फुटबॉल बना, सोचे हम ये खड़े खड़े होंगे कब हम बड़े बड़े, पानी के हम बुलबुले पॉपकॉर्न से कुरकुरे।
0: इसने तो हमारा बचपन याद दिला दिया। अभी तो आपने सुनी महिमा जी की लिखी हुई बच्चों के लिए कविता जो उन्होंने सबसे पहले लिखी थी। धन्यवाद महिमा जी, आप बम्बई से स्पेशली आए हमारे लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, हम आपके लिए आभारी हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे सब श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा।
1: जी, मुझे भी अर्णव जी बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और जो आपके साथ हैं राजलक्ष्मी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद, सारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू
1: जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेनबो सेलेब्स। आज की अतिथि रही महिमा भारद्वाज। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी स्वाई।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला की

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
4: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ते उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इन पुनर्परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा से पूर्व राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी मॉकड्रिल आयोजित किए हैं। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवत तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का ढांचा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच और शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: We go from their second studio album, The Madman's Return. That was the German Eurodance group Snap with Rhythm as a Dancer. And don't go anywhere, we'll be right back after these messages.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: Dancing in the Moonlight by Top Loader. That was the English band Top Loader. Hope you guys are enjoying the show over here. Don't go anywhere. We'll be right back after these messages.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वाणी आकाशवाणी। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं रंगे महफिल। और आज की महफिल सजी है मेरे साथ। मैं कौन? मैं आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। प्रोग्राम रंगे महफिल में तो शुरुआत बहुत सी बातों की करनी थी और कहां से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जज्बात इस कदर मेरे दिल में, जज्बात इस कदर मेरे दिल में कि बोलूं तो सोचूं कि पहले कौन से लफ्ज को आपके लिए बयां करूं। तो इतने सारे जो ख्वाहिशें हमारे दिल में होती हैं, हम सभी की बात है, कभी ना कभी ऐसा मुकाम आता है जब बोलने की बात आती है, यानी दिल में जहन में तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन जब बोलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे शब्द इधर उधर हो जाते हैं सरकार। और बात जब दिल की हो तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे तमाम दोस्तों का जो आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल और शिरकत कर लिए हमारे इस प्रोग्राम में प्रेमचंद प्रेमी जी जेतरा धामपुर बिजनौर से। लिखते हैं, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया जी। लिए दर्द बेशुमार तड़प जीते रहे हम, शिद्दत में अश्क आंख के पीते रहे हम, समंदर तो था करीब ये और बात है कि प्याला ए तल सुराख सा रीते रहे हम। यादों में जिनकी दफन मेरा आज हो गया, उन्हीं के लिए कल की तरह बीत रहे हम। चांदी की तराजू तो है मगर जानती है दोस्त कि हर बार जर के ढेर से नीते रहे हम। तेरे उजालों ने दिए जख्म जो बेगुनाहे दिल, रातों में बैठे तन्हा उन्हें सीते रहे हम। लिए दर्द बेशुमार तड़प जीते रहे हम। वाह क्या बात है। और आप ही की बात को बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि कोशिश तो बहुत की थी राजे दिल बयां ना हो, कोशिश तो बहुत की थी राजे दिल बयां ना हो, पर मुमकिन कहां था कि आग लगे और धुआं भी ना हो।

कब से तेरा इंतजार मैं अपना दिल लगाए बैठे हैं, तेरे एक दीदार के लिए आंखें बिछाए बैठे हैं। तेरी एक नजर व करम हमारी रूह पर पड़ जाए, इसी आस में हम लाखों तमन्ना दिल में जगाए बैठे हैं। हर फूल गुलाब नहीं होता, अक्सर पूरा हर ख्वाब नहीं होता। जिंदगी भी कर देती है कभी कभी अजीब सवाल, खैर जाने दो, हर सवाल का जवाब नहीं होता। ये खूबसूरत सी लाइन दिल की भेजी है अंशु शर्मा, हस्तिनापुर मेरठ यूपी से। वो झील, वो नदियां, वो हवाएं, एक तरफ उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसका चेहरा एक तरफ। वो मेरे ख्वाबों में आए और मुझे सताए, नींद की खुमारी एक तरफ, उसका सताना एक तरफ। कस्बा उन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, क्या बात है। कहते हैं हम तो समझे थे कि जख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे कि जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रोग दिल में उतर जाएगा। ठीक लिखा था मेरे हाथ की लकीरों में,

अगर प्यार करेगा तो बिखर जाएगा। आलम यह है कि तेरी याद आती है, और जब भी आती है मुझे और भी तन्हा कर जाती है।

0: रंगे महफिल में गजलों का ये कारवा आगे भी जारी रहेगा। बस लौटता हूँ छोटे से अंतराल के बाद।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

छोटे से अंतराल के बाद सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम रंगे महफिल में। तेरी यादों को दिल से भुलाना भुलाया नहीं आता, किसी सूरत भी तुझको भुलाया नहीं आता। जुदाई रोज आकर इस कदर मुझको सताती है, मगर ये दर्द दुनिया को सुनाया नहीं आता। तेरे बिन चांद तारे रात सब वीरान लगते हैं, मुझे अब कोई मंजर भी सुहाया नहीं आता। बहुत रोया हूं तन्हाई में चुपके चुपके में, मगर लोगों को चेहरा ये रुलाया नहीं आता। मोहब्बत में वफाओं का यही अंजाम देखा है, किसी अपने को भी रिश्ता निभाया नहीं आता। क्या बात है मोहम्मद सरफराज आलम जी, जो कि हर दर्शना बाजार से बहुत ही शानदार लाइंस दिल की हमें भेजते हुए। फारूक अली खान साहब लिखते हैं, कभी एक जान होने का दावा करने वाले आज अनजान बनकर महफिल से गुजर गए। तो सरकार कौन गुजर गया बता सकते हैं आप? अगर बता पाए तो दिल का जो दर्द है वो हल्का जरूर हो जाएगा, ये कह सकता हूं मैं। कहते हैं कि सोया ही नहीं कि जिंदगी में, सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फसाने होंगे। दिल की बात बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फसाने होंगे। रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में। तेरी शान में कलम उठाई और तेरा नाम लिखा, खुद को जमी और तुझे आसमान लिखा। खुदा ने दिल है मुझे एक प्यारी सी जिंदगी, और इस जिंदगी में मैंने तुझे अपना जहां लिखा। हर चाहत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं, कुछ हसरतें दूर रहकर भी खूबसूरत लगती है। नजरें तलाशती हैं जिसको, वो प्यारा सा ख्वाब हो तुम। मिलते हैं लोग बहुत सारे, ना मिलकर भी लाजवाब हो तुम। क्या बात है, ये लाजवाब लाइन लिखी है, हमें भेजी है अंश शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। उम्र भर किसी की याद में इतना लड़े हैं हम कि तिनकों की तरह राह में बिखरे पड़े हैं हम। और तन्हाई की आलम की ये इंतहा है मेरे दोस्त के, अपनी ही महफिलों में अकेले खड़े हैं हम, अकेले खड़े हैं हम। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से।

हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत दिनों बाद आए आप। कब आएंगे आप? अफ्सरखानम, धामपुर डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। दोस्त, अभी अगले शो का तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से मुलाकात ज़रूर होगी आपसे। शुक्रिया हमारी महफिल में आने के लिए।

जी सरकार, दिल की बात है और दिल के जज्बात हैं। शब्द अपने अपने हैं लेकिन जज्बात कहीं ना कहीं एक ही होते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ कुछ पल अभी है हमारे पास, उसे भी यादगार बनाते हैं।

और दोस्तों वक्त हो गया है कि इस प्रोग्राम से मैं अलविदा करूं आप सभी को और मिलेंगे आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से फिर किसी मंच पर। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज

जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वज लगे टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इनमें 86,00,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। इन टैंकरों में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड हैं। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने घोषणा की है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए ले चलते हैं आपको अब रात के सफर पर, संगीतमय सफर में। अब पहला कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर जो आए हैं उसका नाम है जीरो आर शो। तो आइए लेते हैं आनंद जीरो आर शो का और सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बबल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा

0: गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे, जहां वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वजवाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर अब वक्त है हमारे अगले कार्यक्रम का, जिसका नाम है सुहानी रात। तो आइए सुनते हैं कुछ और गीत सुहानी रात में।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन

0: उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर

0: जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फीफा विश्व कप में ग्रुप एफ में नीदरलैंड और स्वीडन के बीच मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में चल रहा है। नीदरलैंड स्वीडन के खिलाफ 4-1 से आगे है। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती पर 3-0 की आसान जीत के साथ फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के लिए मैथियस कुन्हा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में 2 गोल किए, जबकि विनीसियस जूनियर ने 3रा गोल दागा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे गीतों की दुनिया में जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम है भुलाए ना बने।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पद्मश्री पी नारायण कुरूप के निधन से मलयालम साहित्य ने अपनी एक विशिष्ट आवाज खो दी है। वे कवि, आलोचक, व्यंग्यकार और विद्वान थे, जिन्होंने शास्त्रीय परंपराओं को समकालीन विचारों के साथ मिलाया। उनका निधन कल रात केरलम की राजधानी त्रिवेंद्रम में हुआ। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित BMO फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में NRG स्टेडियम में खेला गया। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती को 3-0 से हराकर फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेम भोजन के साथ। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम में टाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एचआर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा।
3: अच्छा,
2: कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना है।

0: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इन पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वज वाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इनमें 86,00,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड हैं। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित BMO फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में NRG स्टेडियम में खेला गया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 MHz पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे गामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से।

विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर आयोजित सामूहिक योग सत्र में शामिल होंगे। कार्यक्रम ठीक इसी समय शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह 6:30 बजे से 7:50 तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारत के 3 जहाजों INS दूनागिरी,

INS संशोधक और INS अग्रे को नौसेना में शामिल करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एजेंसी ने कहा कि वो परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने ओडिशा में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। वे राज्य में कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई अवसंरचना परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर भारत आ रहे हैं। इनमें 86 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड पर 94 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में पाकिस्तान के दयनीय रिकॉर्ड को देखते हुए ये टिप्पणियां विशेष रूप से बेतुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था की अनिश्चितताओं के बीच मजबूत तैयारी बनाए रखना आवश्यक है। श्री सिंह ने मेघालय के शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में सैनिकों से बातचीत करते हुए तकनीकी दक्षता, रणनीतिक दूरदर्शिता और संस्थागत नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार पद्मश्री पी नारायण कुरूप का कल रात केरलम में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरलम और माह में मंगलवार तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चला है प्रातः के 5:06। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक।

0: मस्ती।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।